सुप्रभात, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन बुधवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की प्रथम तिथि, तदनुसार 23 सितंबर 2026। इस वक्त सुबह के 7 बजे स्टूडियो की घड़ी में अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: जीवन सौरभ।
1: एक आश्रम के पास रहने वाला युवक हर दिन एक ही सवाल से जूझता था, सुख कहाँ है, शांति कहाँ है। उसने धन कमाया, सम्मान पाया, लेकिन मन फिर भी अशांत था। एक दिन वो साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज मैं मोक्ष चाहता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, मोक्ष चाहिए या शांति? आरव चुप हो गया। साधु उसे नदी किनारे ले गए। पानी में एक सूखा पत्ता बह रहा था। साधु ने कहा, देखो पत्ता नदी से लड़ नहीं रहा है, ना ही उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, वो बस बह रहा है पूर्ण विश्वास के साथ। आरव बोला, तो क्या मोक्ष का मतलब सब छोड़ देना है? साधु ने उत्तर दिया, नहीं, मोक्ष का अर्थ छोड़ना नहीं, जकड़न छोड़ना है। उन्होंने आगे कहा, जो हुआ उसे पकड़ कर मत बैठो, जो होगा उससे डरो मत, और जो है उसे पूरी जागरूकता से जी लो। उस दिन आरव को समझ आया, मोक्ष कोई पहाड़ की चोटी नहीं जिसे जीतना पड़े। मोक्ष तो वो अवस्था है जहाँ चाह खत्म होती है और शांति शुरू होती है। वो आश्रम से खाली हाथ लौटा, लेकिन मन भरा हुआ था और पहली बार उसने महसूस किया, बंधन छूटे नहीं थे पर वो बंधा भी नहीं था।
0: जीवन सौरभ।
2: ये आपने सुना जीवन सौरभ। आइए आपको बताते हैं आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से ठीक बात सुनेगा कार्यक्रम अक्षय निधि, मंडल 2 सूक्त 24, और उसके बाद सुनिए भक्ति संगीत। गणेश उत्सव चल रहा है, भगवान गणेश की आराधना आज बुधवार है। भगवान गणेश की स्तुति से, आराधना से शुरुआत करेंगे आज के भक्ति संगीत की। रोजाना की तरह सुबह 8 बजे सुनेगा कार्यक्रम वतन का राग। रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुधा अनुपम का। 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से रानी दुर्गावती के युद्ध की विजय गाथा। डॉक्टर पूजा सक्सेना से संदीप शर्मा की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे। सुबह 9 सुनिए कार्यक्रम टेक गुरु AI पर आधारित ये कार्यक्रम होगा। विषय विशेषज्ञ अनुग्रह नागाइच से रतनेश सोनिया ने मेरी खास बातचीत आप सुनेंगे आज। भारत विभूति कार्यक्रम सुनिए सुबह 9:30 पर। ओमेयू कुमार दास पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। सुनीता सिंह और दीपक नेमा के स्वर होंगे कार्यक्रम में। सुबह 10 का समय होगा रेडियो रिपोर्ट का। प्रणति नाटक पर आज का रेडियो रिपोर्ट होगी। रेडियो रिपोर्ट के प्रस्तुत करता है फराज फैयाज, और उसके ठीक बाद सुनिएगा परिक्रमा मेरे यानी रत्नेश के साथ। 10:30 पर सुनिए कार्यक्रम काव्य गुंजन। रश्मि रथी पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे भगवती सक्सेना, संदीप शर्मा और दीपक नेमा। हमारे वैज्ञानिक कार्यक्रम सुनिए सुबह 11 प्रोफेसर सतीश धवन की जयंती पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होंगे संदीप शर्मा और वर्षा सिंह के। युग प्रवर्तक विवेकानंद, यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 11:30 पर। तो अब से लेकर दोपहर 12 तक बने रहिए मेरे यानी आपके ध्वनि मित्र रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का। और आइए अब सुनते हैं अक्षय निधि एक अंतराल के बाद।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 24 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समत और भार्गव शौनक, देवता ब्रह्मणस्पति एवं इंद्रा ब्रह्मणस्पति, छंद जगती एवं त्रिष्टुप।
1: सेमा मविड्ढि प्रभृतिम य ईशिषे या विधेम नवया महागिरा यथा नो मीढ्वान् सत्ववते सखा तव बृहस्पते सीषध सोत नो मतिम। हे बृहस्पति देव, आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। हम महान स्तुतियों के द्वारा आपका यशोगान करते हैं, उन्हें ग्रहण करें। जो स्तोता आपकी मित्र भाव से स्तुतियां करते हैं, वे हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। यो नन्त्वान्यन् मन्नन्योज सोता दर्द मन्युना शंबराणि वि प्राच्या वयदच्युता ब्रह्मणस्पतितिरा चाविशद्व सुमंतम वि पर्वतम। ब्रह्मणस्पति देव ने अपनी सामर्थ्य से दंडित करने योग्य शत्रुओं को दबाया, मन्यु के द्वारा शंबर को विदीर्ण किया, न गिरने वाले जल को गिराया तथा जहां गौएं छिपी थीं उस पर्वत में प्रवेश किया। तद्देवानां देवतमाय कर्तव्य मश्रत्न दृढ़हा वृदंत वीडिता उदद्गा आज दभिनद ब्रह्मणा वल मगुहत्तमो व्यचक्ष यत्स्वः। देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मणस्पति देव के कर्तृत्व से सुदृढ़ किले भी शिथिल हो जाते हैं तथा बलशाली भी नम्र होकर झुक जाते हैं। ब्रह्मणस्पति देव ने मंत्र शक्ति के द्वारा बलासुर को मारकर गौओं को मुक्त कराया, सूर्य देव को प्रकट करके अंधकार को नष्ट किया। अश्मास्यमवतम ब्रह्मणस्पतिर मधुधारमसि यमोज सातृणत तमेव विश्वे पपिरे स्वर्दृशो बहुसाकम् सिसिचुरुत समुद्रिणम्। ब्रह्मणस्पति देव ने पत्थर जैसे दृढ़ मुख वाले मधुर धाराओं से युक्त मेघ को बल प्रयोग द्वारा बरसने के लिए प्रेरित किया। वृष्टि के जल का पान सूर्य रश्मियों ने किया तथा प्रचुर जलधारा के रूप में धरती पर बरसाया। सनाता का चिद्भुवना भवित्वा माद्भि शरद्भिर दुरो वरंत वह अयतंता चरतो अन्य दन्य दिद्या चकार वयुना ब्रह्मणस्पति ही। हे ऋत्विजो, ब्रह्मणस्पति देव ने तुम्हारे लिए ही अनादिकाल से प्रत्येक माह और प्रत्येक वर्ष वर्षा के लिए मेघों को प्रेरित किया। इस प्रकार द्यावा पृथ्वी दोनों परस्पर जल का उपभोग करते हैं। अभिनक्षन्तो अभिये तमानशुर निधिम पणीनाम परमं गुहाहितम् ते विद्वांसः प्रतिचक्ष्यानृता पुनर्यत उ आयंत दुदीयुरा विषम। पणियों के द्वारा गुहा में छिपाए गए श्रेष्ठ धन को चारों ओर खोजकर देवगणों ने प्राप्त किया। यज्ञीय कार्य में विघ्न पैदा करने वाले राक्षस उस दिव्य ऐश्वर्य को देखकर जिस स्थान से आए थे वापस लौट गए। ऋतावानः प्रतिचक्ष्यानृता पुनरात आतस्थुः कवयो महस्पथः ते बाहुभ्याम धमितमग्निमश्मनि नकिः शो अस्त्यरणो जुहुर्हितम्। सर्वज्ञाता तथा सत्यवादियों ने माया की शक्तियों को देखा। वे वहां से हटकर विवेक पूर्वक महान कार्यों के पथ पर चल पड़े। यज्ञीय कार्य के निमित्त उत्पन्न की गई अग्नि को वहीं पर्वत में ही छोड़ दिया। ऋतज्येन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पतिर्यत्र वष्टि प्र तदश्नोति धन्वना तस्य साध्वी ऋषवो याभिरस्यति नृचक्षसो दृशये कर्णयोनयः। ब्रह्मणस्पति देव के पास सुगमता से खींचने वाली डोरी वाला बुद्धि रूपी एक उत्तम धनुष है, जिससे वे ज्ञान रूपी बाणों को जहां बुद्धिमान जनों के कानों तक वे चाहते हैं पहुंचा देते हैं। इससे वे मनुष्यों के सभी संकटों और दुष्ट भावों को उखाड़ फेंकते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 24 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सबके मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं,

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए। मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन करा के श्रोताओं को सुधा अनुपम का नमस्कार। छायावादी कवियों में रामधारी सिंह दिनकर सबसे अधिक सशक्त और सबसे अधिक समर्थ मौलिक प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व माने जाते हैं। विपुल काव्य साधना और साहित्यिक गुणों की दृष्टि से उन्हें सदैव सर्वोच्च स्थान प्राप्त रहा है। उनके काव्यात्मक व्यक्तित्व का निर्माण स्वाधीनता संग्राम के द्वंद्व का ही परिणाम था। दिनकर ने जब किशोरावस्था में प्रवेश किया तो आजादी का आंदोलन शुरू हो चुका था। उन दिनों चल रहे साइमन कमीशन के विरोध में हो रहे प्रदर्शन और रैलियों में उन्होंने भाग लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पुलिस की निर्मम लाठियां खानी पड़ी। उस विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय ने भी भाग लिया था। पुलिस की लाठीचार्ज से उन्हें गंभीर चोट लगी, जिसके कारण वे पहले बेहोश हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से युवक दिनकर का भावुक मन उद्वेलित हो उठा और उनमें कवित्व की ऊर्जा भरने लगी। दिनकर जी कहते थे कि मेरी आज की भावनाओं का मूल्य सन 1921 का असहयोग आंदोलन है। इसके बाद गुजरात के किसानों के सत्याग्रह पर उन्होंने 10 गीत लिखे, जो विजय संदेश नाम से पुस्तक के आकार में छपे थे। इस संग्रह का उल्लेख वारदोली विजय नाम से होता रहा है, क्योंकि स्वयं कविवर दिनकर को इसका सही नाम ध्यान नहीं रहा। दिनकर जी की काव्य यात्रा का प्रारंभ विजय संदेश से माना जाता है। इसके बाद उन्होंने वीरबाला और मेघनाद वधा नामक दो छोटे छोटे काव्य लिखे। ये पुस्तकें बाद में उपलब्ध नहीं हो सकी। सन 1930 में उन्होंने प्रणभंग नामक काव्य लिखा, जिसका उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में किया है। छायावाद की सात्विकता, दार्शनिकता और निराशा से अपने आप को मुक्त कर सामाजिक चेतना को अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया।

उस समय भारतीय राजनीति में साम्यवादियों के प्रवेश से मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन पर आधारित मनुष्य की सामूहिक मुक्ति ने भारत के नवयुवक कवियों को उत्प्रेरित करना प्रारंभ कर दिया। दिनकर जी भी इस ओर झुके, लेकिन दिनकर किसी भी विशेष संकीर्ण सीमाओं में बंद कर नहीं रह सके। उन्होंने सभी ओर से निसंकोच भाव से केवल उन्हीं तत्वों को ग्रहण किया जो मानव हित के लिए उपयोगी थे। दिनकर जी का हृदय क्रांतिकारियों के साथ था। वे अहिंसा को परम धर्म सिद्धांत के स्तर पर ही स्वीकार कर पाए थे। व्यवहार के स्तर पर धर्म के रूप में हिंसा का, सशस्त्र आंदोलन का और युद्ध का भी उन्होंने बार बार जोरदार समर्थन किया और यहीं से उपनिवेशवाद विरोधी वो उग्र राष्ट्रीय काव्यधारा बह चली, जिसकी परिणति हुंकार, कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतीक्षा नामक कृतियों में हुई। राष्ट्रवादी कविताओं की परंपरा भारतेंदु युग से चली आ रही थी, फिर भी उग्र रोषपूर्ण गर्जना और पौरुष भरी ललकार का जैसा तेवर दिनकर की कविताओं में देखने को मिलता है, वैसा अन्यंत्र दुर्लभ है। दिनकर जी को ख्याति और स्वीकृति इन शौर्यपूर्ण रचनाओं के कारण ही मिली थी, जिनमें देशभक्ति का राग कूट कूट कर भरा हुआ था।

दिनकर जी का व्यक्तित्व उनके केंद्रीय प्रतीकों से स्पष्ट होता है। चिंगारी, अंगार, मशाल, आग, अग्नि, अनल, ज्वाला, शिखा, पापक, यज्ञ, ज्योति, किरण, सूर्य और सविता, ये सभी प्रतीक के रूप में बार बार उनकी कविताओं में आते हैं। मात्रागत अंतर इनमें हो सकता है, किंतु अन्याय अत्याचार को छार छार कर संघर्षशील, बलिदान, तेजस्वी और प्रक्षिप्त जीवन की ललक इनमें स्पष्ट मिलती है। इतना ही नहीं, उन्होंने मेषत्व छोड़कर व्याघ्र बनने का आह्वान करते हुए लिखा था कि एक ही पंथ अब भी जग में जीने का, अभ्यास करो छगियो रक्त पीने का। क्रोध का ये अतिरेक कविता है या नहीं, इसकी परवाह दिनकर को नहीं थी। वे तो कविता की गर्दन पर पांव रखकर चिल्लाते चीखते हुए युद्ध के गीत गा रहे थे। शायद कविता से कोई बड़ी चीज दांव पर थी, जिसे बचाने के लिए वे सब कुछ होम कर देने को तैयार थे। चक्रवाल की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि मैं समाज का पुत्र हूँ और मेरा सबसे बड़ा कार्य ये है कि मैं अपने युग के क्रोध, आक्रोश, अधीरता और बेचैनियों को सबलता के साथ छंदों में बांधकर सबके सामने उपस्थित कर दूं। राष्ट्रीय क्रांति दिनकर जी की कविताओं का मुख्य स्वर था और यही वो सबसे बड़ी विशेषता है जिसके कारण वे सच्चे मायने में क्रांति के कवि के रूप में जाने जाते हैं। जय हिंद।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: भारतीय चांदी से बना लंदन, बंगाल की मलमल और सेंट पॉल कैथेड्रल। सितंबर 1666 में पुडिंग लेन की एक बेकरी से उठी एक चिंगारी ने ऐसी भयावह आग का रूप धारण किया जिसने लंदन को राख के ढेर में बदल दिया। जब धुआं छटा तो 13,000 घर और 89 चर्च गायब हो चुके थे, जिससे एक ऐसा वित्तीय घाटा हुआ जिसका अनुमान आज के समय में 37 पाउंड बिलियन लगाया जाता है। राजधानी को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते मुनाफे का सहारा लिया। जब शहर खंडहर में तब्दील था तब कंपनी लंदन के कुलीन फैशन सर्कलों में सफेद सोना, बंगाल की उत्कृष्ट मलमल जिसे बुनी हुई हवा कहा जाता था, इसका व्यापार कर रही थी। सैद्धांतिक रूप से इन भारतीय वस्त्रों और मसालों से होने वाली आय लंदन को 4 बार फिर से खड़ा कर सकती थी। इस विशाल पुनर्निर्माण के लिए अधिकांश धन 160 साल के कोयला कर से आया, जिसने लंदन शहर को अपने वैश्विक व्यापार मुनाफे का उपयोग करके अपने कर्ज चुकाने की अनुमति दी। इस पुनरुत्थान की स्थापत्य पहचान क्रिस्टोफर व्रेन द्वारा 52 चर्चों का पुनर्निर्माण था, जिसमें राजसी सेंट पॉल कैथेड्रल भी शामिल था। ये बहाली प्रभावी रूप से भारतीय कपड़ा उद्योग से निकाले गए धन की देन थी। हर बार जब आप उन ऐतिहासिक चर्चों के शिखरों को देखते हैं तो आप वास्तव में बंगाल, मैसूर और गुजरात के उन भूले बिसरे बुनकरों की मेहनत को देख रहे होते हैं। आधुनिक लंदन के पत्थर भारतीय चांदी से जुड़े हुए थे, जो शहर के अस्तित्व को पूर्व के प्रेत और आत्माओं का एक गहरा वसीयतनामा बनाते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं सोनाली राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।
1: नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा, और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में आगे की कहानी जानेंगे।

0: इसके पहले के एपिसोड्स में हम आपको बता रहे थे गोंड जनजाति के बारे में, रानी दुर्गावती के बारे में, और हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि बस युद्ध की तैयारियाँ हो चुकी थीं। युद्ध के मुहाने पर दोनों सेनाएं खड़ी हुई थी, रानी दुर्गावती की और मुगल सेना। इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी में हमने सुना था कि 1564 ईस्वी में गढ़ा की गोंड रानी और दिल्ली के मुगल शासक अकबर के बीच युद्ध पर आ बनी। मुगल सेनापति आसफ खां अकबर की ओर से अपनी विशाल सेना के साथ गढ़ा राज्य की सीमा पर आकर डट गया। इधर जब गोंड रानी दुर्गावती को स्थिति की जानकारी मिली तो उन्होंने भी अपनी सेना को सुगठित किया और युद्ध के लिए नरई की तरफ बढ़ गईं। बीच रास्ते में उन्होंने सेना को फिर से संगठित किया। अनेक लोग उनकी सेना में स्वेच्छा से भर्ती हो गए। रानी की सेना में 2 से 3 हजार सैनिक थे, जबकि मुगल सेना में लगभग 50 हजार सैनिक, हाथी और घोड़े थे। कई इफ्तिखार भी अपनी सेनाओं के साथ मुगल सेना में आकर जुड़ गए थे। इस तरह मुगल सेना जहां एक तरफ बहुत विशाल थी, वहीं रानी की सेना उसकी अपेक्षा में बहुत कम थी। रानी को यह भी सलाह दी गई थी कि वो संधि कर लें और युद्ध से बच जाएं, किंतु रानी दुर्गावती युद्ध से मोड़ लेने जैसा कायराना काम कर ही नहीं सकती थी। उन्होंने युद्ध क्षेत्र को ही चुना। कहते हैं कि रानी ने अपनी सेना को संबोधित किया और उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। यहां करो या मरो की स्थिति थी। रानी के ओजपूर्ण वक्तव्य ने काम किया और उनकी संपूर्ण सेना ने एक मत होकर युद्ध करने की इच्छा जाहिर की और एकजुट होकर स्वीकार किया कि जो भी परिणाम होगा उसके वो सामूहिक रूप से भागीदार होंगे, जिम्मेदार होंगे। हमारी विषय विशेषज्ञ और पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना ने हमें बताया था कि गढ़ा की प्रजा रानी का बहुत अधिक सम्मान करती थी। वो उन्हें माँ दुर्गा के समान मानती थी और इसलिए आज भी जो आख्यान गाए जाते हैं इस क्षेत्र में, उसमें इस नरई के युद्ध की घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। रानी को याद करते हुए आज भी जस गाए जाते हैं, यानी कि यश गीत गाए जाते हैं। ऐसे अनेक जस हैं जिसमें रानी को माँ दुर्गा के समान बताया गया और युद्ध के लिए रानी ने कैसे हुंकार भरी, वो कैसी दिख रही थी, पूजा जी ने बताया था। और एक बार फिर से वो सैला लोकगीत आपको जरा सा उसकी चार पंक्तियां हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तरी नाना मो नाना रे नाना, तरी नाना मो नाना रे नाना, रानी महारानी ओ आए, माता दुर्गा जो आए, रणमा जूझे तलवारी रानी दुर्गा का है। पूजा जी फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए। फिर से पहले से ही अग्रिम धन्यवाद।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पूजा जी, अब आंखों देखा हाल आपसे सुनना चाहेंगे युद्ध का।
1: जैसा आपने कहा कि गढ़ा की सेना और आसफ खां की सेना दोनों लगभग सामने आमने ही थी
0: जी।
1: युद्ध होने को ही था। हालांकि इतिहास में हमने बहुत से युद्ध देखे हैं
0: जी।
1: युद्ध तो किसी के लिए भी ठीक तो नहीं होता
0: जी।
1: दोनों ओर के लोग मारे जाते हैं युद्ध में
0: जी।
1: किसी के कम मरते हैं, किसी के ज्यादा
0: जी।
1: लेकिन हानि तो होती है। फिर भी सदियों से इंसान दूसरे की भूमि हड़पने के लिए लड़ता आया है। भारतीय परंपरा में आक्रमण करके भूमि जीतने वाला राजा महान नहीं माना जाता, बल्कि प्रेम से, त्याग से, दान से, निर्माण से और सबसे अधिक बलिदान से हृदय जीतने वाला राजा महान होता है
0: जी।
1: इसलिए ये अवधारणा का अंतर हमें भारतीय परंपरा में, भारतीय युद्धों में देखने को मिलता है
0: जी।
1: यहाँ वह राजा महान होता है जो प्रजापालक हो, लोकहित में कार्य करता हो, राज्य की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे। ऐसा राजा, ऐसी रानी हमें प्रिय होती है।
0: बिल्कुल।
1: महानता इसमें नहीं है कि आप कितने साधन संपन्न थे
0: जी, हाँ।
1: आपके पास कितनी विशाल सेना थी या आप कितने बड़े राज्य के मालिक थे।
0: बिल्कुल।
1: महानता इसमें होती है कि जिस परिस्थिति में आप थे उसमें आपने क्या पराक्रम दिखाया
0: जी।
1: आप परिस्थिति का सामना करने की बजाय भाग खड़े हुए या अपनी प्रजा के सम्मान के लिए, राज्य की रक्षा के लिए आप प्राणों की आहुति देने में भी पीछे नहीं हटे
0: जी।
1: इन सभी प्रतिमानों पर हमारी लोकप्रिय गोंड रानी दुर्गावती खरी उतरती है।
0: बिल्कुल, पूरी तरह जी।
1: उनके पास जो भी साधन थे, संसाधन थे, उसके साथ ही वह विशाल मुगल सेना के आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार हो गईं। गढ़ा की सेना को सुगठित किया, अपने वक्तव्य से सैनिकों को प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में गढ़ा की सेना पूरे पराक्रम से इस युद्ध को लड़ी। गढ़ा राज्य की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती और उनकी प्रजा सर्वस्व बलिदान करने के लिए सहर्ष तैयार थी।
0: पूजा जी, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि रानी दुर्गावती बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ी सी कुछ कूटनीति का इस्तेमाल किया और उन्होंने जो आगे बढ़ने की दिशा थी वो अपनी बदल दी थी, और उससे क्या आसफ खां आपकी सेना चौंकी आसफ खान चौंका या नहीं, क्या हुआ?
1: जैसा कि हम जानते हैं कि जब रानी की सेना अचानक जंगलों की ओर मुड़ गई
0: जी
1: नरई आते आते, तो आसफ खान को समझ नहीं आया कि सेना गई कहां।
0: जी
1: कुछ समय बाद जब उनको यह सूचना मिली कि रानी की सेना नरई की ओर बढ़ रही है, तब उसने जल्दी से अपने दो सेनापतियों नाजिर मोहम्मद और आक मोहम्मद को सेना का एक बड़ा भाग देकर आगे आगे जाने को कहा।
0: जी हाँ।
1: वे दोनों मुगल सेना को लेकर नरई की ओर आगे बढ़ने लगे। वहीं सेनापति आसफ खान और अधिक सूचनाएं जुटाता रहा और पीछे बची हुई जितनी सेना थी उसको साथ लेकर नरई की ओर रवाना हो गया।
0: जी।
1: रानी तक भी यह समाचार पहुंचा कि मुगल सेनापति आसफ खान की ओर से नाजिर मोहम्मद और आक मोहम्मद के नेतृत्व में मुगल सेना की टुकड़ियां घाटी में प्रवेश कर रही हैं।
0: जी।
1: अब जैसी की योजना थी, रानी दुर्गावती ने यह निश्चय किया कि जब मुगल सेना नरई घाटी में प्रवेश कर जाएगी
0: जी।
1: तब उसका सामना किया जाएगा, क्योंकि चारों ओर से यह घाटी पहाड़ों से
0: घिरी हुई थी और इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से गोंड सेना जानती
1: भी थी। एक और नर्मदा नदी थी, दूसरी तरफ गौर नदी
0: जी।
1: तो इस क्षेत्र की अच्छी जानकार थी गोंड सेना। तो ये निश्चित हो गया कि जब नरई की घाटी में सेना प्रवेश कर जाएगी आसफ खां की, उसके बाद ही कोई हमला किया जाएगा
0: जी।
1: तो गोंड सेना भी अपने शस्त्रों और अस्त्रों के साथ सुसज्जित थी
0: जी।
1: गोंड सेना में हाथी थे, घोड़े थे और पैदल सैनिक भी थे
0: जी।
1: ये सभी धनुषवाण, ढाल, तलवार, कृपाण, कटार, बर्छी, भाला, ये सब लेकर एकदम तैयार खड़े थे।
0: पूजा जी, युद्ध बिल्कुल लड़ा कब गया, क्या कोई तारीख नजर आती है?
1: बिल्कुल स्पष्ट आईने अकबरी में मेंशन है कि यह युद्ध 1564 ईस्वी में लड़ा गया और तारीख थी 23 जून और 24 जून।
0: अच्छा, यानी ये दो दिन की ये लड़ाई थी
1: ये लड़ाई थी। और आज से अगर हम इसको देखें तो 459 वर्ष इसको हो चुके हैं इस युद्ध को, फिर भी ये युद्ध हमारी यादों में आज भी है,
0: आज भी हमारी स्मृतियों में है और आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। रानी दुर्गावती के शौर्य की हम गाथा की बात कर रहे हैं। तो पूजा जी, हमारे श्रोता भी बहुत बेकरार आ रहे हैं, बहुत उत्सुक हैं कि आगे युद्ध में क्या हुआ, बताइए।
1: जब रानी को यह पता चला कि आसफ खां की सेना की जो अग्रिम टुकड़ियां हैं वो नरई में प्रवेश करने ही वाली हैं, तो रानी दुर्गावती ने अपनी सेना घाटी के चारों ओर ऊंचे स्थान पर इस प्रकार खड़ी की कि शत्रु सेना के आते ही उस पर धावा बोला जा सके। जैसे ही मुगल सेना ने नरई घाटी में प्रवेश किया, रानी दुर्गावती के आदेश से गढ़ा की सेना ने चारों ओर से उस पर हमला बोल दिया
0: जी।
1: दोनों ही सेना के बीच भीषण युद्ध आरम्भ हो गया। हाथी, घोड़े पर सवार दोनों ही सेनाओं के सैनिक युद्ध कर रहे थे। धनुष, बाण, तीर, तलवार और भालों की खनखनाहट से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा था।
0: अच्छा मैम, रानी दुर्गावती तो नेतृत्व कर ही रही थी सेना का, लेकिन जैसे कि होता है कि पैदल सेना, जैसे अश्व सेना, हाथी सेना, तो ये जो अलग अलग सेनाएं थी, ये जो अलग अलग युद्ध कौशल थे, तो और कौन कौन नेतृत्व करता थे रानी दुर्गावती की सेना में, उनके अगर यदि आप कुछ नाम हमें बता पाए।
1: हमने जैसा कि पहले बात की थी एक बार कि जब रायसेन पर आक्रमण हुआ था, उस समय रानी दुर्गावती जब विजय हुई थी तो उनकी सेना में कुछ मियाना अफगानी जो थे वो भी शामिल हो गए थे
0: जी, जी।
1: और वो ऊंचे पदों तक भी पहुंचे, उनकी सेना में वो सेनापति भी बने
0: जी।
1: तो आपको कुछ नाम याद होंगे जैसे कि शम्स खां मियाना
0: जी, जी।
1: मुबारक बिलूच
0: जी।
1: तो ये जो थे ये अब भी इस नरई की युद्ध में भी शामिल थे
0: जी।
1: और सेनापति के तौर पर शामिल थे और इन्होंने भी बड़ी वीरता पूर्वक इस युद्ध में लड़ा। इसी तरह जैसा कि हमने पिछले अंकों में बात की थी कि जो गढ़ा के राजा थे दलपत शाह
0: जी,
1: जब उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई तो उनका जो पुत्र था वीर नारायण
0: जी,
1: वो बहुत छोटा था, 3-4 वर्ष का रहा होगा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: अगला राजा जो घोषित किया गया था वो वीर नारायण को घोषित किया गया
0: हाँ।
1: था और रानी ने उनकी संरक्षिका बनकर राजकाज संभाला था
0: जी हाँ।
1: तो अब इस समय तक आते आते, यानी कि 1564 ईस्वी तक आते आते, वीर नारायण लगभग 17-18 वर्ष के रहे होंगे, रानी को शासन करते हुए 14 वर्ष हो चुके थे। तो वीर नारायण 17-18 वर्ष के नौजवान थे
0: जी।
1: बहुत अनुभवी तो नहीं रहे होंगे लेकिन हाँ साहसी थे। इस युद्ध में उनका भी वर्णन आता है, वो भी सेना का नेतृत्व कर रहे थे
0: जी।
1: तो ऐसे कुछ नाम हमको गढ़ा राज्य की सेना में मिलते हैं।
0: और पूजा जी, क्या रानी दुर्गावती की सेना में एक फौजदार थे जिनका जिक्र इतिहास में आता है, अर्जुन सिंह, उनकी क्या भूमिका थी इस युद्ध में, क्योंकि ये युद्ध उनके लिए भी काफी याद किया जाता है।
1: इस युद्ध का जो सबसे प्रमुख बलिदान सर्वप्रथम दिया वो थे अर्जुन सिंह बखीला। उनको अर्जुन सिंह बैस के नाम से भी जाना जाता है और अर्जुन सिंह बघेल के नाम से भी जाना जाता है।
0: अच्छा।
1: तो ये जो अर्जुन सिंह बखीला थे, ये रानी की जो हाथी सेना थी उसका संचालन किया करते थे, फौजदार थे सेना में
0: जी।
1: और जब युद्ध चल रहा था तो उस समय इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब आसफ खां की सेना नरई में प्रवेश कर रही थी उसी समय अर्जुन सिंह बघेला ने पूरा नेतृत्व संभाल लिया और हाथी की सेना के द्वारा उन्होंने खूब अच्छा संचालन किया
0: जी।
1: आप जानते ही हैं कि मध्य युग में हाथियों का सेना में बहुत अधिक महत्व था। हाथी की जो ऊंचाई होती है काफी ज्यादा होती है और ये काफी बलशाली पशु भी है
0: जी।
1: और अपने जो प्रशिक्षक होता है उसकी बात भी बहुत अच्छे से मानता है, इसलिए सेना में हाथियों का खूब उपयोग होता था और हाथी की सेना का जो संचालन करता था उसका भी बहुत ही महत्व था। तो इस पूरे युद्ध में अर्जुन सिंह बघेला का संचालन बहुत महत्व रखता था
0: जी।
1: तो जब आसफ खां की सेना नरई में प्रवेश कर गई तो सबसे पहला सामना अर्जुन सिंह बघेला ने ही किया और उन्होंने काफी वीरतापूर्वक युद्ध किया
0: जी।
1: लेकिन शाम होते होते अर्जुन सिंह बघेला वीरगति को प्राप्त हो गए और ये गढ़ा राज्य के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति थी।
0: निश्चित रूप से कि जिस सेना में हाथी सेना का बहुत, जिस युद्ध में बहुत ज्यादा महत्व हो, उसके जो फौजदार हैं जो हाथी सेना का संचालन ही कर रहे थे वो बहादुरी से लड़े और वो वीरगति को प्राप्त हुए, तो ये एक बड़ा सेटबैक था, ये अपूर्णीय क्षति थी गोंड सेना के लिए। वाकई श्रोताओं, पूजा जी ने हमें एक बहुत अहम जानकारी ये भी अपने पिछले अंकों में दी है कि एक बहुत बड़ा कारण हाथी भी थे गोंड राज्य पर कब्जा करने के लिए, जो अन्य शासक थे वो क्यों ललायत रहते थे। कहते हैं कि उस समय उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हाथी पाए जाते थे। तो ये एक बहुत अच्छी और नई जानकारी निकल करके आई है, क्योंकि हम आज के मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ बहुत सारे हाथी आज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उस समय वो वन क्षेत्र कितना सघन रहा होगा और कितनी उपजाऊ वो भूमि रही होगी कि वहाँ पर हाथी जैसे बड़े शाकाहारी जीव के लिए परिस्थितियाँ कितनी अनुकूल रही होंगी। तो पूजा जी, जब अर्जुन सिंह बैस वीरगति को प्राप्त हुए तो युद्ध उसके बाद भी जारी रहा, क्या इस पूरी बात से गढ़ा सेना का जोश कुछ कम हुआ?
1: युद्ध अपने चरम पर था, दोनों ओर की सेनाएं जोर शोर से लड़ रही थीं, खूब तीर तलवार ढाले बर्छे सब चल रहे थे
0: जी।
1: कोई कमी नहीं थी। एक योद्धा के जाने से सेना रुक नहीं जाती,
0: बिल्कुल।
1: वो तो अपने बराबर जिस उद्देश्य को लेकर चली है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करती है
0: जी।
1: तो गढ़ा की सेना भी अपना पूरा दल बल के साथ में लगी हुई थी
0: जी।
1: युद्ध जारी था। अब धीरे धीरे दिन ढलने लगा
0: जी।
1: सूरज की रोशनी भी अब मध्यम हो चली थी
0: जी।
1: पर गढ़ा की सेना का जोश कम नहीं हुआ था
0: जी।
1: लगातार तीर भाले तलवार की आवाजें गूंज रही थी। दोनों ओर से कई सौ सैनिक मारे जा चुके थे
0: जी।
1: फिर भी युद्ध तो अपनी गति पर था
0: जी। तो क्या जब शाम हो चुकी थी तो शाम के बाद भी, सूरज ढलने के बाद भी तब युद्ध होता था?
1: नहीं, जैसा कि पुराने युद्धों में नियम है
0: जी
1: कि शाम ढलने के बाद युद्ध नहीं होगा
0: जी।
1: आपने कभी ध्यान दिया हो तो भारतीय परंपरा में युद्ध जैसा कोई शब्द ही नहीं है।
0: अच्छा।
1: वास्तव में युद्ध एक अधूरा शब्द है, पूरा शब्द है युद्ध कला।
0: अच्छा।
1: युद्ध को भी एक कला के तौर पर देखा जाता है और कला में हमेशा नियम होते हैं।
0: नियम होते हैं
1: और सभी को उसका पालन करना होता है।
0: क्या बात है।
1: इसलिए युद्ध में जो नियम रख दिए जाते हैं कि जैसे कि शाम को नहीं युद्ध लड़ना है, सूरज ढलने के बाद युद्ध नहीं होगा
0: जी।
1: सूरज ढलने के बाद आपस में कोई एक दूसरे को नहीं मारेगा, या युद्ध के समय किस किस प्रकार के नियमों का पालन करना होगा, ये सब सुनिश्चित होता है। इसीलिए हम बहुत सारे युद्धों में ऐसा देखते हैं कि जब भारतीय युद्ध लड़ते थे तो वो नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे
0: जी।
1: और उसके कारण कई बार हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी पराजय भी हमको झेलनी पड़ी
0: जी।
1: लेकिन नियमों पर अडिग रहे और कभी भी उन्होंने नियमों को नहीं तोड़ा
0: जी।
1: तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जब शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा तो अब युद्ध इस दिन का यानी 23 जून का
0: जी
1: अब समाप्ति की ओर था
0: जी।
1: पर युद्ध बराबर तेजी से लड़ रहे थे, हालांकि काफी सारे सैनिक मारे जा चुके थे
0: जी।
1: गोंड सेनापति भी पूरी बहादुरी से अभी तक लड़ रहे थे
0: जी।
1: आखिर सूरज ढलने लगा और पहले गढ़ा की सेना ने मुगल सेना को पीछे की ओर धकेल दिया।
0: वाकई श्रोताओं, कितनी अद्भुत जानकारी है ये कि ये तो हमें पहली बार पता चला कि युद्ध कोई शब्द हमारे इतिहास में होता ही नहीं था। पूरा जो शब्द है वो है युद्ध कला। युद्ध को हम सब भारतीय कला के रूप में देखते थे और पूजा जी ने हमें कितनी अच्छी और वास्तविक जानकारी दी कि कला में हमेशा नियम होते हैं, कला नियमों में बंधी रहती है तभी वो कला कहलाती है। और भारतीयता में ये बात कही गई कि सूरज ढलने के बाद युद्ध कला जारी नहीं रहेगी, हथियार रख दिए जाएंगे और जो लोग थोड़ी देर पहले तक सूरज की किरणों में एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू होते थे वो वहां पर अपनी अपनी तलवारें अपने म्यान में डाल दिया करते थे। तो ये कितनी वाकई अद्भुत बात है युद्ध कला की।
1: तो इस दिन का युद्ध समाप्त होने को था, दोनों सेनाएं खूब जोर शोर से लड़ रही थी लेकिन इस तरफ देख रहे थे कि सूरज ढलने को था
0: जी।
1: और बस गढ़ा की सेना ने कमाल दिखा दिया, मुगल सेना को पीछे धकेल ही दिया।
0: वाह,
1: नरे की घाटी से आसफ खां की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया और इस तरह आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद बची कुची सेना लेकर घाटी से वापस भाग गए और रानी दुर्गावती की विजय हुई।
0: तो पूजा जी, क्या जो विजय थी, जो 23 जून को जो विजय हुई, ये इसके पीछे रानी की कूटनीति का ही कमाल था? क्योंकि पहले तो दूसरी तरफ से आने वाली थी, फिर रास्ता बदला और उस तरफ से आई जहां के उस पूरे इलाके का उनको ज्ञान था और जो ऊंची ऊंची जगहों पर आपने कहा कि हाथी जैसे जीव के ऊपर जब बैठ करके ऊपर से वार किया जाता है तो वो विरोधी के लिए मुश्किल होता है, तो फिर तो हाथी इनके पास भी थे। लेकिन रानी ने दक्षता विशेषज्ञता ये दिखाई कि वो घाटी में बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पर उन्होंने अपने सैनिकों को और शूरवीरों को भेजा, तो क्या इस कूटनीति से उनको लाभ मिला?
1: प्रकृति की जानकारी होना गोंड जनजाति की विशेषता है
0: जी।
1: और यही विशेषता इस पल पर उनके काम आई जब उनके पास एक बहुत छोटी सेना थी, आकस्मिक आक्रमण हुआ था, तो ये सब जानकारियां उनके लिए तो जैसे सकारात्मक ही थी
0: जी।
1: और रानी ने अपने पराक्रम से, अपने संकल्प से ये कर दिखाया कि इतनी छोटी सेना होते हुए भी उन्होंने एक विशाल सेना के ऊपर विजय प्राप्त कर ली।
0: वाकई ये कमाल की बात है। और देखिए श्रोताओं, कितनी अद्भुत ये बात है कि यदि हमें अपने इलाकों के बारे में बहुत अच्छे से पता हो, ख़ास तौर से जब हम उस दौर की बात करें, राजाओं की बात करें, तो राजा सिर्फ अपने महल में बैठकर ही राजकाज नहीं किया करते थे। जब तक कि वो रानी दुर्गावती की तरह बाहर नहीं घूमते थे, अपने इलाके में नहीं जाते थे, तब तक उन्हें ये जानकारी हो ही नहीं सकती थी कि किस तरफ नदी है, कहाँ नदी का घाट है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ घाटी है और कहाँ आने जाने का रास्ता है। और यदि ये जानकारी रानी के पास नहीं होती तो निश्चित रूप से इस युद्ध में उनकी हार हो सकती थी, क्योंकि बहुत ही कम सेना थी रानी दुर्गावती के पास। अदम्य साहस और शौर्य तो था ही, लेकिन बहुत सटीक जानकारी थी युद्ध कौशल होने के साथ साथ। फिर वहां उन्होंने कूटनीति का भी प्रयोग किया, एक ओर मां नर्मदा का उन्हें आशीर्वाद मिला, दूसरी ओर घाटी थी और फिर बाकी काम उन सभी लोगों की वीरता ने कर दिखाया। तो मैम, जैसे कि आपने ये कहा, आईना अकबरी में भी 23 जून और 24 जून की इस लड़ाई का उल्लेख मिलता है। 23 जून को तो विजय हो ही गई थी और क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है तो 24 जून की बात तो हम अपने अगले अंक में करेंगे, लेकिन क्या कोई और भी हमें साक्ष्य मिलता है जो इस युद्ध का उल्लेख करता हो?
1: जी हाँ, गढ़ा के गोंड राज्य के बारे में जानने के लिए एक बहुत प्रमाणिक स्रोत है, रामनगर मंडला में एक शिलालेख लगा है जिसमें गढ़ा के गोंड राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। इसी शिलालेख में रानी की विजय के बारे में भी एक श्लोक है।
0: वाह,
1: ये श्लोक संस्कृत में है और श्लोक इस प्रकार है कि अक्षय हीणनीय अमृत भूत लेन यातम रणे तेन महाभटेन बल विजित्या अपि समस्तम अस्य दुर्गावती भीम पराक्रमेण। यानी कि जिस महाभट्ट ने युद्ध में अक्षिणी सेना को अमृत की तरह भूमि पर प्रवाहित कर दिया और बल को जीतने के बाद भी उसकी दुर्गावती भीम पराक्रम से संपूर्ण शक्ति को नष्ट कर दिया, ऐसी दुर्गावती को प्रणाम।
0: वाह, तो तो मतलब और भी साक्ष्य मिलते हैं आईना इकबरी के अलावा भी मध्य प्रदेश में ही मंडला में साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं, जाकर देख सकते हैं कि उस लड़ाई के बारे में ये स्पष्ट वहाँ पर अभिलेखित है, वहाँ पर उल्लेखित है कि रानी दुर्गावती ने मुगल सेना को पराजित किया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। डॉक्टर पूजा सक्सेना पुरातत्वविद हमारे साथ लगातार पिछले कुछ एपिसोड से बनी हुई हैं हमारे कार्यक्रम में और हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं गोंड राजवंश के बारे में, रानी दुर्गावती के बारे में। आगे भी ये कहानी जारी रहेगी, आगे भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि कुल इस युद्ध का 2 दिन का उल्लेख मिलता है। यदि तारीख की बात करें तो आज से 459 साल पहले की बात थी, 23 और 24 जून 1564 को ये युद्ध लड़ा गया। जैसे कि डॉक्टर सक्सेना ने हमें बताया कि पहले ही दिन रानी दुर्गावती ने मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और मुगल सेना वहां से भागने को मजबूर हो गई। लेकिन अगले दिन क्या हुआ ये पूजा जी से जानेंगे हम अपने अगले अंक में। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए देश के चैनल देश के लिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर। इतिहास के पन्नों से

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: वामपंथ पवित्र प्रतीकों से लेकर साम्राज्य की मुद्रा तक। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी पूर्वोत्तर के दलदली इलाकों और तटों पर एक अजीब गरीब बदलाव हो रहा था। यूरोपीय सिक्कों के आगमन से बहुत पहले इस क्षेत्र के मूल निवासी जैसे मुंशी समूह क्वाहोग क्लैम के खोल से मोती बनाते थे। इन मोतियों को वामपम कहा जाता था। ये केवल सजावट की चीजें नहीं थीं, ये संधियों को दर्ज करने, कहानियां सुनाने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पवित्र वस्तुएं थीं। सबसे कीमती गहरे बैंगनी रंग के मोती होते थे, जिन्हें शंख के गहरे हिस्सों से तराशा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इन बैंगनी मोतियों का उत्पादन इंटरैक्टिव डोमेन्स यानी पारस्परिक प्रभुत्व का परिणाम था। पत्थर जैसे सख्त क्वाहोग हॉल को नाजुक बेलनाकार मोतियों में तराशने के लिए स्वदेशी कारीगरों को यूरोप से आपूर्ति किए गए धातु के ड्रिल की आवश्यकता थी, जो 1630 के दशक तक हडसन घाटी में आम नहीं हुए थे। इस तकनीकी संलयन ने लॉन्ग आइलैंड के तटीय क्षेत्रों को एक वास्तविक टकसाल में बदल दिया। 1640 के दशक तक डच और अंग्रेजी बसने वालों के लिए एक अजीब आर्थिक वास्तविकता बन गई थी। उपनिवेशों में सोने चांदी की कमी थी और फिर फर, जो कि पशुओं की खाल होती थी, का व्यापार धन का प्राथमिक इंजन था। बसने वालों और स्वदेशी समूहों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए वामपम पसंद की मुद्रा बन गया। ये वो पैसा था जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापार को गति दी, जिसका उपयोग वीवर की खाल से लेकर मक्के और यहाँ तक कि जमीन के विशाल टुकड़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। हालांकि डच वेस्ट इंडिया कंपनी और स्वदेशी उत्पादक इस पैसे को दो पूरी तरह से अलग नजरियों से देखते थे। उनके लिए वामपम सामाजिक पारस्परिकता का हिस्सा था, एक उपहार जिसके बदले में दुनिया को संतुलन में रखने के लिए दूसरा उपहार दिया जाना चाहिए। उनके लिए ये वस्तु थी जिसे कर यानी टैक्स के दायरे में लाया और नियंत्रित किया जाना था। सितंबर 1639 में डच डायरेक्टर विलेम कीफ्ट ने नीति में एक कट्टरपंथी बदलाव का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय मुंशी समूहों पर सुरक्षा शुल्क लगा दिया और डच किलों की लागत वहन करने के लिए वामपम और वीवर की खाल के रूप में ट्रिब्यूट की मांग की। मुंशी इस बात से आक्रोशित थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने डचों का स्वागत किया था, उनके संकट के समय उनकी देखभाल की थी और उन्हें अपनी जमीन पर मुफ्त में बसने की अनुमति दी थी। वामपम, जो संतुलन का प्रतीक था, उसे अनचाही सुरक्षा के लिए टैक्स के रूप में मांगना सामाजिक पारस्परिकता की विफलता थी। वामपम के आध्यात्मिक और राजनीतिक मूल्य की यही मौलिक गलतफहमी 1640 में प्रथम डच मुंशी युद्ध का प्राथमिक कारण बनी। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, लॉन्ग आइलैंड के वामपम उत्पादक एक दुखद बंधन में फंस गए। यूरोपीय बाजार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत होने के कारण उन्हें केवल अपनी जमीन और मोती बनाने के लिए आवश्यक धातु के औजारों तक पहुंच बनाए रखने के लिए डचों को शांति और सैन्य सहायता का वचन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जंगल के वे आध्यात्मिक मोतीशाही अधीनता के हथियार बन चुके थे, जो उन लोगों की बेदखली का रास्ता तय कर रहे थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। वामपम उस समय के एक डरावने अवशेष के रूप में आज भी मौजूद हैं। जब पवित्र प्रतीकों को साम्राज्य की ठंडी मुद्रा के रूप में पुनर्गठित किया गया था,
2: नजी भर के देखा

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: लखनऊ का फारसी राजकुमार मिर्जा अबू तालिब खान का लंदन के साथ प्रेम प्रसंग। 1799 की सर्दियों में जहां लंदन में रहने वाले अधिकांश भारतीय या तो हताश कूटनीतिक दूत थे या निर्धन नाविक, वहीं एक व्यक्ति केवल यात्रा के रोमांच के लिए वहां पहुंचा। लखनऊ के कुलीन घराने के मिर्जा अबू तालिब खान ने लंदन की सड़कों पर किसी याचिकाकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि पश्चिम के उच्च समाज को जीतने के लिए तैयार एक परिष्कृत यात्री के रूप में कदम रखा। लंदन की प्रेस उनके आकर्षण से इतनी मंत्रमुग्ध हुई कि उसने जल्द ही उन्हें फारसी राजकुमार का खिताब दे दिया। वे उस दौर के सबसे प्रतिष्ठित सामाजिक अतिथि बन गए, जिन्हें प्रिंस ऑफ वेल्स से लेकर स्वयं राजा जॉर्ज तृतीय तक सर्वोच्च अभिजात वर्ग द्वारा सराहा गया। फिर भी विडम्बना का एक चौंकाने वाला मोड़ यह था कि उच्च कुल के इस व्यक्ति ने रथबोन प्लेस में रहने का फैसला किया, जो उस समय दुष्चरित लोगों के अड्डे के रूप में कुख्यात था, जहां बाहर की सड़कों पर बदनामी का शोर था। वहीं कहा जाता था कि अबू तालिब ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से उस स्थान को मर्यादित और शिष्ट बना दिया था। अबू तालिब के लिए लंदन फरिश्तों जैसी पूर्णता और दिल को लुभाने वाली सुंदरियों का एक बगीचा था। उन्होंने प्रसिद्ध फारसी कवि हाफिज की मादक और काव्यात्मक शैली में अपनी रचना ओड टू लंदन अर्थात लंदन के प्रति गान लिखकर अपनी इस दीवानगी को अमर कर दिया। इसमें उन्होंने ब्रिटिश सुंदरियों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की और शहर की नदियों, बगीचों और महलों से अपने दिल को तृप्त करने का संकल्प लिया। हालांकि वे अंततः भारत लौट आए, लेकिन वे इतिहास के एक दुर्लभ व्यक्तित्व बने हुए हैं। एक ऐसा भारतीय यात्री जिसने साम्राज्य को खुद को बदलने नहीं दिया, बल्कि लंदन को अपनी सुंदरता को एक लखनवी सज्जन की परिष्कृत आंखों से देखने के लिए मजबूर कर दिया।

0: नमस्ते, मैं हूँ रानी मुखर्जी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज फिर एक बार हाजिर हुए हम आपके बीच हमारा कार्यक्रम टेक गुरु लेकर, और टेक गुरु में आज बात करेंगे एआई पर। हमेशा की तरह हम कोई ना कोई नया सब्जेक्ट, नया विषय आपके बीच में लेकर आते हैं, और आज हमारा प्रयास है आप तक ये पहुंचाने का कि एआई क्या है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ये है क्या, किसके लिए फायदेमंद है, क्या नुकसान है, सुन तो सबने रख रखा है। अब इतना वृहद विषय है ये, इस पर प्रयास करेंगे कितना हम आप तक पहुंचा पाए। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर अनुग्रह नगाइच। आप मैनिट यानी MA NIT मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अनुग्रह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे स्टूडियो में आके आपके साथ इस विषय पे अपने विचार प्रकट करने देने का मौका देने के लिए।
1: अनुग्रह जी, AI एक ऐसा विषय है जिस पर हम आपसे चाहेंगे रोशनी डालें, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कुछ आपके बारे में।
2: जैसे आज से लगभग 20-30 साल पहले कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी अपने देश में, आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुणगान गा रही है। मेरे ख्याल से कोई भी एक ऐसा क्षेत्र या विषय अछूता नहीं है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावों की चर्चा ना हो रही हो। साथ ही साथ वृहद स्तर पर राष्ट्रों के बीच, देशों के बीच भी AI वॉर ऐसी संबंधी चर्चा आ रही है। तो AI के बारे में मेरा जो रुझान था, मैं मूल रूप से वास्तुकला एवं नगर नियोजन, ये मेरा ग्रेजुएशन का विषय रहा है, और मैंने 9 से 13 के बीच जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में प्रथम दृष्टया मेरे को पता चला अपने संस्थान के कंप्यूटर साइंस के लोगों के द्वारा। तो उस समय मेरा परसेप्शन ये बना कि मशीनों के शायद संवाद, जो ऑटोनोमस मशीन्स बनाते हैं, रोबोट बनाते हैं जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है हॉलीवुड की, कि मशीनों के बीच के संवाद को शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बोलते होंगे, इससे हमारा कोई उतना सरोकार नहीं रहने वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के उन्हीं का विषय होगा। लेकिन धीरे धीरे इसकी पड़ताल करने पे मुझे जानकारी हुई कि ये एक ऐसा विषय है जिसकी उपयोगिता मेरे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में भी है
1: जी।
2: तब मैंने धीरे धीरे इस पर शोध करना चालू किया। तो मैंने जैसे बताया ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर अर्बन प्लानिंग से करके मैं IIT बॉम्बे गया, वहाँ पे मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, भू संचार प्रौद्योगिकी, इस पे अपना परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहाँ पे मेरा जो काम था वो यही था कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका मशीन लर्निंग नाम का एक सब डोमेन है, उसकी मदद से हम लोग जो अपने सेटेलाइट इमेजरी रहती है उसकी विवेचना करने का, उसके विश्लेषण करने में योगदान ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो यही वो समय था जब मैंने अपनी आंखों से AI का अपने विषय में इस्तेमाल देखा, और उस इस्तेमाल को, चूंकि मैं बाहरी था, कंप्यूटर साइंस से बाहर से आ रहा था, और मैंने देखा कि जब मेरे विषय में AI इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे जब मैं यहाँ मैनिट में पढ़ता था तो किसी शहर की शहरी विकास योजना बनती है, शहर का एक नक्शा बनता है, तो 5-6 लोग 2-3 दिन बैठ के एक एक बिल्डिंग को फुटप्रिंट बनाते जाते हैं। मतलब शहर की सेटेलाइट इमेजरी इसरो से आएगी, एक एक सड़क को डिजिटाइज करेंगे, एक एक बिल्डिंग फुटप्रिंट को डिजिटाइज करेंगे, एक एक फीचर, नदी, नाले, पेड़, 5-6 लोगों की टीम 1-2 दिन लेती थी किसी भी बड़े शहर के लिए। AI की मदद से ये जो मैनुअल काम था डिजिटाइजेशन का, वो इसरो स्वयं ही करके दे देता था। मतलब वो अपने आप इमेज में, इसको कंप्यूटर विजन तकनीक बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अंदर, अपने आप ही फीचर डेलिनेट हो गया। आप सोचिए 4-5 लोगों के 2-3 दिन की मेहनत एक क्षण में सॉल्व हो गई। उसके बाद से मेरे को ये चीज समझ में आई कि भाई इस तरीके से ये सिर्फ दो मशीनों के बीच में संवाद का जरिया नहीं है, ये हम लोग जो कंप्यूटिंग डिवाइस को जैसा प्रयोग में लेते आए हैं आज तक, उसको पूरी तरह से बदलने वाला है। और फिर मेरे को समझ में आया कि ये मेरे विषय में नहीं, लगभग हर विषय में जितने भी मैनुअल काम है उन सबको हटा के एक नए तरीके से काम करने की दृष्टि देगा। तो मेरे बैकग्राउंड से मैंने AI के साथ सामंजस्य बनाते हुए फिर इसी विषय को आगे ले जाने का सोचा, और फिर मेरी PhD जो संपन्न हुई वो पूरा मशीन लर्निंग बेस्ड वेटलैंड मॉनिटरिंग पे थी। और अभी मैं इसी विषय के बारे में और कैसे अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है उस पे भी लोगों में जागरूकता फैलाने का या उनको इसके प्रति सेंसिटाइज करने का प्रयास करता हूँ।
1: तो AI क्या कोई सॉफ्टवेयर है जो लोग इसका इस्तेमाल कर लें और फिर अपने काम में ले लें?
2: सर, ये आपका बिल्कुल बहुत सही पकड़ा है आपने। कंप्यूटर रेवोल्यूशन में हम लोग के सामने, नज़रों के सामने, एक कंप्यूटिंग डिवाइस था, डेस्कटॉप कंप्यूटर था। आप देखे होंगे जब आप छोटे थे तो कंप्यूटर्स का जो यूज़ था वो बहुत लिमिटेड था, ऑफिसों में, पावर प्लांट्स में रहता था, आज इस स्टूडियो से लेके रेलवे स्टेशन के काउंटर तक या अस्पताल के फ्रंट डेस्क तक या किसी होटल के रिसेप्शन में लॉबी तक आप कंप्यूटर को हर जगह पाएंगे। कंप्यूटर एक प्रोडक्ट के कारण होने के कारण हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ कंप्यूटर के कितने उपयोग हो सकते हैं। AI वस्तुतः सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर कहने का तात्पर्य यह है कि वो टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कंप्यूटर था, जैसे TV था, वो एक प्रोडक्ट था। लेकिन जैसे इंटरनेट है, दो कंप्यूटर्स के बीच में, चले इंटरनेट भी मैं कहता हूँ कि कुछ हार्डवेयर रहता है, वायर्स या वायरल है, लेकिन AI जो रहेगा वो कंप्यूटर के बैक एंड पे कंप्यूटर के प्रयोग को 10 गुना या 100 गुना या 1000 गुना और प्रभावी बनाएगा। उदाहरण मैंने आपको बताया कि 4-5 लोग जो मिलके एक शहर के खांचे को डिजिटाइज करते थे, वो AI कुछ क्षणों में, कुछ सेकेंडों में कर लेता है। या आपके पास मान लीजिए सेंसस डेटा है एक शहर का, लगभग 20 लाख लोगों के अलग अलग उनके सोशो इकोनॉमिक सर्वे किया, उसकी आप जानकारी है, उससे अगर आपको एनालाइज करना है किसी विशेष पहलू पे, तो आपको पहले उसमें कुछ प्रक्रियाएं लगती थी, कुछ समय लगता था, कुछ ऊर्जा लगती थी, अब वो आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो मूल रूप से ये बैकएंड में काम करने वाला एक टेंजिबल माध्यम मीडियम फॉर्म में ना होने के कारण इसको सॉफ्टवेयर तो सही नहीं होगा, लेकिन एक नॉन टेंजिबल रेवोल्यूशन है जो कंप्यूटर्स के बैकएंड पे हो रहा है, जो हमारे कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। ChatGPT आपने बोला, अब ChatGPT आने से पहले लेखकों के, कॉपी राइटर्स की बहुत अच्छी दुकान चलती थी, लेकिन एक ऐसा एप्लीकेशन जो हर मोबाइल में जाके आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट दे दे, आपको कॉपीराइट दे दे, तो ये बैकएंड में ही संचालित हो रहा है, वही AI है।
1: एक बात जो अभी भी आपने कही कि 5 या 6 लोगों का फुटप्रिंट लगता था, 5-6 लोग उस पर 2-3 दिन 6 दिन काम करते थे, तो अब वो 5-6 लोग नहीं लग रहे, एक हाँ। बात दूसरी चीज उतना समय भी नहीं लग रहा,
2: बिल्कुल।
1: तो क्या माने AI आने से लोगों के काम छिन गए?
2: देखिए, कोई भी नई तकनीक जब आती है तो अपने साथ कुछ तो कार्य क्षेत्र में चेंज लाती है। कंप्यूटर्स के आने के पहले मुझे याद है जब मैं छोटा था तो टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट रहते थे, शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती थी, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग के कोर्सेज होते थे और इसमें कई लोग जाते थे। कंप्यूटर्स आने के बाद और कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन के बाद, जब कंप्यूटर्स का फॉर्म फैक्टर, जब स्मार्टफोन आ गए या अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते गए, इंटरनेट पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती गई, तो अब ये टाइपराइटर भी ऑब्सोलीट हो गया। DTP का जो एक व्यवसाय चलता था अपने भोपाल के जवाहर चौक में, आपको याद होगा कितने सारे DTP की जगह थी, या साइबर कैफे चलते थे। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपने साथ डिसरप्शन लाती है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सच है कि जो मैनुअल रिपीटेटिव काम है, जैसे नक्शे में फीचर्स को आइडेंटिफाई करना या रिसर्च करना, लाइब्रेरी में जाके अपने काम की चीज ढूंढ के लाना, तो जो मैनुअल रिपीटेटिव टास्क है वो काफी हद तक ऑटोमेट होने से मैन पावर काफी फ्री हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इसका एक पहलू को देख के ये बोलना कि इतने सारे लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो वो करेंगे क्या, ये थोड़ा बेमानी होगा। क्योंकि एक तरफ तो लोग फ्री हो रहे हैं रिपीटेटिव टास्क के, तो ChatGPT उनको ये सुविधा भी देता है कि वो चाहें तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनने में सबसे बड़ी बाधा आती है टेक्नोलॉजी के, कैमरे की, आज सबके पास स्मार्टफोन है, विषय की और विषय के प्रस्तुतिकरण की। आज ChatGPT में आप अपने एक स्क्रिप्ट डालिए या उससे बोल दीजिए कि भाई इस विषय के बारे में कोई जानकारी दे। हाँ, ये जरूर है कि वो जानकारी सही है कि नहीं है वो हमको देखना है, लेकिन अगर जानकारी आ गई तो उसे किस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म वीडियो में 30 सेकंड 60 सेकंड में क्लब डाउन करना, ये हर कोई कर सकता है अपने मोबाइल से। तो लोगों के पास जीविकोपार्जन के, स्किल डेवलपमेंट के नए आयाम भी खुलेंगे। तो स्किल रिफॉर्म करना, स्किल डेवलपमेंट करने की तो आवश्यकता रहेगी, लेकिन इस विषय में बहुत ज़्यादा सोचना कि बेरोजगारी बढ़ाएगा, मेरे ख्याल से जॉब का नेचर बदल जाएगा और बदलते समय में लोगों को भी उस स्किल को रीडेवलप करना पड़ेगा। ये AI एक आयाम लाने वाला है। मैं यहाँ पे जो प्रशासनिक अकेडमी है वहाँ पे भी इसी विषय पे ट्रेनिंग लेने जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि बदले समय में AI के युग में सफलता पाने के लिए, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, प्रोफेशनल में हो, सबसे ज़रूरी रहेगा 3 चीज़ों करना, लर्न, अनलर्न और रीलर्न, यानी सीखना, फिर उसे भुलाना और पुनः सीखना। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से परिवर्तन लाएगी उसमें मुझे भी एज अ शिक्षक, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक डिटेल उदाहरण दूंगा IIT और के मेरे कुछ साथी शिक्षक हैं और हम लोग किस विषय में विवेचना करते हैं कि AI हमको रिप्लेस ना कर दे, हमें भी अपने फील्ड में रिलेवेंट बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा और रीलर्न करना पड़ेगा।
1: मैन पावर की भी आपने बात कही थी, तो इसे मैन पावर फ्री करना बेरोजगारी ही बढ़ाना तो है या नहीं?
2: देखिए, जो 5 दिन हम लोग नक्शा बनाने में लगाते थे वो 5 दिन बचा के हम उसको नक्शों की अच्छे से विवेचना करने में लगा सकते हैं, एडवांस स्टडी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी शहर के सड़कों को डिजिटाइज करने में 2 दिन लगाता था, अब मेरे को सड़कें बन रही हैं। और इनफैक्ट मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला था अमृत के मास्टर प्लान प्रोजेक्ट में, मणिपुर के इम्फाल शहर के मास्टर प्लान प्रिपरेशन में, वहाँ पे हमें जो इसरो से शीट्स आई सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजी, वो ऑलरेडी डिजिटाइज थी। हमको वो नक्शा ले जाके ग्राउंड ट्रूथिंग करनी थी, मतलब वो नक्शे ले जाके साइट में चेक करना था कि कौन से फीचर सही है कौन से गलत है। तो जो प्रक्रिया 6 महीने लेती थी वो अब मेरे ख्याल से 25 या 30 दिन में पूरी हो गई। हम लोग नक्शे लेके जाते थे, पेंसिल से मार्क करते थे और वही भेज के इसरो में अपडेट कर लेते थे। इस बचे हुए समय को हमने उस नगर का, इम्फाल की, अच्छे नगरी नियोजन, शहरी नियोजन कैसे किया जाए, कैसे हरियाली के बारे में क्वांटिफाइड स्टडी की जाए, उसमें लगाया। तो जहां समय बचता है वहां पे उसे दूसरे तरीके से उपयोग करने की सुविधा बढ़ जाती है। कई लोग जो AI विषय विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि वर्क डेज लिमिटेड हो जाएंगे, मतलब जो 6 दिन या 7 दिन या 5 दिन काम होता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ये वर्क आवर्स कम हो जाएंगे, तो इस चीज को हम चैनलाइज कर सकते हैं दूसरे उसमें। हाँ, ऐसे लोग जो मैं कह सकता हूँ शैक्षणिक स्तर पे नीचे हैं, जो इतने स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए भी चीजों या तकनीक के प्रति उनकी पहुंच जो है वो और सुविधा युक्त हो जाएगी। तो अगर वो चाहे तो इसकी मदद से नए स्किल्स को सीख के अपने आप को मार्केट रिलेवेंट बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हर युग में हुआ है। ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन चूंकि AI इतनी तेजी से चेंज हो रही है तो बहुत आसानी से लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, देखा जाए तो लोगों के पास ये संभावना रहेगी कि अपनी स्किल को अनलर्न करके कैसे वो रीलर्न करके मार्केट रिलेवेंट बन सकते हैं।
1: अनुग्रह जी, एक बात और कि अभी AI को आए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं अगर माने, तो अभी सबसे ज्यादा उपयोग इसका कहाँ हो रहा है?
2: देखिए, मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोध विषय है ये 1960 से चल रहा था। 2-4 साल पहले इसलिए हुआ है क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई थी कि हम AI के एडवांटेजेस को रियल लाइफ में देख पाए। जैसे मैंने बताया कि मैं 2014 से 16 के बीच में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने AI के कुछ परिणाम देखे थे। 2022 के एंड में जब ChatGPT लॉन्च हुआ, वो पहला ऐसा स्टेज था कि एक सामान्य आदमी भी एक तरह से यूज कर सकता था AI को अपने दैनिक डेली डे टू डे टास्क के लिए। तो आज की डेट में मेरे ख्याल से पिछले 2-2.5 साल में ChatGPT हो गया है, Gemini हो गया है, Airtel के यूजर है तो Perplexity मिल जाता है फ्री में। इतने ज्यादा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल्स हैं, तो ऑलमोस्ट हर विषय में ही इनकी उपयोगिता हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रहा है। इसकी बजाय अगर प्रश्न ये हो कि कहाँ यूज नहीं हो रहा है, वो है जैसे मैं अपने IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस के बहुत वरिष्ठ सीनियर प्रोफेसर उनके साथ बैठा था, IIT हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर के साथ बैठा था और रुड़की के प्रोफेसर के साथ बैठा था, और भी मेरे साथी लोग थे। हम लोग एक वर्कशॉप में गए थे, वहां पे चर्चा हो रही थी, तो वहां पे कंप्यूटर साइंस कानपुर वाले कंप्यूटर साइंस के सीनियर प्रोफेसर ने बोला कि भाई ये AI हम लोग को भी रिप्लेस कर देगा। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने बोला यार IIT के कंप्यूटर साइंस के ही जिन्होंने मशीन लर्निंग पे पिछले 20-30 सालों से शोध किया हो, वो प्रोफेसर ऐसा बोला। मैंने पूछा प्रकाश डाली, तो बोला कि IIT में उनका एक स्टूडेंट है उनके विषय का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया करता है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाता है, मतलब ही इज वेरी शार्प, लेकिन वो क्लास अटेंड नहीं करता
1: जी।
2: तो जब उनसे पूछा गया, चूंकि उसमें मेंटरशिप होता है IIT में, डिप्रेशन में नहीं चले जाए, सुसाइड नहीं हो, तो संवाद अच्छा रहता है टीचर और स्टूडेंट का, तो उसको बुला के पूछा भाई आप पढ़ाई में अच्छे हो लेकिन क्लास नहीं आ रहे हो, कुछ सब कुछ कुशल मंगल है, क्या समस्या है? तो बच्चे ने बोला सर जो मैं कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो मैं AI की मदद से इंटरैक्टिव तरीके से, 1 घंटे का मान लीजिए क्लास है तो 15 मिनट में वो टॉपिक समझ जाता हूँ। और ऐसे टूल्स हैं, मैं भी अपने टीचिंग पेडागोजी में पढ़ाने के लिए कई ऐसे टूल्स यूज करता हूँ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, कैसे इसको सरल भाषा में समझाया जा सके। तो बोले सर 1 घंटे की क्लास का मटेरियल मैं 15 मिनट में कंज्यूम कर लेता हूँ और वो मेरे रिजल्ट में प्रोजेक्ट में दिख रहा है। बचे हुए 45 मिनट में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या ऐसा कोई नया स्किल सीखता हूँ जो मेरे जीविकोपार्जन में या प्लेसमेंट में मेरे काम आए, तो मेरे लिए क्लास आने का इंसेंटिव क्या है? अब ये प्रश्न देखिए, कॉलेज IITs में अगर एक उद्देश्य देखा जाए तो ठीक है, आप लोगों को पैकेज अच्छा मिले, इंस्टीट्यूट्स शुड गिव गुड प्लेसमेंट टू द स्टूडेंट्स, तो बच्चा कमाने लायक स्किल सीख रहा है, और जो कॉन्सेप्ट उसको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा वो बोल रहा है कि वो 15 मिनट में सीख रहा है। तो प्रोफेसर ने यही कहा कि भाई AI तो हमको भी रिप्लेस कर देगा। अब इस बदलते दौर में हम ऐसा क्या करें कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बेहतर बच्चों को एंगेज करके रख पाए, ये चैलेंज है। ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए बताया कि टीचिंग एक ऐसा विषय है जहाँ पे अपन कोशिश करते हैं कि 1-on-1 बात करके बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दिया जाए, वहाँ पे भी AI घुस चुका है। और ये एक फील्ड का है, जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया में आजकल कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर्स की भरमार आ गई है। आपके आजू बाजू में कई लोग ऐसे होंगे जो जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि ये लेखनी में उतने उत्कृष्ट हो सकते हैं, वो सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। कैमरे में ऑटोमेटेड फिल्टर्स हैं, आप किसी व्यक्ति को निजी रूप से जानते हैं लेकिन आप उसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा यार इसने प्रोफेशनल फोटोशूट करवाया हो, उसके पास AI इनेबल्ड कैमरा या फिल्टर है। तो प्रश्न अगर ऐसा हो कि कौन से ऐसे विषय हैं जहाँ पे AI पेनिट्रेट नहीं करेगा,
1: वो डीपी में बड़ा भारी एक परिवर्तन दिख ही रहा है।
2: हाँ,
1: मतलब वो ऐसा कह सकते हैं क्योंकि अपन ने बात ही शुरू करी थी, विषय भी अपना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कुल मिला के आर्टिफिशियल उसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है, वास्तविक कितना है ये एक अलग विषय है।
2: हाँ।
1: उस आर्टिफिशियल को कितना आप और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात आपने कही थी अभी अभी, 15 मिनट में कोई भी स्टूडेंट है वो अपने विषय को उससे बेहतर समझ लेता है, तो ये अंतर कैसा है? क्या मतलब वाकई जैसे कोई 10वीं का 12वीं का स्टूडेंट या कहीं का पढ़ने वाला इंजीनियरिंग का मेडिकल स्टूडेंट, ऐसा क्या है कि वो उसको उसमें 15 मिनट में उस चीज़ को समझ लेता है बनस्पत टीचर के समझने से?
2: देखिए, आप भी कभी कोशिश करके देखिएगा कोई ऐसा तकनीकी विषय जिसके बारे में आपको जानना है, जैसे AI बार लीजिए, आप ChatGPT खोल के उसमें लिखिएगा, इमेजिन यू आर अ टीचर,
1: जी
2: एक्सप्लेन AI टू मी लाइक आई एम अ क्लास 10th स्टूडेंट,
1: जी
2: क्लास 5th स्टूडेंट करके देखिएगा, उसका आउटपुट अलग रहेगा। आई एम ए स्टूडेंट परस्यूइंग लेट्स से BA इन पॉलिटिकल साइंस, तो आप पाएंगे कि वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कोई भी ChatGPT हो या एंथ्रोपिक, वो हर बार आपके उस स्तर के हिसाब से आपको आंसर दे रहा है। इन सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का सर जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो बहुत विशाल है। मतलब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की काम करने की प्रक्रिया ऐसी रहती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड, वो ये नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं। वो ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत बड़े ट्रेनिंग डेटा सेट पर ट्रेन किया गया। इसको मैं अगर एक शब्दों में समझाना चाहूँ तो एक पूरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें होती हैं उन किताबों की 10 गुना किताबों से उनको ट्रेन किया गया। मतलब उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उन सारी किताबों को एक तरह से पढ़ा हुआ है और उस पूरे पढ़े हुए टेक्स्ट की मदद से वो अगला शब्द या अगला सेंटेंस प्रिडिक्ट करते हुए अपनी बात कहता है। तो उसका जो कॉर्पस ऑफ नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा विशाल है। मैं फिर दोहराऊंगा कि वो समझता नहीं है उन टेक्स्ट, उन लाइनों का, उन शब्दों का अर्थ नहीं समझता, लेकिन उसने चीजों के पैटर्न को समझा है, ग्रामर के पैटर्न को समझा है, सब्जेक्ट के पैटर्न को समझा है, और उसी तर्ज पे वो अगले शब्द, अगले वाक्य, अगले पैराग्राफ रिक्रिएट कर रहा है। तो उसका कॉर्पस ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जितनी किताबें नहीं पढ़ पाएगा। आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑलरेडी उससे ज्यादा किताबें पढ़ चुके हैं। तो उस ब्रॉड कॉर्पस ऑफ नॉलेज से वो कैसे कंटेक्चुअलाइज करके अपने सवाल को जवाब दे पा रहा है, वो उसे बहुत इफेक्टिव बनाता है टीचिंग के लिए। दूसरा होता है, जैसे अपन टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात करते हैं, आमतौर पे देखा जाए तो जितने कम स्टूडेंट होंगे एक पर टीचर, उतना बढ़िया टीचिंग पेडागोजी होगी। अब समस्या यही आती थी कि भाई ऐसा तो कोई परिस्थिति बनती नहीं है कि एक टीचर एक स्टूडेंट के ऊपर हो, एटलीस्ट 10 या 15 का तो बैच हो गई, और जितने ज्यादा बच्चे होंगे टीचर के लिए एक बच्चे पे ध्यान देना उतना मुश्किल होगा। यहाँ पे आपके पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो हर बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से, उसके रुचि के विषयों के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से इंडिविजुअली उसको कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है
1: जी।
2: तो ये AI का एडवांटेज है। दैट बीइंग सेड, इतना सब करने के अलावा AI के बहुत भयंकर दुष्परिणाम भी है। यहाँ पे एक दुष्परिणाम जो मैं बताना चाहूंगा ताकि बैलेंस हो जाए कहानी, वो ये है कि चूंकि AI समझता नहीं है शब्दों को, वाक्यों को, वो स्टैटिस्टिकल पैटर्न पे अगला वर्ड, अगला लाइन, अगला पैराग्राफ प्रिडिक्ट कर रहा है, तो AI कई बार हेलुसिनेट भी कर लेता है या गलत जानकारी भी दे सकता है। तो ये चीज भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो AI बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ट्रेनिंग डेटा सेट में जो है वो अगर सही है तो AI सही प्रिडिक्ट करेगा, अगर उसमें ट्रेनिंग डेटा सेट में बायस है, जैसे आज से 2-3 साल पहले बड़ा अच्छा एक केस हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे बताया कि ChatGPT से अगर आप बोले इमेज जनरेट करने को कि एक व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा है, लेफ्ट हैंड से, तो क्रिएट नहीं कर सकता। लोगों ने बड़ा इसको हल्के पे लिया कि यार बताइए प्रधानमंत्री जी कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो सही था, ChatGPT से अगर आप प्रॉम्प्ट में लिखेंगे कि भैया एक ऐसे फोटो जनरेट करो जिसमें व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा, वो लेफ्ट हैंड से लिखने वाले व्यक्ति की फोटो बना ही नहीं सकता था। ये मैंने क्लास में बच्चों को करके दिखाया था, शायद अब वो बता सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जिन इमेजेस पे वो ट्रेन हुआ होगा या जिन कॉन्टेक्स्ट पे वो ट्रेन हुआ होगा उसमें उसके पास कोई लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करते हुए व्यक्ति की इमेज उसने देखी या समझी नहीं होगी, तो उसके ट्रेनिंग डेटा सेट में चूंकि सब राइट हैंड से लिख रहे थे इसलिए वो भी राइट हैंड से क्रिएट कर रहा था। तो एक तो ट्रेनिंग डेटा सेट की उपलब्धता, उसके बायसनेस, और दूसरा वो जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो सही है कि नहीं, ये देखना आवश्यक है। अन्यथा जो एडवांटेज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी तरह उल्टा जा सकते हैं।
1: डॉक्टर अनुग्रह नगाइच हमारे साथ मौजूद थे आज स्टूडियो में, उन्होंने इतना तफसील से इस विषय को बताया हमें। कार्यक्रम टेक गुरु में आज AI पर जो हमने बातचीत की उसमें इस भाग में हमने जाना कि आखिर AI है क्या, AI कहाँ कहाँ अपना असर डालने वाला है, और ऐसे कई सारे प्रश्न। डॉक्टर अनुग्रह नगाइच का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: ये चर्चा जारी रहेगी आगे भी। तो ये था कार्यक्रम टेक गुरु जिसमें आज हमने बात की AI पर। ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच में जो पहुंचाया, इसके मार्गदर्शक थे संतोष कुमार वर्मा जी, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा हमारे साथ सतीश पाथम का, और मैं हूं आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आपका अपना 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह।
3: मैं हूं आपका दोस्त दीपक नेमा।
2: श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वाधीनता संग्राम सेनानी, समाज सेवी और गांधीवादी विचारक लोकनायक उमियो कुमार दास की। श्रोताओं, आज हम उस महान आत्मा को जानने समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। आज हम स्मरण कर रहे हैं लोकनायक उमियो कुमार दास जी का, एक ऐसे महापुरुष जो केवल असम के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के गौरव हैं।
3: लोकनायक उमियो कुमार दास जी का जीवन साधारण नहीं बल्कि असाधारण त्याग, तपस्या और समर्पण की एक अद्भुत गाथा है। वे एक ऐसे युग के साक्षी और निर्माता थे जब भारत की आजादी के लिए हर घर से दीप जल रहे थे, हर सीने में देशभक्ति की ज्वाला धधक रही थी। उस महान स्वतंत्रता संग्राम में उमियो कुमार दास जी ने अग्रणी भूमिका निभाई। आज के इस कार्यक्रम में हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे, उनके योगदान को समझेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
2: श्रोताओं, उमियो कुमार दास, जिन्हें लोकनायक की उपाधि से विभूषित किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी, समाज सेवी, गांधीवादी विचारक, शिक्षाविद और असम के प्रमुख राजनेता थे। उनका जीवन त्याग, समर्पण और राष्ट्र सेवा का एक अनुपम उदाहरण है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया।
3: उमियो कुमार दास का जन्म 21 मई 1895 को असम के नागांव जिले में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कारों से युक्त किया। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना और समाज सेवा की प्रवृत्ति विद्यमान थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तेजपुर हाई स्कूल में हुई। तेजपुर, जो असम का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है, वहां की शैक्षणिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूल के दिनों से ही वे मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते थे।
2: प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद उमियो कुमार दास ने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में दाखिला लिया। कॉटन कॉलेज असम का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान था, जहां उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त हुई। यहां उनका संपर्क विभिन्न राष्ट्रवादी विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से हुआ। बाद में उन्होंने कलकत्ता के सिटी कॉलेज में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखी। कलकत्ता उस समय भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। यहां उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों को करीब से देखने का अवसर मिला। इन महान नेताओं के विचारों और कार्यों ने युवा उमियो कुमार दास को गहराई से प्रभावित किया।
3: कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। वे छात्र संगठनों से जुड़े और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने लगे। ये उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। जब 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब उमियो कुमार दास ने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वे गांधी जी के आदर्शों, सत्य, अहिंसा और स्वराज से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने असम में असहयोग आंदोलन को संगठित करने में अग्रणी भूमिका निभाई।
2: युवा ओमियो कुमार दास ने असम के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर छात्रों और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। उनके प्रभावशाली भाषणों और निष्ठा ने कई युवाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ओमियो कुमार दास इसके असम में प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन किया और नमक कानून तोड़ने के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की।
3: इस आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल की यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन जेल की कठोर परिस्थितियां भी उनके संकल्प को नहीं तोड़ सकी। जेल में रहते हुए भी वे अन्य कैदियों को प्रेरित करते रहे और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनकी निष्ठा बनाए रखते रहे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा निर्णायक मोड़ था। ओमियो कुमार दास ने असम में इस आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, तो ओमियो कुमार दास ने इसे पूरी तरह से अपना लिया।
2: इस आंदोलन के दौरान गोपीनाथ बारडोली और सिद्धिनाथ शर्मा जैसे नेताओं के साथ ओमियो कुमार दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें असम के विभिन्न जेलों में कैद किया गया। उनकी गिरफ्तारी ने आंदोलन को और अधिक तीव्र कर दिया। पूरे असम में लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ओमियो कुमार दास को अनेक बार कारावास में डाला गया। उन्होंने कुल मिलाकर कई वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। उनकी अटूट देशभक्ति और निरंतर संघर्ष ने उन्हें असम के सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बना दिया।
3: ओमियो कुमार दास की योग्यता और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 1937 में असम विधानसभा के लिए चुना गया। ये उनके राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। 1945 में उन्हें भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी चुना गया, जहां उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में योगदान दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद ओमियो कुमार दास ने अपने राजनीतिक कार्य को जारी रखा। उन्होंने ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार 1951, 1957 और 1962 में चुनाव जीता। इन वर्षों के दौरान उन्होंने असम सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर कार्य किया।
2: जब ओमियो कुमार दास असम के श्रम मंत्री थे, तब उन्होंने चाय बागान मजदूरों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। असम में चाय उद्योग एक प्रमुख आर्थिक स्तंभ था, लेकिन चाय बागान के मजदूर अत्यंत शोषणकारी परिस्थितियों में काम करते थे। ओमियो कुमार दास ने चाय बागान मजदूरों के लिए भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड की स्थापना की। ये पहल एशिया में अपनी तरह की पहली योजनाओं में से एक थी। इस योजना ने हजारों मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की और उनके जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: उन्होंने मजदूर वर्ग को संगठित करने और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में भाग लिया, जहां उन्होंने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की वकालत की। शिक्षा मंत्री के रूप में ओमियो कुमार दास ने असम में बुनियादी शिक्षा योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये योजना महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा को व्यवहारिक और उपयोगी बनाना था।
2: उन्होंने असम में शिक्षा के प्रसार के लिए कई स्कूल और शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी साधन है। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया। ओमियो कुमार दास ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इस दौरान उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि असम के सभी क्षेत्रों में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उचित आपूर्ति हो। उन्होंने विशेष रूप से गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
3: ओमियो कुमार दास केवल एक राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उन्होंने असमिया भाषा में कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। ओमियो कुमार दास की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उसका असमिया भाषा में अनुवाद था। उन्होंने इसे मोर सत्य अनेश्वर काहिनी शीर्षक से अनुवादित किया।
2: ये अनुवाद असम के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने उन्हें गांधी जी के जीवन और विचारों को उनकी अपनी भाषा में समझने का अवसर दिया। इस अनुवाद ने असम में गांधीवादी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओमियो कुमार दास ने महात्मा गांधी पर कई अन्य पुस्तकें भी लिखीं। गांधी जीर जीवनी अर्थात गांधी जी की जीवनी, ये पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। महात्मा गांधी आमी किदोर बुजिलू अर्थात महात्मा गांधी को मैंने कैसे समझा, इस पुस्तक में उन्होंने गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों की अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है।
3: असमोत महात्मा, असम में महात्मा, ये पुस्तक महात्मा गांधी की असम यात्रा और असम में उनके प्रभाव पर केंद्रित है। इन पुस्तकों ने असम के लोगों को गांधीवादी विचारधारा से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओमियो कुमार दास की लेखनी सरल और प्रभावी थी, जो आम लोगों तक आसानी से पहुंच सकती थी। ओमियो कुमार दास का जीवन केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, वे एक समर्पित समाज सेवी थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में लगा दिया।
2: ओमियो कुमार दास कई गांधीवादी और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे। ओमियो कुमार दास ने इस संगठन के माध्यम से असम में अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष किया। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ से भी वो जुड़े थे। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए कार्य किया। इसके साथ ही भारत सेवक समाज से भी उनका संबंध था। ये संगठन समाज सेवा के लिए समर्पित था और ओमियो कुमार दास इसके सक्रिय सदस्य थे।
3: गांधी स्मारक निधि, ये संगठन महात्मा गांधी की स्मृति में स्थापित किया गया था। ओमियो कुमार दास इससे सक्रिय रूप से जुड़े थे। कस्तूरबा स्मारक निधि, ये संगठन महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करता था। असम सेवा समिति, ये असम का एक प्रमुख समाज सेवी संगठन था जिसके संस्थापकों में ओमियो कुमार दास भी थे। ओमियो कुमार दास ने असम में नशा विरोधी अभियान चलाया। उस समय असम में विशेष रूप से चाय बागानों में शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन एक बड़ी समस्या था। उन्होंने लोगों को नशे की बुराइयों के बारे में जागरूक किया और नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम चलाए।
2: ओमियो कुमार दास ने कुष्ठ रोग और तपेदिक से पीड़ित रोगियों के पुनर्वास के लिए भी कार्य। उस समय ये रोग एक बड़ी सामाजिक समस्या थे और इन रोगों से पीड़ित लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ओमियो कुमार दास ने इन रोगियों के लिए उपचार और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया। ओमियो कुमार दास एक सरल और विनम्र व्यक्ति थे। उनका जीवन गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित था। वे सत्य और अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें लोक नायक कहकर पुकारा करते थे।
3: उनमें अद्भुत संगठन क्षमता थी। वे विभिन्न वर्गों के लोगों को एक साथ लाने और उन्हें एक साझा उद्देश्य के लिए संगठित करने में सक्षम थे। उनकी वाणी में जादू था। जब वे सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते थे। ओमियो कुमार दास एक निडर व्यक्ति थे। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने कई बार जेल की यातनाएं सही, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका नेवर से डाई, कभी हार ना मानने वाला दृष्टिकोण उनके चरित्र का एक प्रमुख पहलू था।
2: श्रोताओं, वो एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति भी थे। उनकी पत्नी पुष्पलता दास भी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका थीं। दोनों ने मिलकर समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के कार्य किए। उनकी बेटी ने भी पिता के आदर्शों का अनुसरण किया। ओमियो कुमार दास के समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के महान योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1963 में पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया था। ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान उन्हें उनके जीवन भर के समर्पित कार्य के लिए दिया गया था।
3: भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ने 15 मई 1998 को ओमियो कुमार दास के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ये सम्मान उनके महान योगदान की स्वीकृति थी। 1995 में ओमियो कुमार दास की जन्म शताब्दी के अवसर पर गुवाहाटी में ओमियो कुमार दास सामाजिक परिवर्तन और विकास संस्थान की स्थापना की गई। ये संस्थान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है। ये संस्थान सामाजिक शोध और विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। ढेकियाजुली में एक कॉलेज को लोकनायक ओमियो कुमार दास कॉलेज के नाम से नामित किया गया है। ये कॉलेज उनकी स्मृति में स्थापित किया गया है और असम में युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करता है।
2: ओमियो कुमार दास का निधन 23 जनवरी 1975 को हुआ। उस समय उनकी आयु लगभग 79-80 वर्ष थी। उनके निधन से असम और पूरे भारत ने एक महान नेता और समाज सेवी को खो दिया। उनकी मृत्यु पर असम में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन के समय उनकी पत्नी पुष्पलता दास और उनकी बेटी जीवित थीं। पुष्पलता दास स्वयं एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और संसद सदस्य थीं। उनका निधन सन 2003 में हुआ।
3: ओमियो कुमार दास की विरासत आज भी असम में जीवित है। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। चाय बागान मजदूरों के लिए उनके द्वारा स्थापित भविष्य निधि योजना आज भी लाखों मजदूरों को लाभान्वित कर रही है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा किया गया गांधी की आत्मकथा का अनुवाद आज भी असम में व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। ये पुस्तकें नई पीढ़ियों को गांधी जी के विचारों और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से परिचित कराती हैं।
2: ओमियो कुमार दास ने असम के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने असम में शिक्षा के प्रसार के लिए कई संस्थान स्थापित किए और ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक जागरूकता फैलाने का कार्य किया। असम की अर्थव्यवस्था में चाय उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उन्होंने चाय बागान मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अथक प्रयास किए। उनकी पहल से चाय बागान मजदूरों को न केवल बेहतर वेतन मिला बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त हुई।
3: उन्होंने असम की बहु सांस्कृतिक और बहुभाषी विरासत को समझा और सभी समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने चाय बागान मजदूरों और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए। ओमियो कुमार दास ने असम के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए नीतियां बनाई। उन्होंने कृषि सहकारी समितियों की स्थापना में सहायता की जिससे किसानों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि स्वस्थ समाज ही विकसित समाज हो सकता है।
2: ओमियो कुमार दास के जीवन का केंद्र गांधीवादी विचारधारा थी। उन्होंने महात्मा गांधी के 3 प्रमुख सिद्धांतों सत्य, अहिंसा और सर्वोदय को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया। सत्य उनके जीवन का आधार था। वे हमेशा सत्य बोलते थे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों। उन्होंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा उनके चरित्र की पहचान थी।
3: ओमियो कुमार दास अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी उन्होंने हमेशा अहिंसक तरीकों को अपनाया। वे मानते थे कि हिंसा से कभी भी स्थायी समाधान नहीं मिल सकता। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि अहिंसा के माध्यम से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोदय यानी सभी का उत्थान उनके जीवन का मूल मंत्र था। वे किसी एक वर्ग या समुदाय के विकास में विश्वास नहीं करते थे। उनका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर सबसे पिछड़े और वंचित वर्गों का उत्थान करना था। उन्होंने अपने जीवन में इस आदर्श को साकार करने का प्रयास किया।
2: गांधी जी की तरह ओमियो कुमार दास भी खादी और स्वदेशी वस्तुओं के प्रबल समर्थक थे। वे हमेशा खादी के वस्त्र पहनते थे और लोगों को भी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने असम में खादी उद्योग के विकास के लिए भी प्रयास किया। ओमियो कुमार दास महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे। उनकी पत्नी पुष्पलता दास स्वयं एक सशक्त महिला थीं, जो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। ओमियो कुमार दास ने महिलाओं को शिक्षा और समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
3: उन्होंने कस्तूरबा स्मारक निधि के माध्यम से महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी और लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित करने में सहायता की। ओमियो कुमार दास का मानना था कि समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। उन्होंने अपने जीवन में इस विचार को व्यवहारिक रूप दिया।
2: ओमियो कुमार दास युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। ओमियो कुमार दास ने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचा। उनका जीवन निस्वार्थ सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
3: ओमियो कुमार दास अपने सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहे, चाहे जेल की यातनाएं सहनी पड़ी या अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ओमियो कुमार दास शिक्षा को समाज के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के प्रसार के अथक प्रयास किए। युवाओं को उनसे ये शिक्षा मिलती है कि शिक्षा ही जीवन में सफलता की कुंजी है।
2: ओमियो कुमार दास ने सभी वर्गों और समुदायों के बीच समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। युवाओं को उनसे सामाजिक सद्भाव और एकता का पाठ मिलता है। ओमियो कुमार दास के जीवन में अनेक संघर्ष और चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें ब्रिटिश सरकार के कठोर दमन का सामना करना पड़ा। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल में कठोर यातनाएं भी दी गईं। लेकिन इन यातनाओं ने उनके संकल्प को और अधिक मजबूत किया।
3: स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के कारण ओमियो कुमार दास को आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी आर्थिक लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ओमियो कुमार दास ने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। उस समय समाज में ये प्रथाएं गहराई से जड़े जमाई हुई थीं। उन्हें इन रूढ़ियों को तोड़ने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने प्रयासों में सफल रहे।
2: ओमियो कुमार दास के समकालीन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई महान नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध थे। महात्मा गांधी उनके आदर्श और प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से भी भेंट की और उनके मार्गदर्शन में काम किया। गांधी जी भी ओमियो कुमार दास के समर्पण और कार्य से प्रभावित थे। स्वतंत्र भारत में ओमियो कुमार दास का संबंध कई अन्य राष्ट्रीय नेताओं से भी था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन नेताओं के साथ काम किया।
3: असम के अन्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों जैसे गोपीनाथ बारडोली, तरुण राम फूकन और अन्य के साथ भी उनके घनिष्ठ संबंध थे। इन सभी नेताओं ने मिलकर असम में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाया। लोकनायक ओमियो कुमार दास का जीवन त्याग, तपस्या और समर्पण की अद्भुत गाथा है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता, कुशल प्रशासक, प्रभावी लेखक और समर्पित समाज सेवी भी थे।
2: उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों को केवल सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि व्यवहार में अपनाया और इस प्रकार एक आदर्श जीवन जिया। आज भी असम और पूरे भारत में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। वे सच्चे अर्थों में लोकनायक थे। लोकनायक अर्थात जनता के नायक, जिन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा में समर्पित कर दिया।
3: ओमियो कुमार दास की जीवनी युवा पीढ़ी के लिए एक महान प्रेरणा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही जीवन को सार्थक बनाता है। उनकी स्मृति हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती रहेगी। लोकनायक ओमियो कुमार दास जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता त्याग में है, सेवा में है, निस्वार्थ भाव में है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से पूरे समाज को बदल सकता है। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय के मार्ग पर चलकर ही मानवता का वास्तविक विकास संभव है। दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम भारत विभूति में हमने ढेर सारी बातें की लोकनायक ओमियो कुमार दास जी के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा, और मैं था आपका दोस्त दीपक निमा,
2: और मैं थी आपके साथ सुनीता सिंह।
3: तो दोस्तों, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, भ्रष्टाचार की सफाई और दीवानी का खेल। क्या आप जानते हैं कि जब लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 1765 में कलकत्ता लौटे तो उन्हें एक अनुशासित व्यापारिक केंद्र नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा शहर मिला जिसे उन्होंने कल्पना से परे लालची और विलासी बताया था। पलासी की जीत के बाद यह तथाकथित स्वर्ग से जन्मा सेनापति अपनी प्रसिद्धि और अपनी आयरिश पियरेज यानी कुलीन पद का आनंद लेने के लिए इंग्लैंड लौट गया था, लेकिन पीछे जो बंगाल छूटा था वह भ्रष्टाचार के गर्त में गिर चुका था। क्या आप जानते हैं कि कंपनी के कर्मचारी वह बन चुके थे जिन्हें एडमंड बर्क ने बाद में शिकारी पक्षियों की नई उड़ान कहा था। धन की अदम्य भूख से प्रेरित मामूली वेतन पाने वाले युवा क्लर्क राइटर अचानक राजकुमारों की तरह रहने लगे थे। वे स्थानीय शासकों से भारी उपहार वसूलते थे और दस्तक, निजी व्यापार, पास के दुरुपयोग के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आतंक फैलाते थे। नवाब का हर बदलाव एक और 5 अंकों वाले इनाम का बहाना बन गया, जबकि कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। लॉर्ड क्लाइव अपने तीसरे कार्यकाल के लिए इस व्यापक भ्रष्टाचार की सफाई करने के जनादेश के साथ आए थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने ही सहयोगियों का शिकार करने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी का इस्तेमाल किया? क्लाइव ने उन्हें मनाने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने पार्षदों को उनकी अचानक बड़ी संपत्ति का विवरण देने के लिए बुलाया और हर अधिकारी को भविष्य में उपहार न लेने के लिए एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। लेकिन क्लाइव के सुधारों में एक अजीब विडंबना थी। क्या आप जानते हैं कि जहां वे ईमानदारी की मांग कर रहे थे, वहीं वे खुद अपनी कुख्यात जागीर से सालाना बड़ी रकम प्राप्त कर रहे थे। जब अपमानित पार्षदों ने उन्हें याद दिलाया कि वे केवल उनके द्वारा स्थापित उपहार लेने के उदाहरण का पालन कर रहे थे, तो क्लाइव का जवाब अभिजात्यवाद का एक उत्कृष्ट नमूना था। उन्होंने दावा किया कि उनके पुरस्कार वास्तविक सेवाओं के लिए थे, जबकि उनके सहयोगियों के पुरस्कार निम्न श्रेणी के दावों की लूट थे। निजी व्यापार के मुद्दे को हल करने के लिए क्लाइव ने वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए नमक और तंबाकू पर राज्य स्वीकृत एकाधिकार पेश किया। हालांकि इसका उद्देश्य अधिकारियों के लिए कानूनी आय सुनिश्चित करना था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका परिणाम भूखे किसानों के लिए बढ़ी हुई कीमतों के रूप में निकला, जबकि क्लाइव का व्यक्तिगत हिस्सा बहुत बड़ी रकम से भी बहुत ऊपर पहुंच गया था। सबसे बड़ा सुधार तब आया जब क्लाइव ने मुगल सम्राट से दीवानी अर्थात पूरे बंगाल का राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्राप्त किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ऐतिहासिक समारोह के लिए इस्तेमाल किया गया सिंहासन वास्तव में क्लाइव की अपनी डाइनिंग टेबल थी, जिसे कठपुतली सम्राट के लिए कपड़े से ढक दिया गया था। इस एक कार्य के साथ कंपनी व्यापारियों की एक साधारण समिति से हटकर एक संप्रभु शक्ति बन गई। अंततः क्लाइव का दूसरा प्रशासन एक दृढ़ और जिम्मेदार कमान थोपने में सफल रहा, लेकिन भ्रष्टाचार का वह अस्तबल पूरी तरह साफ होने से कोसों दूर था। उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ने घूसखोरी के भाईचारे का उल्लंघन किया, जिससे वे कलकत्ता में सबसे नफरत किए जाने वाले व्यक्ति बन गए और यह सुनिश्चित कर दिया कि उनकी ईश्वरीय विरासत का अंत संसदीय महाभियोग के गंभीर गलियारों में होगा।
2: आपने ट्यून किया 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। वक्त हो चला है रेडियो रिपोर्ट का।

नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंदी, अब वक्त रेडियो रिपोर्ट का है। आपके साथ में हूँ फराज। रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन के अंतरंग सभागार में, जहां बाबा कारंत स्मृति समारोह प्रणति का समापन हुआ 21 सितंबर को।

आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए भारत भवन के अंतरंग सभागार में। यह नाटक मारे गए गुलफाम के संपादित अंश। इस प्रस्तुति की परिकल्पना और निर्देशन किया संजय गर्ग ने।

पक्का गाड़ी हाँक रहे हैं। फारबिसगंज का हर व्यापारी हमें पक्का गाड़ी मान मानता है। चाहे कोई हमें 100 रुपया भी देना तो अपनी गाड़ी में बांस की लगती ना करे।

0: तो गांव में उस दिन महतो की भौजी का कह रही थी। रात के वक्त सुनसान रास्ते पर गंध महक खुशबू आए तो समझो वहां भूत चुड़ैल का प्रकोप होता है। तेरे हीरा सूरत तो देखी नहीं, बस बिठा ली सवारी। अरे कहीं हमने डाकी पिसाची तो नहीं बिठा ली अपनी गाड़ी में? आगे तो कोस दूर तक बस मैदान ही मैदान, बस्ती नहीं। हे बजरंगबली महाराज रक्षा करो, सवारों भैया का प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान सही सलामत मेला पहुंचाए। कहीं डाकी पिसाची हमारा कानून उसकार ना करते।
1: हीरा है।
0: अच्छा।
1: हाँ। अरे जब गांव में भौजी कुआं से हमें पुकारती है ना, तो ये हीरा चला
0: देगा।
1: मैं पत्ती कहीं का
0: और एक नाम है हमारा,
2: एक और नाम,
0: हाँ हीरा मोती का नौकर।
2: हीरा मोती का नौकर?
0: हाँ, सुबह से शाम तक इनकी सेवा करो तब जाके साहब लोग गाड़ी खींचते हैं। प्यार किया तो गाड़ी वाली धरी की धरी रह जाएगी, और हीरा मन सब कुछ छोड़ सकता है पर गाड़ी वाली नहीं। अच्छा आपके घर में कौन कौन है?

पकड़ने के लिए कुछ तकदीर तो चाहिए। पुकारा करते करते चीत मट्ठर हो गई है। कभी कभी महाराज के दोहों को और कभी विदेशी अनाज के गीतों को अपनी

बंद किए गए।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। वक्त है परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा। मानव संग्रहालय में महाका प्रादर्श श्रृंखला के तहत दक्षिण भारतीय धातुशिल्प की अप्रतिम कृति नटिया पेन एक अप्सरा का अनावरण किया गया। तमिलनाडु के कुंभकोणम तंजावुर के पारंपरिक शिल्पकारों द्वारा शास्त्रीय चोल शैली में निर्मित यह हस्तनिर्मित पंचलोह प्रतिमा अलंकृत कमल आसन पर त्रिभंग मुद्रा एस आकार में विराजमान है। प्रतिमा के उठे हुए हाथ पर एक पक्षी शुक या सारिका बैठा है, जो भारतीय साहित्य में प्रेम वरह और संदेशवाहक का प्रतीक है। तीन दिवसीय 8वें रंग फुलकारी नाट्य महोत्सव का आयोजन शुरू होने जा रहा है। 23 से 25 सितंबर तक प्रतिदिन शाम 6:30 से एवी बलिगा इंस्टीट्यूट तुलसी टावर के सामने शिवाजी नगर में इसका मंचन होगा। दर्शकों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है। पहले दिन 23 सितंबर को मुंशी प्रेमचंद की कृति पर आधारित नाटक सदगति का मंचन होगा। दूसरे दिन 24 सितंबर को रेणु बर्मैया द्वारा लिखित व निर्देशित नाटक सावित्री बाई फुले दृष्टिमन रंगकला संस्था दिखाया जाएगा। वहीं अंतिम दिन 25 सितंबर को पीयूष मिश्रा लिखित रंग मोहल्ला सोसाइटी पेश किया जाएगा। यंग थिंकर्स फोरम और स्किल्स स्टूडियो की ओर से बुधवार को स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी में एक खास ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया जा रहा है। ये ट्रेनिंग सेशन आर्ट ऑफ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पर होगा, जिसमें कॉरपोरेट ट्रेनर प्रिया राठौर बियॉन्ड वर्ड्स पर बात करेंगी। कार्यक्रम शाम 4 बजे से आयोजित होगा। इसमें बताया जाएगा कि आप किसी से मिलें तो आपके शुरुआती शब्द क्या होने चाहिए ताकि वे आपको सुनना चाहे। इसमें आई कॉन्टैक्ट बॉडी लैंग्वेज पर बात होगी। मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और हिंदी भवन न्यास की ओर से प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन बुधवार दोपहर 3 बजे हिंदी भवन में किया जाएगा। समारोह में प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य सृजनशील भविष्य के निर्माण को बढ़ावा देना भी है। और अब बात करते हैं आज के कुछ कार्यक्रमों की। 3 दिवसीय 8वें रंग फुलकारी नाट्य महोत्सव के तहत पहले दिन बुधवार को नाटक सदगति का मंचन किया जाएगा। इसका वेन्यू अध्ययन भवन सभागार लिंक रोड नंबर 2 है और टाइम इसका शाम 6:30 पर है। ये आज का कार्यक्रम था। तो ये थी परिक्रमा। सुनते रहिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए एक ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं, तप की शांति से दमकती हैं। यहां केवल कविताएं सुनाई नहीं जाती, वे समय के बंद कपाट खोलकर मनुष्य को उसके भीतर छिपे सत्य से मिला देती हैं। श्रोताओं, काव्य गुंजन की इस यात्रा में आपका फिर स्वागत है। महाकाव्य केवल घटनाओं का संग्रह नहीं होते, वे मनुष्य के भीतर छिपे संघर्षों का दर्पण होते हैं। पिछले भाग में हमने सुना उस क्षण को जहां वर्षों से मौन एक मां का हृदय बोल उठा और एक पुत्र ने अपने जीवन की सबसे कठिन पुकार के सामने भी अपने सिद्धांतों का हाथ नहीं छोड़ा। कर्ण और कुंती का यह मिलन मानो समय के पन्नों पर लिखा वो अध्याय है जिसमें आंसुओं की स्याही से कर्तव्य और करुणा की कहानी लिखी गई है। रश्मि रथी के पंचम सर्ग के अंतिम भाग में दिनकर जी ने कविता को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है वो पूरे महाकाव्य का सबसे भावुक और दार्शनिक बिंदु है।
1: भाग 5 और 6 में कर्ण थोड़ा भावुक होता है। अपनी माँ के सामने अपने दुख और समाज के तानों को लेकर परेशान और क्रोधित है, किंतु भाग 7 में आते आते उसकी भावुकता एक वज्र जैसी दृढ़ता में बदल जाती है। वह कुंती से कहता है कि अब देर हो चुकी है, भाग्य का पहिया घूम चुका है। यहाँ कर्ण ये जानते हुए भी कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण हैं और उसकी हार निश्चित है, अपने विनाश को गले लगाने के लिए तैयार हो जाता है। ये व्यवहार कर्ण को एक साधारण व्यक्ति से उठाकर महामानव बना देता है, जो जीत के लिए नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों के लिए मरता है। इस भाग की सबसे खास बात वह अद्भुत गणित है जो कर्ण कुंती के सामने रखता है। जब कुंती रोने लगती है तो कर्ण उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहता है कि युद्ध का परिणाम चाहे जो हो, कुंती का आंचल कभी खाली नहीं होगा। वह अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को अभयदान देगा। वह कहता है या तो अर्जुन मरेगा या मैं, दोनों ही हाल में तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अगर अर्जुन मरा तो मैं तुम्हारा पुत्र बनकर पांडवों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। एक माँ को सांत्वना देने का इससे भव्य, वीरोचित और मार्मिक तरीका पूरी दुनिया के साहित्य में कहीं नहीं मिलता। यहाँ कर्ण अपनी मौत का सौदा इतनी सहजता से करता है जैसे कोई खिलौना दे रहा हो। श्रोताओं, पंचम सर्ग के अंतिम भाग 7 के काव्य पाठ के साथ हम चर्चा भी जरूर करेंगे, किंतु रश्मि रथी के पंचम सर्ग के अंतिम भाव सागर में डूबने से पहले आइए कुछ क्षण उस महाकाव्य के जनक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को भी स्मरण कर लें। किसी भी महान कृति को समझने के लिए उसके रचनाकार के व्यक्तित्व को जानना उतना ही आवश्यक होता है जितना किसी विशाल वृक्ष को समझने के लिए उसकी जड़ों को पहचानना।
0: हिंदी साहित्य में दिनकर जी का स्थान कितना ऊंचा है, इसका अनुमान उनकी अमर कृतियों, संस्कृति के 4 अध्याय और परशुराम की प्रतीक्षा का अध्ययन मात्र कर लेने से ही लगाया जा सकता है। वे केवल ओज के कवि नहीं थे बल्कि राष्ट्र की आत्मा, भारतीय संस्कृति के प्रहरी और आधुनिक युग के सांस्कृतिक जागरण के महाकवि थे। कल्पना कीजिए, गंगा की शांत धारा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव सिमरिया, जहां भोर की पहली किरण के साथ मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, खेतों पर ओस की बूंदें मोतियों सी चमक उठती हैं, आम की अमराइयों से कोयल की मधुर कूक सुनाई देती है और लोक गीतों की स्वर लहरियां गांव की गलियों में जीवन का संगीत भर देती हैं। मिट्टी की सौंधी खुशबू, किसानों का श्रम और भारतीय संस्कृति की सहज आत्मा, यही उस गांव की पहचान थी। इसी पावन धरती पर सन 1908 में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसकी लेखनी आगे चलकर पूरे राष्ट्र की आवाज बन गई। वही बालक थे रामधारी सिंह दिनकर, जीवन ने उन्हें वैभव नहीं संघर्ष दिया, सुविधाएं नहीं चुनौतियां दी, लेकिन इन्हीं संघर्षों की भट्टी में तपकर उनका व्यक्तित्व कुंदन बना। कई कई मील पैदल चलकर शिक्षा प्राप्त करना, अभावों के बीच भी ज्ञान की लौ जलाए रखना और अपने अथक परिश्रम से शिखर तक पहुंचना, यही उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनी।
1: अपनी विलक्षण प्रतिभा, अथक परिश्रम और अद्भुत साहित्य साधना के बल पर दिनकर जी निरंतर नई नई ऊंचाइयां छूते गए। वे बिहार प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 13वें अधिवेशन के कवि सम्मेलन के सभापति भी बने और आगे चलकर पूरे देश ने उन्हें प्रेम और सम्मान के साथ राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया। निश्चय ही दिनकर जी का जीवन अपने आप में एक प्रेरक गाथा है, परंतु आज हमारा उद्देश्य उनके संपूर्ण जीवन का वर्णन करना नहीं बल्कि उस महाकवि को नमन करना है जिसकी लेखनी ने रश्मिरथी जैसा कालजयी महाकाव्य रचकर कर्ण के व्यक्तित्व को अमर कर दिया।
0: दोस्तों, मुझे रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी कविता सबसे प्रिय लगती है और मुझे समर शेष भी काफी पसंद है। दरअसल जैसा उनका व्यक्तित्व रहा, उनकी कविताएं भी वैसी ही वीर रस से ओतप्रोत हैं जो खून में उबाल ले आती हैं। इसलिए वे युवाओं के लिए हमेशा ही प्रासंगिक कवि रहे हैं। आगे हम उन पर बीच बीच में उनके साहित्यिक अवदान पर कभी लेखनी पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अभी आपको सुनाते हैं दिनकर जी द्वारा रचित मेरी पसंदीदा कविता समर शेष है की कुछ पंक्तियां। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकश का कष्ट खोलो, किसने कहा युद्ध की बेला चली गई शांति से बोलो, किसने कहा और मतभेद हो हृदय वही के सर से, भरो भवन का अंग कुमकुम से, कुसुम से, केसर से, कुमकुम लिपूं किसको, सुनाऊं किसको कोमल गान, तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। दोस्तों, जिसने शब्दों को केवल कविता नहीं बल्कि धधकते हुए अंगारे बना दिया, दिनकर जी ने जब रश्मिरथी की रचना की तो उन्होंने केवल महाभारत की कथा को नए पन्नों पर नहीं उतारा बल्कि इतिहास के हाशिए पर धकेल दिए गए एक चरित्र को उठाकर उसे आत्मगौरव, समता और संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। इस महाकाव्य की बुनावट में जहां एक ओर वीर रस का प्रचंड नाद है, वहीं दूसरी ओर वात्सल्य, करुणा और दर्शन की एक अंतःसलिला नदी भी बहती है। ये काव्य चीख चीख कर स्थापित व्यवस्थाओं से सवाल करता है कि कुल, जाति और वंश के संकीर्ण पैमानों से किसी मनुष्य की योग्यता को कैसे आंका जा सकता है। दिनकर जी का दर्शन बड़ा स्पष्ट था। वे भाग्य के भरोसे बैठने वाले कवि नहीं थे, वे पुरुषार्थ, कर्म और मनुष्य के आंतरिक तेज के उद्घोषक थे। जो कहते हैं कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के।
1: आज हम जिस 21वीं सदी के चक्रव्यूह में जी रहे हैं ना, जहां भौतिकता की अंधी दौड़ है, जहां मानवीय संवेदनाएं धीरे धीरे मशीनी हो रही हैं, वहां रश्मिरथी हमारे लिए एक नैतिक आईना बन जाती है। हम आज की सदी में क्या भूल रहे हैं? हम भूल रहे हैं कर्ण जैसा निश्चल त्याग, हम भूल रहे हैं दुर्योधन के अवगुणों के बीच भी उसकी उस गहरी मित्रता का मान जो मृत्यु के मुहाने पर भी अडिग रही, हम भूल रहे हैं कि हर संकट के समय समाज को श्री कृष्ण जैसे शांति दूत की आवश्यकता होती है। रश्मिरथी हमें सिखाती है कि जब जीवन में विपत्तियां आए, जब नियति हमें चारों ओर से घेर ले, तब भीतर के मनुष्य को टूटने नहीं देना है बल्कि विघ्नों को गले लगाना है और कांटों में राह बनाना है। आइए आज की इस आधुनिक आपाधापी के बीच दिनकर जी के इन शाश्वत विचारों को अपने भीतर उतारें और रश्मिरथी के इस अंतिम पड़ाव की ओर एक नई चेतना के साथ कदम बढ़ाएं। आइए श्रोताओं, मन को शांत और हृदय को संवेदनाओं से भरकर प्रवेश करते हैं रश्मिरथी के पंचम सर्ग के अंतिम सोपान में। तो लीजिए प्रस्तुत है पंचम सर्ग के भाग 7 का काव्य पाठ। कुंती के ये कहने पर पाकर ना एक को और एक को खोकर मैं चली चार पुत्रों की माता होकर, तो फिर कर्ण भी कह उठता है
2: छह और चार को भूलो माता, ये निश्चय मान मोद में भूलो। जीते जी भी ये समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी माँ अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कट मरकर जो भी हानि सहेंगे, पांच के पांच ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति ना जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से, तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रणी पांच पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वो मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है, निंदित है, निर्धन है, ये कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। सच है कि पांडवों को ना राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हां अगर पांडवों की ना चली इस रण में, वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में। राधेय ना कुरुपति का सहज जेता होगा, वो पुनः निस्वह दलितों का नेता होगा, वो पुनः निस्वह दलितों का नेता होगा।
0: दोस्तों, कर्ण के शब्दों में आज एक योद्धा की गर्जना नहीं, बल्कि कैसे पुत्र की पीड़ा सुनाई देती है, जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। कुंती के सामने खड़ा कर्ण जानता है कि रक्त का संबंध उसे पांडवों से जोड़ता है, पर जीवन का संबंध उसे उन संघर्षों से जोड़ता है जिन्हें उसने अकेले सहा है। कर्ण के भीतर कोई द्वेष नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, केवल एक शांत पीड़ा है जो कहती है कि मेरा जन्म चाहे जहां से हुआ हो, मेरी पहचान मेरे कर्मों से बनी है। और यही कर्ण की महानता का शिखर है, वो शिखर जहां मनुष्य अपने निजी दुख से ऊपर उठ जाता है। वो जानता है कि युद्ध आने वाला है, विनाश सामने खड़ा है, फिर भी उसके हृदय में उन लोगों के लिए करुणा है जो समाज की उपेक्षा में जी रहे हैं। दिनकर जी ने कर्ण के माध्यम से यह प्रश्न उठाया है कि महान कौन है, वो जो केवल विजय प्राप्त करे, या वो जो टूट कर भी दूसरों के लिए आशा बन जाए। कर्ण का मन इस समय दो दिशाओं में बंटा हुआ है। एक ओर मां की पुकार है, दूसरी ओर मित्रता और वचन का ऋण। लेकिन इन दोनों के बीच भी वो अपने भीतर के सूर्य को बुझने नहीं देता। यही वो क्षण है जहां कर्ण केवल महाभारत का पात्र नहीं रहता, बल्कि संघर्ष करते हर उस मनुष्य की आवाज बन जाता है जो परिस्थितियों से लड़कर भी मानवता को थामे रखता है। आइए सुनते हैं इसी भाव समंदर में डूबे कर्ण आगे और क्या कह रहे हैं।
2: है अभी उदय का लग्न, दृश्य सुंदर है, सब और पांडु पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योति की घड़ी ना मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यश मान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को। परिभव प्रदाह भ्रम भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों को भुज भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपनाकर, बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर। तम में नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं, कृष्ण के कर की छाह जहां है, रक्षिका स्वयं अच्युत की बांह जहां है, उस भाग्यवान का भाग्य क्षार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को। शोणित से सारी मही किलिन्न लथपथ है, जा रहा किंतु निर्बाध पार्थ का रथ है। काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा, शतपाश व्यर्थ रिपु का दल फैलाता है, वो जाल तोड़कर हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूं जननी कि कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा, लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगना बढ़ता जाता है। बज चुका काल का पटह, भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उलझी लटें खींच खेलेंगे, कुछ भी ना बचेगा शेष अंत में जाकर, विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर। कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न रह पाएंगे। है एक पंथ कोई जीत या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे, एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निस्सार्थ द्रोह की क्रिया व्यर्थ ये रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है, फिर भी जाने किस लिए ना हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर को झुकते हैं। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है, बहती प्रचंडता से सबको अपना कर, सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर। फिर लहर धार बुद्बुद की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी, सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से लहरें हो एकाकार मिलेंगी जल से, मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारल्य बीच फिर गलकर खो जाएंगी। आपस में हो हम खरे या कि हो खोटे, पर काल बली के लिए सभी हैं छोटे, छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता ना जाने कहां समेट धरेंगे। लेकिन चिंता ये वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल, कल का प्रभाव आने दो, दिखती किसी भी तरफ ना उजियाली है, सत्य

0: धैर्य। वह माँ को आश्वासन देता है कि चाहे युद्ध की धारा किधर भी बहे, उसके पुत्रों की संख्या 5 ही रहेगी। ये वचन किसी योद्धा का नहीं बल्कि उस उदार हृदय का है जिसने जीवन भर अपने दुखों को पीकर भी दूसरों के लिए करुणा संजोए रखी।
1: जब विदा का क्षण आता है तो शब्द पीछे छूट जाते हैं और केवल भाव शेष रह जाते हैं। दो बूंद आंसू कर्ण के चरणों पर गिरते हैं और कुंती बिना कुछ कहे लौट पड़ती है, मानो भाग्य ने उनके हृदयों के बीच एक अदृश्य दूरी खींच दी हो। उस सांझ में दृश्य हमें ये सत्य याद दिलाता है कि मनुष्य कई बार प्रेम से बंधा होता है, पर चलना उसे नियति की ही दिशा में पड़ता है। यही इस प्रसंग की करुण गरिमा है, जहां त्याग, प्रेम और नियति तीनों एक साथ अपनी छाया छोड़ जाते हैं।
0: आने वाला कुरुक्षेत्र मानो दूर क्षितिज पर गरजते बादलों की तरह दिखाई देता है। युद्ध की आहट, वीरों का संकल्प और काल का निमंत्रण, सब कुछ धीरे धीरे निकट आ रहा है। फिर भी इस करुण मिलन की स्मृति उस भीषण युद्ध के बीच भी एक दीपक की तरह जलती रहेगी, क्योंकि यहाँ केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि त्याग, मर्यादा और मौन प्रेम की वह झिलमिलाहट है जो कर्ण और कुंती की कहानी को अमर बना देती है। श्रोताओं, हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि इतिहास के खंडहर हमें वर्तमान की पीड़ा के प्रति सजग बनाते हैं और यही चेतना किसी साहित्य को अमर करती है। हिंदी की राष्ट्रीय कविता की विकास यात्रा में दिनकर जी का स्थान भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त के साथ शीर्ष पर है, जहां भारतेंदु जी ने कविता को ब्रज की गलियों से निकालकर देश की दुर्दशा की ओर मोड़ा और गुप्त जी ने अतीत के गौरव से वर्तमान को सुधारने की प्रेरणा दी। वहीं तीसरे पायदान पर आसीन दिनकर जी ने पराधीनता, सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण के खिलाफ वह प्रचंड शंखनाद किया कि उनका नाम ही युग धर्म की हुंकार बन गया। उनका व्यवहारिक जीवन हमेशा समाज के शोषित, दीन दुखी और उपेक्षित वर्ग के प्रति समर्पित रहा।
1: दोस्तों, दिनकर जी वीर रस के साथ साथ रौद्र, करुण और शांत रसों के भी सिद्ध हस्त कवि हैं, जिसका प्रमाण उर्वशी में श्रृंगार रस के परिपक्व रूप में मिलता है। उनकी राष्ट्रीयता और दर्शन पर एक तरफ भारतीय गौरवमयी परंपरा का प्रभाव है तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा का। सन 1946 में प्रकाशित कुरुक्षेत्र में उन्होंने भीष्म और युधिष्ठिर के संवादों के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बीच युद्ध और शांति के अत्यंत जटिल प्रश्न को उठाया है। वे गांधी जी के विचारों से गहरे प्रभावित तो थे, लेकिन संकट के समय कायरतापूर्ण आत्मसमर्पण के विरोधी थे। उनका स्पष्ट मानना था कि शांति की स्थापना के लिए कभी कभी अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाना भी परम धर्म बन जाता है।
0: लेकिन दिनकर जी केवल कल्पना के लोक में खोए रहने वाले रचनाकार नहीं थे। जैसे जैसे वे देश की पराधीनता, भुखमरी और गरीबी के कड़वे यथार्थ से रूबरू हुए, वैसे वैसे उनका बौद्धिक और यथार्थवादी स्वर मुखर होता गया, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उनकी कविताएं छायावाद के उस काल्पनिक कुहासे से मुक्त होकर सीधे धरातल के सच से जुड़ती चली गयी। उन्होंने कोमल कांत पदावली को छोड़कर गर्जना सीखी, बादलों से बरसते पानी की जगह अंगारे बरसाना सीखा। परिणाम ये हुआ कि हिंदी साहित्य को एक नई, ओजस्वी और क्रांतिकारी दिशा मिली जिसने महलों के सिंहासन खाली करने की मुनादी कर दी।
1: दोस्तों, जब कर्ण अपनी शर्तों पर अडिग रहता है तो कुंती का हृदय हाहाकार कर उठता है। वे कहती है कि हे हठी, तूने खुद को देकर भी मुझे खाली ही छोड़ दिया। मैं 6 पुत्रों की मां बनने की आस लेकर आई थी, लेकिन विधाता की क्रूरता देखो कि उसने मुझे आज भी 5 पुत्रों पर ही ला खड़ा किया। विधाता का न्याय कितना वाम है, यानी टेढ़ा है, कि मां अपने ही 2 बेटों को आपस में मरते देखने के लिए अभिशप्त है। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि कुछ गलतियां समय के किसी भी मरहम से नहीं भरी जा सकती। कुंती की ममता सच्ची है और कर्ण का कर्तव्य अटल है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, फिर भी दोनों के हिस्से में केवल पीड़ा है। दिनकर जी ने इस संवाद के माध्यम से ये दिखा दिया कि मनुष्य का गौरव केवल जीत में नहीं बल्कि अपने धर्म और वचन के लिए हंसते हंसते सर्वस्व न्योछावर कर देने में है। तो श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का। यह था पंचम सर्ग का अंतिम काव्यांश। लगता है दिनकर जी ने आत्मा की सारी परतें खोल दी। इतना भावुक काव्यांश मां और पुत्र का, इतना भाव प्रवण संवाद, हृदय जैसे बहुत देर तक इसी भाव में कहीं ठहर सा गया है। तो हम यहीं रुकते हैं, रश्मिरथी के इस रथ को यहीं विराम देते हैं। तब तक हमें अनुमति दीजिए, जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति लेखन दीपक नेमा, और इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा ने।
2: मैंने यानी आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा,
0: और मैं भगवती सक्सेना।
1: तो इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं विराम लेती है। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: जॉन अंडरहिल और 1644 का नरसंहार, जब भाड़े के सैनिकों ने लिखी साम्राज्य की पटका था। 1644 की कड़ाके की ठंड में डच वेस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसे व्यक्ति की ओर रुख किया जिसकी निर्दयी कार्य कुशलता की प्रतिष्ठा अटलांटिक सीमाओं के पार तक फैली हुई थी। कैप्टन जॉन अंडरहिल एक अमेरिकी मर्सिनरी यानी भाड़े का सैनिक थे जिनका विवाह एक डच महिला से हुआ था। अंडरहिल ने न्यू इंग्लैंड के पेकोट युद्ध के दौरान इतिहास में अपना नाम पहले ही खूनी अक्षरों में दर्ज कर लिया था। वह 1637 में मिस्टिक रिवर पर हुए उस कुख्यात नरसंहार के मुख्य सूत्रधार थे जहां उनके आदेश पर एक पूरे पेकोट गांव का विनाश कर दिया गया था। अब वह पूर्ण विनाश की वही भूख लेकर प्रथम डच मुंसी युद्ध के दौरान WIC की सेवा में आए। हडसन की घाटी में संघर्ष के ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां डच बसने वाले और मुंसी समूह हत्याओं और प्रतिशोध के अंतहीन चक्र में फंस गए थे। स्वदेशी प्रतिरोध को हमेशा के लिए कुचलने के इरादे से अंडरहिल ने फरवरी 1644 में WIC सैनिकों के एक दल का नेतृत्व करते हुए एक कुख्यात अभियान चलाया। उनका लक्ष्य आधुनिक न्यूयॉर्क के पाउंड रिज के पास स्थित एक किलाबंद टैंक टेकेस गांव था। अंडरहिल की रणनीति अधिकतम आतंक फैलाने के लिए सोची समझी थी। उन्होंने रात के अंधेरे में बस्ती के चारों ओर अपनी सेना तैनात की और उन पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। जब कोने में घिरे इंडियंस ने बाहर आकर लड़ने से इनकार कर दिया तो अंडरहिल ने भीषण अंत का रास्ता चुना। उन्होंने अपने आदमियों को पूरे गांव को आग लगाने का आदेश दिया, ये जानते हुए कि निवासी अपने ही लकड़ी के लॉन्ग हाउस के भीतर फंसे हुए थे। वह दृश्य अकल्पनीय भयावहता का था क्योंकि ग्रामीणों ने WIC सैनिकों के हाथों मारे जाने के बजाय आग की लपटों में जलकर मरना बेहतर समझा। जब तक आग शांत हुई 500 से अधिक इंडियंस लोग मारे जा चुके थे। ये घटना न्यू नीदरलैंड के इतिहास के सबसे क्रूर अत्याचारों में से एक थी जिसने 5 साल तक चले पूरे संघर्ष में खोए अनुमानित 1600 स्वदेशी जीवन का लगभग एक तिहाई हिस्सा ले लिया था। अंडरहिल की भाड़े की सेवा का प्रभाव केवल शवों की संख्या तक सीमित नहीं था। उनके अभियान के निचली हडसन घाटी में जनसांख्यिकी तबाही और स्वदेशी राजनीतिक संरचनाओं के पतन को तेज कर दिया। जीवित बचे मुंसी समूह के लिए डच कंपनी का वह दावा जो कभी यूरोपीय दस्तावेजों में केवल एक कानूनी कल्पना थी अब एक भयानक वास्तविकता बन गया। 1650 के दशक तक इंडियन समुदाय के नेता स्टेटन आयलैंड जैसी जगहों के लिए संपत्ति के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे और अपनी जमीन अभी और हमेशा के लिए सौंप रहे थे। अंडरहिल की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कंपनी राज्य का विस्तार केवल व्यापार और संधियों का मामला नहीं था बल्कि यह अक्सर हिंसा के पेशेवर एजेंटों की विशेषज्ञता पर बनाया गया था। 17वीं शताब्दी के सीमांत क्षेत्रों में एक भाड़े के सैनिक की मशाल किसी भी व्यापारी के बही खाते की तुलना में संप्रभुता के नक्शे को अधिक प्रभावी ढंग से फिर से लिख सकती थी। अंडरहिल जैसे क्रूर पुरुषों के माध्यम से WIC समुद्री घुसपैठियों के एक समूह से बदलकर देश के निर्विवाद मालिक में बदल गई।
2: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो,

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा।
3: और मैं हूं वर्षा सिंह।
2: और आज हम अपने कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक में बात करेंगे प्रोफेसर सतीश धवन की, जो कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के महानायक रहे हैं। कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे उस यात्रा पर जहां विज्ञान साधना बन जाता है और विनम्रता नेतृत्व की पहचान। आज हम बात करेंगे भारत के अंतरिक्ष स्वप्न को दिशा देने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन की। श्रोताओं, जब भारत पहले रॉकेट के सपने देख रहा था, तब डॉक्टर सतीश धवन ने सिर्फ तकनीक ही नहीं दी, उन्होंने दिया विश्वास, अनुशासन और टीम को आगे रखने का संस्कार।
3: ये कार्यक्रम है एक ऐसे वैज्ञानिक को समझने का प्रयास जिन्होंने सफलता का श्रेय खुद लिया और सफलता का सम्मान अपनी टीम को दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले क्षणों में हम जानेंगे डॉक्टर सतीश धवन का जीवन, उनके विचार और वो दर्शन जिसने भारत को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रोफेसर सतीश धवन का नाम भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वे न केवल एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता, प्रेरणादायक शिक्षक और विनम्र मानवतावादी भी थे। उनके नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वो ऊंचाइयां हासिल की जो आज भी भारत को गौरवान्वित करती हैं। ये जीवनी उनके जीवन के हर पहलू को विस्तार से प्रस्तुत करती है।
2: श्रोताओं, सतीश धवन का जन्म 25 सितंबर 1920 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हुआ था। वे एक संपन्न पंजाबी खत्री परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता अमोलक राम धवन एक प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, जो शिक्षा और संस्कृति को बहुत महत्व देते थे। परिवार में शिक्षा और ज्ञान का वातावरण था, जिसने बालक सतीश के मन में विज्ञान और अन्वेषण के प्रति गहरी रुचि जगाई।
3: धवन परिवार विभाजन से पहले भारत में एक सम्मानित परिवार था। उनके घर में न केवल व्यवसाय बल्कि कला, साहित्य और संगीत की भी गहरी समझ थी। इस समृद्ध सांस्कृतिक परिवेश ने युवा सतीश के व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाया। उनके पिता चाहते थे कि उनके बच्चे न केवल शिक्षित हों, बल्कि संवेदनशील और सामाजिक रूप से जागरूक नागरिक भी बने।
2: जी हाँ, सतीश धवन का बचपन का अधिकांश समय पंजाब में बीता। वो बचपन से ही असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे और उनकी जिज्ञासु प्रकृति हर चीज को समझने और जानने की कोशिश करती थी। स्कूल के दिनों में वे गणित और विज्ञान के विषयों में विशेष रुचि रखते थे, लेकिन साथ ही साहित्य और कला में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी।
3: उनके शिक्षकों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। युवा सतीश अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल रहते थे और उनका दिमाग प्रश्नों से भरा रहता था। वे केवल पुस्तकालय ज्ञान में ही रुचि नहीं रखते थे, बल्कि व्यवहारिक प्रयोगों और अवलोकन में भी गहरी दिलचस्पी रखते थे। बचपन में ही उन्होंने यांत्रिकी और गति के सिद्धांतों को समझना शुरू कर दिया था।
2: 1936 में सतीश धवन ने पंजाब विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। ये वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था और युवा भारतीयों में देश के लिए कुछ करने की प्रबल इच्छा थी। धवन ने 1940 में गणित और भौतिकी में स्नातक की डिग्री उत्कृष्ट अंकों के साथ प्राप्त की। विश्वविद्यालय के दिनों में वो केवल पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी की। उनके सहपाठियों और प्राध्यापकों ने उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता की हमेशा प्रशंसा की। उनमें नेतृत्व के गुण स्पष्ट दिखाई देते थे और वो अपने साथियों के बीच लोकप्रिय थे।
3: स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सतीश धवन ने इंजीनियरिंग की ओर रुख किया। ये निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने 1942 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ये वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और विमानन तकनीक में तेजी से प्रगति हो रही थी। धवन को यांत्रिकी, द्रव गतिकी और विमानन विज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने महसूस किया कि भविष्य विमानन और अंतरिक्ष विज्ञान का है और इसी क्षेत्र में वे अपना योगदान देना चाहते थे। उनके प्राध्यापकों ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की सलाह दी
2: और 1945 में जब सतीश धवन 25 वर्ष के थे उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने का साहसिक निर्णय लिया। उस समय विदेश जाने एक बड़ी चुनौती थी, खासकर भारत जैसे विकासशील देश से। लेकिन धवन अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने सबसे पहले मिनेसोटा विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया जहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की। 1947 में उन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री उत्कृष्ट अंकों के साथ प्राप्त की। मिनेसोटा में उन्होंने द्रव गति की और सीमा परत सिद्धांत पर गहन अध्ययन किया।
3: 1947 में धवन ने विश्व के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक कैलटेक में पीएचडी के लिए दाखिला लिया। कैलटेक उस समय एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संस्थान था। यहाँ उन्हें विश्वविख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर हंस लिपमैन के मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिला। धवन का शोध कार्य टर्बुलेंट शेयर फ्लो यानी कि अशांत अपरूपण प्रवाह पर केंद्रित था, जो उच्च गति वाले वायुयानों और रॉकेट के डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनका शोध इतना उत्कृष्ट था कि इसे द्रव गति के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना गया।
2: और 1949 में उन्होंने अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और वो भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने कैलटेक से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। कैलटेक में उनके सहयोगियों और शिक्षकों ने उनकी प्रतिभा को सराहा। प्रोफेसर लिपमैन ने कहा था, सतीश धवन उन दुर्लभ वैज्ञानिकों में से हैं जो न केवल सिद्धांत को समझते हैं बल्कि उसे व्यावहारिक अनुप्रयोगों में बदलने की क्षमता भी रखते हैं।
3: 1951 में जब अमेरिका में उन्हें बेहतर अवसर और सुविधाएं मिल सकती थीं, सतीश धवन ने भारत लौटने का निर्णय लिया। ये निर्णय उनकी देशभक्ति और भारतीय विज्ञान को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता था। वे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए। उस समय IISc में एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का एक नया विभाग था और संसाधनों की कमी थी, लेकिन धवन ने अपनी दृढ़ता और कड़ी मेहनत से इस विभाग को उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचाया। उन्होंने अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की और अनुसंधान को बढ़ावा दिया।
2: श्रोताओं, प्रोफेसर धवन एक असाधारण शिक्षक थे। उनकी कक्षाएं हमेशा छात्रों से भरी रहती थी और वे जटिल विषयों को सरल तरीके से समझाने में माहिर थे। उनके छात्रों में से कई बाद में प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इंजीनियर बने। डॉक्टर रोदाम नरसिम्हा, जो स्वयं एक प्रसिद्ध एरोस्पेस वैज्ञानिक बने, धवन के छात्र थे। उन्होंने कहा, प्रोफेसर धवन केवल विषय नहीं पढ़ाते थे बल्कि वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान की पद्धति सिखाते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे प्रश्न पूछें और समाधान खोजें।
3: 1962 में सतीश धवन को भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। वे मात्र 42 वर्ष की आयु में इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन हुए। ये उनकी योग्यता और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण था। निदेशक के रूप में उन्होंने IISc को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध संस्थान में बदलने का सपना देखा। उन्होंने नए विभाग खोले, शोध सुविधाओं का विस्तार किया और विदेश से प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। उनके नेतृत्व में IISc ने कई महत्वपूर्ण शोध परियोजनाएं शुरू की।
2: धवन का मानना था कि शिक्षा और अनुसंधान एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने पीएचडी कार्यक्रमों को मजबूत किया और युवा शोधार्थियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने IISc में एक ऐसा वातावरण बनाया जहां विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान होता था और रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता था। 1981 तक यानी लगभग 19 वर्षों तक वे IISc के निदेशक रहे। इस अवधि में उन्होंने संस्थान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
3: 1972 में जब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई का असामयिक निधन हो गया, तब पूरे देश को एक दूरदर्शी नेता की तलाश थी जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अंतरिक्ष आयोग ने सर्वसम्मति से प्रोफेसर सतीश धवन को इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया। ये एक चुनौतीपूर्ण समय था। इसरो अभी शैशवावस्था में था और कई परियोजनाएं अधूरी थीं। लेकिन धवन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अगले 12 वर्षों तक इसरो का नेतृत्व किया। इस अवधि को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का स्वर्णिम युग माना जाता है।
2: प्रोफेसर धवन के नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण परियोजना थी SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, जो भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान था। इस परियोजना के निदेशक थे एक युवा वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 10 अगस्त 1979 को SLV-3 का पहला प्रायोगिक प्रक्षेपण किया गया, लेकिन ये असफल रहा। रॉकेट अपने प्रक्षेपण के कुछ क्षणों बाद ही बंगाल की खाड़ी में गिर गया। पूरी टीम निराश थी, खासकर डॉक्टर कलाम जो इस परियोजना के निदेशक थे।
3: लेकिन प्रोफेसर धवन ने जो किया वो नेतृत्व का एक अद्भुत उदाहरण था। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए असफलता की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। उन्होंने कहा, मैं इसरो का अध्यक्ष हूँ और इस असफलता का पूरा दायित्व मेरा है। उन्होंने अपनी टीम को प्रोत्साहित किया और कहा कि असफलता सफलता की सीढ़ी है।
2: और फिर इसके बाद 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का दूसरा प्रक्षेपण किया गया। इस बार रॉकेट ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो अपने उपग्रहों को अपने ही रॉकेट से अंतरिक्ष में भेज सकते थे। इस बार भी प्रोफेसर धवन ने एक अद्भुत कदम उठाया। उन्होंने डॉक्टर कलाम को मीडिया के सामने भेजा और कहा, यह सफलता उनकी और उनकी पूरी टीम की है। उन्होंने स्वयं पीछे रहकर अपनी टीम को सारा श्रेय दिया।
3: डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बाद में अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा, धवन ने असफलता के समय टीम का बचाव किया और सफलता के समय टीम को सम्मान दिया। ये बात कलाम ने अपनी किताब में वर्णित की। धवन ने SLV-3 की सफलता के बाद अधिक शक्तिशाली ASLV की नींव रखी। ये रॉकेट बड़े उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था।
2: उन्होंने भविष्य को देखते हुए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV की योजनाओं को प्रारंभिक आकार दिया। आज ये रॉकेट भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की रीढ़ है। धवन ने भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह यानी INSAT कार्यक्रम को बढ़ावा दिया, जो दूर संचार, मौसम पूर्वानुमान और प्रसारण के लिए महत्वपूर्ण था। IRS यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, उन्होंने सुदूर संवेदन उपग्रहों के विकास पर भी जोर दिया, जो कृषि, वन, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन में सहायक थे।
3: प्रोफेसर धवन का मूल मंत्र था आत्मनिर्भरता। वे चाहते थे भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किसी अन्य देश पर निर्भर ना रहे। उन्होंने स्वदेशी तकनीक के विकास पर जोर दिया और भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमताओं पर विश्वास किया। उन्होंने कहा था, हमें अपनी तकनीक विकसित करनी होगी, भले ही इसमें समय लगे। केवल तभी हम वास्तव में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
2: श्रोताओं, सतीश धवन का विवाह नलिनी धवन से हुआ था। नलिनी जी एक शिक्षित और समझदार महिला थीं। उन्होंने अपने पति के करियर में पूर्ण सहयोग किया। जब धवन विदेश में पढ़ाई कर रहे थे या बाद में अपने व्यस्त वैज्ञानिक जीवन में, नलिनी जी ने हमेशा घर को संभाला और उन्हें भावनात्मक समर्थन दिया। धवन परिवार में प्यार, सम्मान और संस्कृति का वातावरण था। प्रोफेसर धवन अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते थे, भले ही उनका कार्यक्रम कितना भी व्यस्त क्यों ना हो।
3: प्रोफेसर धवन केवल विज्ञान के व्यक्ति नहीं थे, उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे शास्त्रीय संगीत के गहरे पारखी थे। उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुनना बेहद पसंद था। वे अक्सर कहते थे कि संगीत उन्हें मानसिक शांति देता है और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। धवन को साहित्य पढ़ने का शौक था। वे अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी साहित्य के अच्छे जानकार थे। उन्हें कविता विशेष रूप से प्रिय थी। वे दार्शनिक विषयों में गहरी रुचि रखते थे और अक्सर जीवन के गहरे प्रश्नों पर चिंतन करते थे।
2: और वो बेंगलोर के हरे भरे वातावरण में प्रकृति के साथ समय बिताना पसंद करते थे। वो अक्सर पैदल चलते थे और प्रकृति का अवलोकन करते थे। श्रोताओं, प्रोफेसर धवन अपनी विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थे। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद वे बेहद सरल और सुलभ थे। वे किसी भी वैज्ञानिक या छात्र से आसानी से मिल लेते थे। उनके कार्यालय का दरवाजा सभी के लिए खुला रहता था।
3: उनके सहयोगी डॉक्टर UR राव, जो बाद में इसरो के अध्यक्ष बने, उन्होंने कहा था, प्रोफेसर धवन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं था। वे हमेशा दूसरों की बात ध्यान से सुनते थे और सभी के विचारों का सम्मान करते थे। धवन का नेतृत्व सहभागी और प्रेरक था। वे मानते थे कि सफलता सामूहिक प्रयास का परिणाम होती है। वे अपनी टीम के सदस्यों को निर्णय लेने में शामिल करते थे और उनके योगदान को मान्यता देते थे।
2: श्रोताओं, डॉक्टर कलाम के अलावा कई अन्य युवा वैज्ञानिकों ने धवन के मार्गदर्शन में अपना करियर शुरू किया। उनमें से कई बाद में इसरो और भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे। डॉक्टर कलाम और प्रोफेसर धवन का रिश्ता केवल गुरु शिष्य का नहीं था, बल्कि गहरी मित्रता और आपसी सम्मान का भी था। डॉक्टर कलाम ने कई बार कहा, प्रोफेसर धवन ने उन्हें न केवल वैज्ञानिक बल्कि एक नेता के रूप में गढ़ा। डॉक्टर कलाम ने एक साक्षात्कार में कहा, प्रोफेसर धवन ने मुझे सिखाया कि असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि नई शुरुआत का अवसर है। जब SLV-3 असफल हुआ तो पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली, लेकिन जब हम सफल हुए तो उन्होंने मुझे आगे खड़ा किया। ये सबक मैं जीवन भर नहीं भूल सकता।
3: डॉक्टर रोदाम नरसिम्हा, जो भारतीय विज्ञान संस्थान में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर बने, धवन के प्रिय छात्रों में से एक थे। उन्होंने कहा, प्रोफेसर धवन हमें केवल फॉर्मूले और सिद्धांत नहीं पढ़ाते थे, वे हमें सोचना सिखाते थे। वे कहते थे कि एक अच्छा वैज्ञानिक वो नहीं होता जो उत्तर जानता है, बल्कि वो होता है जो सही प्रश्न पूछ सकता है। नरसिम्हा ने एक घटना याद करते हुए बताया, एक बार मैंने शोध पत्र प्रस्तुत किया जो काफी जटिल था। प्रोफेसर धवन ने मुझसे कहा, यदि तुम इसे सामान्य व्यक्ति को नहीं समझा सकते तो शायद तुम स्वयं इसे अच्छी तरह से नहीं समझते। ये सबक मेरे जीवन भर काम आया।
2: डॉक्टर उड्डुपी रामचंद्र राव, जो 1984 से 1994 तक इसरो के अध्यक्ष रहे, धवन के करीबी सहयोगी थे। उन्होंने कहा, प्रोफेसर धवन एक दूरदर्शी थे। जब 1970 के दशक में हम उपग्रह बना रहे थे तो उन्होंने हमें 1990 के दशक के लिए योजना बनाने को कहा। उनकी सोच हमेशा दशकों आगे की रहती थी। राव ने यह भी बताया कि कैसे धवन हमेशा युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते थे। वो कहते थे, युवा दिमाग में क्रांतिकारी विचार होते हैं, हमें उन्हें प्रयोग करने का मौका देना चाहिए, भले ही वे कभी कभी असफल हों।
3: प्रोफेसर हंस लिपमैन, जो कैलटेक में धवन के मार्गदर्शक थे, उन्होंने कहा, सतीश धवन उन विरले वैज्ञानिकों में से थे जो सिद्धांत और व्यवहारिक अनुप्रयोग दोनों में समान रूप से निपुण थे। उनका शोध कार्य आज भी प्रासंगिक है। नासा के कई वैज्ञानिकों ने भी धवन के साथ काम किया और उनकी प्रशंसा की। एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा, प्रोफेसर धवन ने सीमित सिद्धांतों के साथ जो हासिल किया वो अद्भुत है। उन्होंने साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प और सही नेतृत्व से कुछ भी संभव है।
2: श्रोता, 1970 के दशक में भारत एक विकासशील देश था और आर्थिक संसाधन सीमित थे। इसरो को अपनी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन नहीं मिलता था। प्रोफेसर धवन को लगातार सरकार से धन की मांग करनी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हमें जो मिला है उसी में काम करना है, हमें अधिक कुशल बनना होगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना होगा। उनकी सोच ने इसरो को फ्रूगल इनोवेशन यानी किफायती नवाचार में विश्व में अग्रणी बना दिया।
3: रॉकेट विज्ञान अत्यंत जटिल है और असफलता की संभावना बहुत अधिक होती है। SLV-3 की पहली असफलता के बाद टीम का मनोबल गिर गया था। कई लोगों ने परियोजना को बंद करने की बात की, लेकिन प्रोफेसर धवन ने अपनी टीम का साथ दिया। उन्होंने कहा, असफलता हमें सिखाती है, हमने जो गलतियां की उनसे सीखेंगे और फिर से प्रयास करेंगे। उनके इस दृष्टिकोण ने पूरी टीम को नया उत्साह दिया।
2: कुछ लोग मानते थे कि एक गरीब देश को अंतरिक्ष कार्यक्रम में इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर धवन को इन आलोचनाओं का जवाब देना पड़ता था। उन्होंने हमेशा तर्कसंगत उत्तर दिए। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष तकनीक केवल शोध के लिए नहीं है, ये दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, शिक्षा और आपदा प्रबंधन में मदद करती है। ये गरीबी से लड़ने का एक उपकरण है।
3: प्रोफेसर धवन ने तिरुवंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC की स्थापना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये केंद्र आज भारत के रॉकेट विकास का मुख्य केंद्र है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के विकास की योजना बनाई। यहाँ से आज भारत के सभी प्रमुख उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं।
2: धवन ने इसरो में युवा इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने आईआईटी और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रतिभाशाली छात्रों को इसरो में आने के लिए प्रेरित किया। प्रोफेसर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और सोवियत संघ के साथ सहयोग स्थापित किए, लेकिन उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि भारत की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बनी रहे।
3: भारत सरकार ने उन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। SLV-3 की सफलता के बाद उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2: इसके साथ ही उन्हें रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी लंदन, इस प्रतिष्ठित सोसाइटी का फेलो चुना गया। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स, इस संगठन ने उन्हें मानद सदस्यता प्रदान की। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने भी उन्हें मानद उपाधियां दी। भारत और विदेश के कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया।
3: उनके सम्मान में श्रीहरिकोटा के प्रक्षेपण केंद्र का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। ये भारत का प्रमुख अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, जहां से सभी महत्वपूर्ण मिशन शुरू किए जाते हैं।
2: 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मंगलयान की सफलता का श्रेय भी प्रोफेसर धवन को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इन मिशनों की तकनीकी नींव रखी थी। आज इसरो विश्व के विभिन्न देशों के उपग्रहों को प्रक्षेपित करके व्यावसायिक आय अर्जित करता है। ये विचार प्रोफेसर धवन का ही था।
3: IISc में उनके नेतृत्व ने हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को तैयार किया। आज पूरी दुनिया में उनके छात्र महत्वपूर्ण पदों पर हैं। प्रोफेसर धवन की नेतृत्व शैली आज भी प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाई जाती है। उनका असफलता में जिम्मेदारी लेना और सफलता में टीम को श्रेय देने का सिद्धांत नेतृत्व का एक आदर्श उदाहरण है।
2: श्रोता, 1984 में इसरो के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी प्रोफेसर धवन सक्रिय रहे। वे विभिन्न वैज्ञानिक समितियों में सदस्य थे और युवा वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन देते रहे। वे IISc के निदेशक पद से 1981 में सेवानिवृत्त हुए, लेकिन संस्थान के साथ उनका जुड़ाव जीवन भर रहा। वे अक्सर संस्थान जाते और शोधार्थियों के साथ विचार विमर्श करते।
3: अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बीमारी को अपने काम में बाधा नहीं बनने दिया। वे जीवन के अंत तक

0: अनेकों को सपने देखने और उन्हें साकार करने का साहस दिया।
1: उनके अंतिम संस्कार में देश भर से वैज्ञानिक, राजनेता, छात्र और आम नागरिक शामिल हुए। इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने प्रिय नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा ये भारत का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। इसके साथ ही सतीश धवन छात्रवृत्ति विभिन्न संस्थानों ने उनके नाम पर छात्रवृत्तियां स्थापित की हैं। सतीश धवन स्मारक व्याख्यान IISc और इसरो में हर वर्ष उनकी स्मृति में विशेष व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं।
0: श्रोताओं, भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। उनके जीवन पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं और डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई गई हैं। प्रोफेसर धवन का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो कहते थे, कड़ी मेहनत और समर्पण यानी सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता में भी विनम्र रहना महत्वपूर्ण है। टीम भावना यानी अकेले कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। असफलता से सीखना यानी असफलता जीवन का अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। और देश सेवा यानी व्यक्तिगत सफलता से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र की सेवा है।
1: उन्होंने हमेशा कहा, अनुसंधान में जोखिम उठाना जरूरी है, आत्मनिर्भरता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। विज्ञान समाज की सेवा के लिए है, न कि केवल ज्ञान के लिए। प्रोफेसर सतीश धवन का जीवन एक असाधारण यात्रा थी। श्रीनगर में जन्मे एक बालक से लेकर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के महानायक तक उन्होंने न केवल भारत को अंतरिक्ष शक्ति बनाया बल्कि हजारों युवाओं को प्रेरित किया।
0: उनकी विरासत आज भी जीवित है। हर बार जब इसरो कोई उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करता है, हर बार जब भारतीय वैज्ञानिक कोई नई उपलब्धि हासिल करते हैं, प्रोफेसर धवन की आत्मा मुस्कुराती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सीमित संसाधनों के साथ भी दृढ़ संकल्प, समर्पण और सही नेतृत्व से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।
1: प्रोफेसर सतीश धवन का नाम भारतीय विज्ञान के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। वे न केवल एक महान वैज्ञानिक थे बल्कि एक महान इंसान भी थे और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सफलता का श्रेय टीम को, असफलता की जिम्मेदारी नेता को, यही था सतीश धवन का मंत्र और यही है उनकी अमर विरासत।
0: तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक, जिसमें आज हमने बात की महान वैज्ञानिक सतीश धवन जी की। तो फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा और सतीश जी की जिंदगी की कहानी हमने आपको सुनाई यानी संदीप शर्मा
1: और मैं वर्षा सिंह।
0: तो बस आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: भयानक महीना जब शराब का बिल मुनाफे से ज्यादा हो गया। क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अकेली फैक्ट्री ने एक बार शराब का इतना भयानक बिल बना दिया था कि वह उसके पूरे साल के निर्यात मूल्यों से भी अधिक हो गया। कंपनी के अभिलेखागार में अत्यधिक फिजूल खर्ची के इस दौर को द मॉन्स्टर्स मंथ यानी भयानक महीने के रूप में दर्ज किया गया है। इस राजकोषीय और शारीरिक अय्याशी का दृश्य सुमात्रा के अलग थलग पश्चिमी तट पर स्थित बैनकुलन, जिसे यॉर्क फोर्ट या फोर्ट मार्लबोरो के नाम से भी जाना जाता था। 18वीं सदी की शुरुआत में बैनकुलन अपनी जहरीली जलवायु और नगण्य व्यापार के लिए बदनाम था, जहां केवल अपमानित दिवालिया या वास्तव में हताश लोगों को ही भेजा जाता था। इस मलेरिया वाले क्षेत्र से जीवित बचने वालों में जोसेफ कॉलेट भी शामिल थे, जो एक दिवालिया थे लेकिन अपने कार्यकाल के बाद अंततः मद्रास की काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। हालांकि हर कोई कॉलेट की तरह इस उष्णकटिबंधीय कष्ट को सहन नहीं कर पाया। जुलाई 1716 में कॉलेट के कार्यकाल के अंतिम महीने में केवल 19 अनुबंधित कर्मचारियों, अर्थात वह व्यापारी जिन्हें कंपनी के खर्च पर भोजन करने का अधिकार था,

के एक छोटे से समूह ने सुमात्रा की कथित उदासी और तकलीफों को मिटाने के लिए भारी मात्रा में शराब का सहारा लिया। क्या आप जानते कि उन्होंने वास्तव में क्या पिया था? लंदन के डरे हुए निदेशकों के अनुसार, जिन्होंने बाद में खातों की बारीकी से जांच की, उनके अनुसार इन 19 पुरुषों ने 75 दर्जन महंगी वाइन बोतलें, जिनमें ज्यादातर महंगी क्लैरेट थी, बियर की 24 दर्जन बोतलें जिनमें खासकर बर्टन एलिस और पेल बियर, 164 गैलन गोवा ताड़ी, लगभग विशाल बैरल बटाविया अराक के साथ ही साथ मदिरा और शिराज वाइन की अतिरिक्त मात्रा शामिल थी। जब लिडेन हॉल स्ट्रीट के ऑडिटर्स ने आंकड़ों की गणना की तो वे दंग रह गए। केवल उस एक महीने में पी गई शराब की लागत पूरी फैक्ट्री द्वारा साल भर में निर्यात की गई काली मिर्च के कुल मूल्य से भी अधिक थी। निदेशकों ने एक तीखा पत्र भेजा, यह आश्चर्य जताते हुए कि इनमें से कोई भी कर्मचारी अब तक जीवित कैसे है। उन्होंने लिखा, हमें आश्चर्य है कि आप में से कोई भी 6 महीने भी जीवित रहता है और आप लोगों के बीच और अधिक झगड़े और द्वंद नहीं होते, यदि शराब का आधा हिस्सा भी आपने कटक लिया हो। उन्होंने सख्ती से आदेश दिया कि भविष्य में कर्मचारी अपनी मौज मस्ती का भुगतान स्वयं करें और कंपनी अब उनके स्वाद के लिए सब्सिडी नहीं देगी। लेकिन यहां एक अंतिम और विडंबनापूर्ण मोड़ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन कर्मचारियों को यह फटकार कभी मिली ही नहीं। जब तक पत्र सुमात्रा के तट पर पहुंचा, फोर्ट मालबोरो जलकर खाक हो चुका था। कर्मचारियों द्वारा वर्षों के उकसावे वाले व्यवहार और उत्पीड़न के कारण एक विशाल स्थानीय विद्रोह भड़क उठा था, जिसने जीवित बचे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की लहरों के पार भागने पर मजबूर कर दिया। मॉन्स्टर्स मंथ इस बात की याद दिलाता है कि भले ही कंपनी व्यापारियों की एक संस्था थी, लेकिन इसके दुरुस्त ठिकाने अक्सर अय्याशी के विक्षुब्ध अड्डे थे, जहां पुरुष अपने निर्वासन की सड़ांध भरी वास्तविकता से बचने के लिए शाब्दिक रूप से कंपनी के मुनाफे को पी जाते थे।

0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विवेकानंद ने रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की और समाज सेवा में जुट गए। इसी बीच स्वास्थ्य ठीक न होने पर थोड़े दिनों के लिए दार्जिलिंग के पहाड़ों पर भी हो आए, पर उनका मन खिन्न था क्योंकि
1: स्वदेश लौटे स्वामी जी का सर्वत्र बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत तो हो रहा था और वे नवीन कर्मधारा प्रारंभ करने की तैयारी में लगे थे, पर उनकी सफलता पूर्णतः निर्विवाद या निर्विरोध नहीं थी। इस विरोध का किंचित आभास हमें पहले भी मिल चुका है।
0: श्रीलंका के अनुराधापुरम में लोगों ने उनकी सभा में विघ्न डाला। मद्रास के पंडित उन्हें तर्क में हराने आए थे। फिर किसी ने प्रश्न उठाया था कि उन्हें गैरिक वस्त्र धारण करने का क्या अधिकार है। बंगाल में भी उनके विरुद्ध चार करने वालों की कमी न थी, पर इससे स्वामी जी के कार्य में कोई रुकावट नहीं आई। इस कड़ी में हम लोग इन्हीं विरुद्ध चारों के बारे में जानेंगे।
1: पुरानी बात है, स्वामी जी जब अमेरिका में शत्रुओं के आक्रमणकारी व्यवहारों से परेशान थे और स्वदेश से समर्थन पाने की आशा में जब उन्होंने कलकत्ते में एक सभा आयोजन करने की सलाह दी थी, तब भी कलकत्ते के रूढ़ीवादी समाज में स्वामी जी के जाति के विषय में प्रतिक्रिया दिखाई पड़ी थी।
0: उस सभा के सभापति बनाने के लिए कलकत्ते के कई गणमान्य व्यक्ति जैसे श्री मनमोहन मित्र, नगेंद्र नाथ मित्र, भूपेंद्र कुमार बसु, चारू चंद्र बसु तथा कुछ अन्य लोग माननीय गुरुदास बंदोपाध्याय के पास गए थे। जब उनसे उक्त सभा में अध्यक्षता करने की बात कही गई, तो वे निरुत्साह दिखाई दिए और कहा,
2: किसी विशिष्ट महामहोपाध्याय पंडित ने बताया है कि स्वामी विवेकानंद का नाम गुरु प्रदत्त नहीं है। उनके द्वारा संन्यास ग्रहण शास्त्र सम्मत है या नहीं, इस विषय में काफी मतभेद है और सन्यासी होकर दूसरे देश में जाना भी अत्यंत अनुचित है। देखिए, मैंने निश्चित किया है कि इस वृद्धावस्था में मैं किसी धर्म सभा से विशेष रूप से नहीं जुड़ूंगा और ना सभापतित्व करूंगा। विशेषकर जिन कार्यों में सामाजिक तथा धार्मिक मतभेद है, उनमें अब मैं फंसना नहीं चाहता।
0: गुरुदास बाबू एक विदेश गमनकारी सन्यासी को हिंदू समाज का समर्थन देने के लिए सहमत नहीं हुए। गुरुदास बाबू के अस्वीकार कर देने पर उत्तरपाड़ा के जमींदार राजा प्यारी मोहन मुखोपाध्याय से इसके लिए अनुरोध किया गया। वे स्वामी जी के बारे में सब सुनकर सहमत हुए, परंतु सभा में व्याख्यान देते समय राजा प्यारी मोहन मुखोपाध्याय महाशय ने स्वामी विवेकानंद नाम पर आपत्ति दिखाते हुए ब्रदर विवेकानंद कहकर उन्हें संबोधित किया, क्योंकि इस विषय में तब भी उन्हें संदेह था कि कायस्थ सन्यासी हो सकता है या नहीं।
1: 5 सितंबर 1894 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित जिस सभा में स्वामी जी को धन्यवाद दिया गया, उसका विवरण देते हुए अनुसंधान पत्रिका ने जो विवरण दिया है वो विचारणीय है। पत्रिका ने लिखा,
2: पिछले 5 सितंबर बुधवार को टाउन हॉल में हिंदुओं की एक सभा हुई। इस सभा का उद्देश्य था शिकागो की धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की जो श्रेष्ठता प्रमाणित की थी, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना और अमेरिका वासियों ने स्वामी जी को जो विशेष प्रीति एवं सम्मान दिया है, इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। इस सभा में 4000 से अधिक लोग एकत्र हुए थे। और हाँ, इस सभा के बारे में एक बड़ी मजेदार बात है। हिंदू पैट्रियट का कहना है कि यह हिंदुओं की सभा थी, परंतु हमारे ब्रह्म सहयोगी सामाजिक पत्रिका संजीवनी ने लिखा है कि विवेकानंद कभी उनके साधारण ब्रह्म समाज में गायक थे, इसलिए उस दिन की सभा में अनेक ब्रह्म बंधुगण उपस्थित थे। अतएव इसको हिंदू सभा ना कहकर ब्रह्म सभा कहना ही उचित है। इधर हमारे सहयोगी एक बंगाली सज्जन अमेरिका प्रवासी को हिंदू मानने के लिए तैयारी नहीं है, अतएव टाउन हॉल की सभा में बंगवासी द्वारा स्वीकृत हिंदू राजा प्यारी मोहन के सभापति होने के बावजूद उनके मतानुसार वो हिंदू सभा नहीं थी। अब कहिए, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए?
0: यहां स्मरण रखना होगा कि बंगवासी के संस्थापक कायस्थ कुल के ही योगेंद्रनाथ वसु थे, तदापि इन दिनों वे ब्राह्मणों द्वारा परिचालित रूढ़िवाद के कार्य में कमर कसे हुए थे और अब्राह्मण विवेकानंद के संन्यास ग्रहण आदि विषयों में विशेष रूप से चिंतित तथा क्रोध से विचलित थे।
1: स्वामी जी की समुद्र यात्रा को लेकर समस्या उत्पन्न हुई उनके स्वदेश लौटने के बाद। घटना स्थल मुख्यतः दक्षिणेश्वर का काली मंदिर था। हम पहले ही बता चुके हैं कि मार्च 1897 मास के प्रारंभ में जब दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव हुआ तब वे विदेश लौटे। स्वामी विवेकानंद काली मंदिर में जगदम्बा को और राधाकांत मंदिर में राधा कृष्ण को साष्टांग प्रणाम कराए थे। उस दिन दो अंग्रेज महिलाओं ने भी स्वामी जी के साथ मंदिर के उद्यान में भ्रमण किया था। इन रूढ़ीवादी लोगों के मन में व्यग्रता उत्पन्न हुई। इसके बाद दार्जिलिंग से लौटकर 21 मार्च को स्वामी जी जब खेतरी राजा के साथ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में दर्शन कराए तो इसी घटना को लेकर एक विरोध का सूत्रपात हुआ और रूढ़ीवादी दल ने पत्र पत्रिकाओं की सहायता से इसका प्रतिरोध लिया। इस मामले में बंगवासी पत्र ने ही सर्वाधिक उत्साह प्रकट किया था। बंगवासी का मूल वक्तव्य ये था कि मंदिर के प्रबंधकों ने स्वामी जी को अपमान पूर्वक वहां से निकाल दिया। इस विवाद का असली रूप इस प्रकार है।
0: 28 मार्च के इंडियन मिरर में सिंहलवासी यूरोपीय बौद्ध टीजे हैरिसन ने एक पत्र के द्वारा सूचित किया।
2: यद्यपि 27 मार्च के भंगवासी में खेतड़ी नरेश के साथ स्वामी जी के दक्षिणेश्वर मंदिर में जाने की बात का उल्लेख करते हुए लिखा गया है, मालिकों की ओर से उनके प्रति सद्व्यवहार नहीं किया गया, परंतु यह सत्य नहीं है। मैं भी उसी दल के साथ था और प्रत्यक्ष दर्शी के रूप में मैं उस वक्त बात को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी उपस्थिति के दौरान किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया या कहा जिससे कि उपरोक्त विवरण को सत्य रूप में ग्रहण किया जा सके। मंदिर के मालिकों ने बल्कि यथेष्ट सौजन्यता दिखाई थी और दर्शन योग्य सब कुछ दिखाने ले गए। तो भी भंगवासी द्वारा उस प्रकार का विवरण प्रकाशित करने का कारण ये भी हो सकता है कि लेखक ने मंदिर के मालिकों के ऊपर कोई पुरानी नाराजगी निकालना चाहा है। अब तक स्वामी जी के समर्थकों की धारणा थी कि मंदिर के मालिक उनके विरोधी नहीं है।
0: 30 मार्च को उसी सुर में श्री महेंद्रनाथ गुप्त ने इंडियन मिरर में एक पत्र प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा,
3: देखिए बंगवासी में जो कुछ प्रकाशित हुआ है उस संदर्भ में घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में मैं सूचित करता हूँ। लिखित बातें बिल्कुल ही मिथ्या हैं। कई साधु के साथ हैरिसन साहब जान बाजार में त्रिलोक के नाथ विश्वास को स्वामी जी और खेतड़ी नरेश के मंदिर दर्शन के बारे में कहने गए थे। त्रिलोक के बाबू ने अस्वस्थता के कारण उनसे भेंट नहीं की और कहला भेजा कि संध्या को 5 बजे वे दक्षिणेश्वर में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। अतिथियों के मंदिर में पहुंचने पर खजांची भोलेनाथ बाबू, अन्य कर्मचारियों तथा त्रिलोक के बाबू के पुत्रों ने अति सज्जनता के साथ स्वामी विवेकानंद के साथ अतिथियों को भी काली मूर्ति दर्शन करने का अनुरोध किया था। उस समय लगभग 6 बज रहे थे। यहाँ तक कि खजांची ने मंदिर का पश्चिम दरवाजा तक खोल दिया ताकि और अधिक रोशनी आकर देवी की प्रतिमा पर पड़े।
0: त्रिलोक के बाबू ने और भी लिखा कि उन्हें समाचार मिला था जयपुर के महाराज मंदिर दर्शन करने जाएंगे। इस विषय में त्रिलोक के बाबू को संदेह हुआ, तदापि उनके पुत्र के मन में जयपुर के महाराजा को देखने की उत्सुकता होने के कारण वे उन लोगों के साथ दक्षिणेश्वर गए। स्वामी विवेकानंद और उनके संगी परोक्ष रूप से मंदिर से निकाल दिए गए थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, जैसा कि बाबू भोलानाथ मुखोपाध्याय ने बताया है। स्वामी जी तथा राजा का स्वागत करने के लिए मैंने किसी को नहीं कहा और स्वयं भी मैंने उनका स्वागत नहीं किया। जो व्यक्ति विदेश जाने के बाद भी अपने को हिंदू कह सकता है, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ मैं थोड़ा सा भी संपर्क रखना उचित नहीं समझता। प्रतिमा के पुनः अभिषेक का जो समाचार आपने प्रकाशित किया है वो पूर्णतया सत्य है। मंदिर में स्वामी जी के प्रवेश के फलस्वरूप देवी के पुनराभिषेक की आवश्यकता हुई थी। यहां पर मजे की बात यह है कि श्री रामकृष्ण देव के जन्मदिन के दिन भी स्वामी जी ने मंदिर के भीतर जाकर प्रतिमा दर्शन किया था, परंतु तब पुनराभिषेक की आवश्यकता नहीं हुई थी। इस बार बंगवासी की कलम के भय से मंदिर के मालिकों को वो भी करना पड़ा। इन पत्रों से यह प्रमाणित होता है कि कि स्वामी विवेकानंद का प्रत्यक्ष असम्मान करना संभव नहीं हो सकता था, बल्कि प्रत्यक्षतः उनका स्वागत ही हुआ था। यहाँ भी पुनः विवेकानंद की महिमा ही प्रमाणित होती है। उनके उपस्थित रहते किसी की मजाल नहीं थी कि उन्हें अस्वीकार करता।
1: परोक्ष अपमान यही था कि त्रैलोक के बाबू ने स्वयं स्वामी जी के साथ भेंट नहीं की, यद्यपि उस समय वे मंदिर के उद्यान में ही उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त त्रैलोक के बाबू के मतानुसार उन्होंने किसी को भी स्वामी जी का स्वागत करने का निर्देश नहीं दिया। हाँ, स्वामी जी को अवश्य बता दिया था कि अस्वस्थता के कारण वे मिलने नहीं आ सके।
0: इस पत्र के उत्तर में महेंद्रनाथ गुप्त ने एक पत्र लिखकर त्रैलोक के बाबू की बातों और आचरण में उपयुक्त फर्क दिखा दिया और साथ ही ये भी बताया कि हिंदू धर्म के जीवंत विग्रह श्री रामकृष्ण विलायत से लौटकर केशव के घर जाते थे, वहां पूरी मिष्ठान भी खाते। इस कारण त्रैलोक के नाथ ने उन्हें भी मंदिर में प्रवेश से रोकने की बात सोची थी, यद्यपि वो कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाया। एक अन्य समय कप्तान विश्वनाथ उपाध्याय के इस विषय में आपत्ति प्रकट करने पर श्री रामकृष्ण ने कहा था कि इस प्रकार का विद्वेष युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि वेदांत के मतानुसार सब कुछ ब्रह्म है और कप्तान स्वयं इतने कट्टर होकर भी साहबों के साथ हाथ मिलाते हैं।
1: वैसे श्री रामकृष्ण के मामले में म्लेच्छों के साथ सहज भाव से आदान प्रदान की व्यवस्था सामाजिक आधार पर न होकर धार्मिक नींव पर आधारित थी। स्वामी विवेकानंद ने भी उस पद का अनुसरण किया था। वे कट्टरपंथियों द्वारा स्वीकृत कूपमंडुकता के विरोधी थे और फिर सुधारवादी प्रगतिशीलों द्वारा अनुमोदित आत्म अवमानना के भी विपक्ष में खड़े थे। उनके विदेश गमन अथवा म्लेच्छों के साथ अबाध आदान प्रदान के पीछे स्वार्थ या हठवादिता का लेश मात्र भी नहीं था। इसका कारण उनके आचरण रूढ़िवादियों और प्रगतिवादियों दोनों की नाराजगी के कारण होकर भी हिंदू जनसाधारण की दृष्टि में वे निंदनीय नहीं थे एवं क्रमशः आदर के साथ उन्हें ग्रहण भी कर लिया।
0: वैसे आर्थिक तथा ऐतिहासिक परिवर्तनों के फलस्वरूप समुद्र यात्रा आदि आगे चलकर अवश्य स्वीकृत होती, परंतु उक्त समस्या के समाधान के रूप में स्वामी जी ने जो नैतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण व्यक्त किया था, उससे हिंदू समाज के लिए वो सहजी मान्य हो गया था। इस क्षेत्र में स्वामी जी के इस अवदान को स्वीकार करना अपरिहार्य है।
1: जिस समय देशी समाचार पत्रों में इस प्रकार का वाद विवाद चल रहा था, उस समय स्वामी जी दार्जिलिंग में थे और उन्हें ये मालूम तक न था कि वे मंदिर के मालिकों द्वारा अपमानित हो चुके हैं। वस्तुतः इस काल्पनिक घटना के साथ उनका बिल्कुल भी संबंध न था। परंतु इससे क्या होता है, भला शत्रुगण ऐसा मौका हाथ से कैसे निकल जाने देते। अतः मिशनरियों के माध्यम से इस समाचार को खूब बड़ा चढ़ाकर अमेरिका में पहुंचा दिया गया और इस निंदा प्रचार के एक प्रधान प्रवक्ता हुए डॉक्टर बैरोज। बैरोज की शत्रुता का एक प्रमुख कारण तो ये था कि वे सोचते थे कि स्वामी जी की अमेरिका में सफलता के पीछे उनका काफी हाथ था, क्योंकि शिकागो धर्म महासभा में संचालक के रूप में उन्होंने ही स्वामी जी के लिए काफी सुविधा कर दी थी। इस उपकार के बदले में स्वामी जी को चाहिए था कि बैरोज के ईसाई धर्म प्रचारार्थ भारत आने पर वे इस विषय में उनकी हर प्रकार से सहायता करते।
0: परंतु बैराज ने देखा कि उनके मद्रास आने पर स्वामी जी ने न तो उनके प्रचार के बारे में कुछ किया और उनसे मिले बिना ही मद्रास से चले गए। अतः इस प्रकार अपनों को अपमानित मानकर बैराज बदला लेने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने प्रचार किया, स्वामी जी को जातिच्युत कहना तो गलत होगा, क्योंकि खोने के उपयुक्त उनकी जाति ही कहां है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अमेरिका के नारी समाज की निंदा की थी। 10 मई 1897 को भारत से लौटकर कैलिफोर्निया पहुंचते ही उसी संध्या को बैराज ने क्रॉनिकल पत्र के संवाददाता के साथ एक साक्षात्कार के माध्यम से अमेरिका वासियों को सूचित किया।
4: स्वामी विवेकानंद मेरे आगमन के एक सप्ताह पूर्व मद्रास पहुंचे थे, तथापि हमारे बीच पूर्व परिचय को घनिष्ठतर करने के लिए उन्होंने मेरे साथ मुलाकात नहीं की, बल्कि जिस दिन मैं पहुंचा उसके अगले दिन ही वो शीघ्रता पूर्वक मद्रास से चले गए। क्रॉनिकल में अमेरिकी नारियों के संबंध में उनका जो मत छपा हुआ था वास्तव में वो पूरा उन्हीं का है। और हाँ, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये उन्हें पता था इसलिए वो मुझे टाल गए। परंतु एक विषय में मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। विवेकानंद अपने आचरण से जाति च्युत हुए हो ऐसी बात नहीं। उन्होंने अमेरिका के नारियों तथा अमेरिका की संस्थाओं के विषय में जो बातें कही हैं उससे मेरे परिचित अनेक हिंदू नाराज हुए हैं। उन लोगों ने मेरे पास आकर स्पष्ट रूप से कहा कि वो उनके धर्म प्रवक्ता नहीं है। उनमें ऐसे अनेक गुण हैं जो अद्भुत तथा आनंददायी हैं, परंतु लगता है कि उनके मस्तिष्क का संतुलन खो गया है। मुझे लगता था कि वो एक दूसरे हिंदू मार्क ट्वेन है, वो प्रतिभावान है और उन्हें कुछ अनुयायी भी मिले हैं। वैसे ये लोग चिरकाल उनके साथ नहीं रहेंगे।
1: इस प्रकार मिशनरियों और बैरोज द्वारा प्रदर्शित उनके दोष हैं। स्वामी जी अकृतज्ञ हैं। वे भारत और विदेशों में जितनी लोकप्रियता का दावा करते हैं वो उतनी नहीं और स्थायी भी नहीं है। वे जाति च्युत हैं और उन्होंने अमेरिकी महिलाओं की अनुचित निंदा की है। स्वामी जी ने इसके पूर्व समाचार पत्रों आदि के माध्यम से प्रकट रूप में कभी इस प्रकार के दोषारोपण का प्रतिवाद नहीं किया था, इस बार भी नहीं किया। फिर भी इस प्रचार के पहले, इसके दौरान और बाद में उन्होंने विभिन्न लोगों को जो व्यक्तिगत पत्र लिखे उनमें इसका समुचित उत्तर मिल जाता है।
0: पहले हम अकृतज्ञता की ही बात को लें। स्वामी जी ने बैरोज की सहायता नहीं की, ये पूर्णतः असत्य है। बैरोज के भारत आने के पूर्व स्वामी जी ने लंदन से 28 अक्टूबर 1896 को जो पत्र इंडियन मिरर में प्रकाशित कराया उसमें ये बातें थीं।
5: शिकागो विश्व मेला के धर्म महासभा की अपनी विराट कल्पना को सफल बनाने के लिए श्री बोनी ने डॉक्टर बैरोज को अपना साथी नियुक्त कर सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति पर ही कार्यभार सौंपा था। डॉक्टर बैरोज के अद्भुत साहस, अथक परिश्रम, अचल धैर्य और स्वाभाविक सज्जनता के फलस्वरूप ही इस महासभा को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। अन्य लोगों की अपेक्षा हम डॉक्टर बैरोज के ही अधिक ऋणी हैं। अब वो हमारे बीच धर्म के पवित्र नाम और मानव जाति के एक महान शिक्षक के नाम पर आ रहे हैं और मेरा विश्वास है कि ईसा मसीह द्वारा प्रचारित ईसाई धर्म की उनकी व्यवस्था अत्यंत उदार होगी एवं हमारे मन को उन्नत करेगी। अतएव अपने देशवासियों से मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि धरती के दूसरे छोर से भारत आने वाले इन विदेशी सज्जन के प्रति आप लोग ऐसा आचरण करें जिससे उन्हें पता चल सके कि इस दुख, निर्धनता एवं अवनति की दशा में भी जब भारतवर्ष आर्य भूमि के रूप में परिचित था और उसके ऐश्वर्य की चर्चा विश्व के सभी राष्ट्रों के मुख पर रहती थी, उस अतीत के समान ही हमारा हृदय आज भी मैत्रीपूर्ण है।
0: मद्रास में बैरोज के लिए प्रतीक्षा न कर कलकत्ता जाने का कारण बताते हुए स्वामी जी ने स्वयं ही लिखा है कि अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य के कारण ही उन्हें ऐसा करना पड़ा था। मिशनरियों तथा बैरोज द्वारा गढ़े गए अन्य दोषारोपों के प्रतिवाद हेतु संवाद पत्रों की सहायता न लेकर अपने मित्रों को व्यक्तिगत पत्र लिखते समय अन्य प्रसंगों के साथ उन्होंने इस विषय पर भी जो दो चार बातें कही है उनमें से हम 30 जनवरी 28 अप्रैल तथा 9 जुलाई 1897 के 3 पत्रों की कुछ बातें यहाँ पर उद्धृत करेंगे। इससे ये विषय काफी स्पष्ट हो जाएगा। ये पत्र मेरी को लिखे गए थे। प्रथम पत्र में है,
5: डॉक्टर बैरोज का सप्रेम स्वागत करने के लिए मैंने लंदन से अपने देशवासियों को पत्र लिखा था। उन लोगों ने उनका बड़े आवभगत के साथ स्वागत किया, परंतु वे यहां की जनता में प्रेरणा का संचार नहीं कर सके। इसमें मेरा क्या दोष? कलकत्ते के लोगों में कोई नया भाव घुसाना बड़ा कठिन है। अब सुन रहा हूं कि डॉक्टर बैरोज के मन में मेरे बारे में तरह तरह की बातें उठ रही हैं। इसी का नाम संसार है।
0: द्वितीय पत्र में उन्होंने लिखा था,
5: मुझे आशा है कि डॉक्टर बैरोज अब तक अमेरिका पहुंच गए होंगे। बेचारे, वो यहां अत्यंत संकीर्ण ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे और जैसा कि आमतौर पर होता है किसी ने उनकी बातें नहीं सुनी। वैसे लोगों ने बड़े प्रेम के साथ उनका स्वागत किया था, और वो भी मैंने पत्र लिखा था इस कारण। परंतु मैं उन्हें बुद्धि तो उधार नहीं दे सकता था। इसके अतिरिक्त वो एक विचित्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। मैंने सुना कि मेरे भारत लौटने पर पूरे देश में जो खुशियां मनाई गईं, इससे वो जलन के मारे पागल हो गए थे। कुछ भी हो, तुम लोगों को थोड़े अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति को भेजना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर बैरोज जो कुछ कह गए हैं उससे हिंदुओं ने महाधर्म सभा को एक तमाशा मात्र समझ लिया है। दार्शनिक विषयों पर पृथ्वी का कोई भी राष्ट्र हिंदुओं का पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता।
0: तृतीय पत्र में उन्होंने मैरी को लिखा था,
5: मुझे विभिन्न अमेरिकी अखबारों की बहुत सारी कतरनें प्राप्त हुई हैं, जिनमें अमेरिका की महिलाओं के बारे में मेरे विचारों की कटु आलोचना की गई है। उनसे मुझे और भी एक नया समाचार मिला कि मैं अपनी जाति से निकाल दिया गया हूं। सन्यासी होकर भी जैसे खोने के लिए मानो मेरी कोई जाति थी। जाति च्युत होना तो दूर रहा, मेरे पाश्चात्य देशों में जाने से यहां समुद्र यात्रा के विरोध में जो भाव थे वो बहुत कुछ दब गए। मुझे यदि बाहर करना हो तो मेरे साथ ही भारत के आधे राजाओं और लगभग पूरे शिक्षित समुदाय को भी जाति च्युत करना पड़ेगा। ऐसा तो हुआ नहीं, उल्टे मेरे पूर्वाश्रम की जाति के एक विशिष्ट राजा ने मेरे सम्मान में एक भोज का आयोजन किया था, जिसमें उस जाति के अधिकांश बड़े बड़े लोग सम्मिलित हुए थे, और देश के एक छोर से दूसरे छोर तक मेरा जैसा सत्कार हुआ है भारत में वैसा किसी और के लिए नहीं हुआ। इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि जब मैं रास्तों से होकर निकलता था तो भीड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती थी। जातिच्युत होना शायद इसे ही कहते होंगे।
1: समाज से बाहर होने का ठीक उत्तर देते हुए यहाँ जो व्यक्तिगत गौरव का वर्णन हुआ है उसे पाठकगण अहंकार का परिचायक न समझें, क्योंकि ये पत्र उनकी अपनी बहन मैरी को व्यक्तिगत तौर पर लिखा गया था और इसके अन्य लोगों के हाथ में पहुँचने की संभावना नहीं थी। जातिच्युत का उत्तर देने के बाद स्वामी जी ने उसी पत्र में अन्य बातों पर भी चर्चा की थी।
5: मेरे ऐसे स्वागत से मिशनरियों के हाथ के तोते उड़ गए हैं, और यहां वे हैं भी कौन? कुछ भी नहीं, उनके अस्तित्व के बारे में ही हमें खबर नहीं। बात ऐसी थी कि मैंने अपने एक व्याख्यान में इंग्लिश चर्च के भद्र पादरियों को छोड़कर सामान्य मिशनरियों के दल में आने वाले लोग जिस श्रेणी के होते हैं इस विषय में कुछ कहा था। इस प्रसंग में मुझे अमेरिका की कट्टर चर्च महिलाओं और उनकी मिथ्या बदनामी फैलाने की क्षमता का भी उल्लेख करना पड़ा था। मिशनरी लोग मेरे अमेरिका में किए गए कार्य को बिगाड़ने के लिए इसी को संपूर्ण अमेरिकी नारी जाति पर लांछन कहकर शोरगुल मचा रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यदि केवल उन्हीं के विरुद्ध कुछ कहा जाए तो इससे संयुक्त राज्य के लोगों को आनंद ही होगा। प्रिय मैरी, यदि मान भी लिया जाए कि मैंने अमेरिका के लोगों के विरुद्ध ये भयानक बातें कही हों, तो भी वे हमारी माताओं और बहनों के बारे में जो घृणित बातें कहते हैं, इससे क्या उसके लाखवें भाग की भी पूर्ति होगी?
0: जैसा कि स्वाभाविक था, स्वामी जी के लिए अपने ही अप्रकाशित पत्रों के उद्धरण देखकर अमेरिका के नारी जाति के प्रति उनकी प्रीति एवं श्रद्धा का भाव प्रमाणित करना संभव न था। परंतु हम जानते हैं वो कितना आंतरिक एवं अकृत्रिम था। उनमें से यहां दो चार उक्तियों को ही प्रस्तुत करना यथेष्ट होगा।
5: अमेरिका के पारिवारिक जीवन के संबंध में मैंने अनेक निरर्थक कहानियां सुन रखी थीं। वो स्वाधीनता में उन्मत्त होकर अपने पारिवारिक जीवन की सकल सुख शांति को भंग कर देती हैं, और इसी प्रकार की और भी बातें सुनने में आई थी। परंतु पिछले एक वर्ष के दौरान अमेरिकी परिवार और अमेरिकी नारियों के बारे में मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे अब ये स्पष्ट बोध होता है कि उस प्रकार की धारणाएं कितनी भ्रांत एवं निर्मूल हैं। कितनी ही ऐसी माताएं देखी हैं जिनकी मातृत्व और ममता और संतान स्नेह का वर्णन करने को मेरे पास भाषा नहीं। कितनी ही ऐसी बालिकाओं और कुमारियों को देखने का मुझे अवसर मिला है जो डायना देवी के ललाट पर स्थिर तुषार कणिकाओं के समान निर्मल और उसके साथ ही अत्यंत शिक्षित और मानसिक एवं आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से उन्नत हैं। ये रूप में लक्ष्मी और गुणों में सरस्वती हैं, ये साक्षात जगदम्बा हैं। इस तरह की मां जगदम्बा यदि अपने देश में 1000 तैयार करके मर सकूं तो निश्चित होकर मर सकूंगा।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अजय सिंह टिपानिया का गायन, उसके बाद क्लेरनेट वादन की प्रस्तुति दी जाएगी डॉक्टर पंडित नरसिम्हा वड़ावाटी और साथियों द्वारा, और अंत में गायन प्रस्तुत किया जाएगा आरती अंकलीकर टिकेकर का। तो आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं अजय सिंह टिपानिया का गायन।

इस तरह से प्रेम की प्यास जब लगती है तो हम उस अमी का पान करें। एक भजन में सद्गुरु कबीर इस तरह से कहते हैं,

सब आप लोगों की एक मोहब्बत से हम बजाए, आप लोग प्यार से सुन रहे हैं, हमारे अंदर थोड़ा क्रिएशन हो गए। अभी नेक्स्ट एक धुन बजाएंगे पीलू का मध्यलय में।

0: अभी आप डॉक्टर पंडित नरसिम्हा वड़ावाटी तथा साथी बेंगलोर द्वारा क्लेरिनेट वादन का आनंद ले रहे थे।
1: आइए आज की सभा के दूसरे क्षण में हम कुछ ही क्षणों बाद आनंद लें कबीर गायन की एक और शैली का, और हमारे बीच कुछ ही क्षणों में मंच पर हाजिर होंगी विश्वख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायिका सुश्री आरती अंकलीकर टिकेकर।

तो श्रोताओं, अजय सिंह टिपानिया के गायन के बाद अब बारी है क्लेरनेट वादन की, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर पंडित नरसिम्हा वड़ावाटी और उनके साथ साथी कलाकार।

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम से। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ पल हंसने हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे तप तपाती गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका आया और मन को सुकून दे गया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक LPG का सातवां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में 7 अजूबे हैं, धरती पर 7 समंदर हैं। शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, सरगम के सुर भी 7 होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी 7 हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी 7 पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या 6 क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में 6 फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम 7 के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
2: ओफो यार, ये जूते कहां रख दिए? ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे। अरे सुनती हो का? क्या यार ये लोग, फोन मोबाइल कहां रखा है मेरा यार?
3: सुनिए जी, अरे सुन रहे हैं? आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूं।
2: क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
3: हाँ।
2: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है, गोंद की बाप है ये चिपकूपन में। सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है, चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है कि टूटते ही।
4: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए, लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ। पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
2: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्निदेव हड़ताल पर चले गए हो।
3: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
2: क्या मतलब
3: भाई? 5 महीने बाकी हैं अभी साल पूरा होने में, और
2: नोटिस दे दिए हैं कि अब काम पे नहीं आएंगे वो, यही कहना है ना तुम्हें?
3: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं, अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
2: क्या?
3: और महीने बचे हैं 5, यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं। अब कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
2: कटौती माई फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांधकर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगो? कमाल है भाई, कमाल है, है? एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर, और मैं?
3: नहीं, देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा, मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा।
2: क्या?
3: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली भाई, उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
5: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीन ना जाऊ ना तो लकड़ी भी ना मिले। एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर। अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
2: हाँ, हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं।
3: अरे सुनिए साहब, अरे सुनिए तो टिफिन तो ले जाइए, अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या? उफ़ो
5: साहब, नाराज हो गए क्या भाई साहब?
3: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
5: भाई साहब नाश्ता तो कर लूंगी, पर आज है ना वो ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो थोड़ा सा क्या है ठंड है ना।
3: अच्छा बनाती हूँ।
5: हाँ हाँ, तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी, पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
3: ये ले चाय। अब मेरा माथा खराब ना कर कांता, देखा ना तूने कैसे लड़कर गए हैं अभी। तू चाय पी, तुझे तो गरम पराठे दे रही हूँ और वे भुने चने लेकर चले गए। तुझे क्या मालूम कि वो कैसे कैसे।
5: मालूम है भाई साहब, रो मत, रो नको, मालूम है मेरे को, सब मालूम है। अरे आग की जरूरत तो मेरी रसोई में भी पड़ती है ना। वो चाय वाले भी बोलते कि सरकारी रेट 2 गुना आता है ना, तो ब्लैक वालों का रेट 4 गुना हो जाता है। हाँ
3: मैं क्या करूँ, सरकार तो कुछ भी बोल देती है बस, अब मैं कैसे घर चलाती हूँ ना, मैं ही जाती हूँ।
5: रो,
3: हो गई ना तेरी चाय, अब जा बाकी काम कर।
5: हाँ,
3: झाड़ू पोछा पड़ा है सुबह से।
5: हाँ, करती।

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
0: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
2: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया।
0: क्या?
2: हाँ, बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझ कर कटक लेते हैं।
0: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
2: हाँ बोलो।
0: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें। हाँ, हाँ, हाँ। सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
2: क्या बात है भाई, क्या बात है, हमारी मेहनत साहब तो बहुत समझदार हो गई है। अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
0: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
2: बिल्कुल।
0: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
2: हाँ, हाँ।
0: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे, हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
1: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
0: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई, अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं अब।
2: वाह वाह, संकट
0: सोलर
2: मोचक।
0: कुकर देव की जय।
2: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, कहाँ मेरा लंच बॉक्स है, ला।
0: माफ करना जी,
2: क्या
0: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल, ये सोलर कुकर में डाला है ना। और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
2: ए भगवान, दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अब पका ही भर दो तुम टिफिन में यार, है? पेट की आग से ही पक जाएगा अब तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
0: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो, अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे, तो मैं क्या कर लूं?
2: क्या करूं?
0: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान, आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
2: यार, अरे यार रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
0: हटो जी,
2: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल तो उठा लाओ उसे, लाओ जल्दी।
0: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको, क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
2: अरे चुप रहे भाई, चुप रहे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ? अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है।
0: सच लाओ,
2: जल्दी। हाँ,
0: ये लीजिए।
2: हाँ,
0: ये हाँ। बताइए अब क्या करूँ इस कच्चे पक्के खाने का?
2: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
0: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ?
2: ओफो, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, हैं? आधा गैस।
0: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश, मतलब दिनेश।
2: हाँ, मतलब हम दिनेश।
3: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में आम आदमी का कलेजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद करके अपना रसोई का चूल्हा जला सके। पति पत्नी की 2 सदस्यीय कमेटी इस कठिन समस्या का हल तलाशने के लिए बैठ गई।
0: सुनो सुनो जी, एक काम करते हैं, घर में आलू आज से पूरी तरह बंद।
2: उससे क्या होगा? क्या बाकी सब्जियां कच्ची खाई जाएंगी?
0: अरे नहीं जी, सब्जियों का बिहेवियर आप क्या जानोगे दिनेश बाबू, ये तो हम गृह स्वामिनियां ही समझ सकती है।
2: क्या मतलब?
0: मतलब ये देखो, अब हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हाफ फ्राइड, पोषक तत्व भी भरपूर और गैस की बचत भी। वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट,
2: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा, है ना?
0: वाव, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली, वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
2: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल,
0: है?
2: जान ही दे देते हैं ना बाप अपनी, है? न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म।
0: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पतिदेव, भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
2: क्या,
0: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
2: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद, मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं चलेगी।
0: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, करीबी में आटा गीला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
2: क्या भुनर भुनर कर रही हो जी तुम, है? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
0: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़छाला हो चुका है, कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए।
2: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री

0: सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है।
1: क्या?
0: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
2: अच्छा,
0: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
2: क्या,
0: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
2: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा, आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे।

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश? हाँ? सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ,
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ,
1: अरे भैया जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटाकरण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और कर्म का तैसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी, जी, जी, जी।
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ, शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ, और कभी कभी तो ये कहती है कच्चा खाना खा करके जलते तवे पर बैठ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। 6ठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ, और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। बड़े मुश्किल से विदा हुए हैं, लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूं भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जाने दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर 6ठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ यार, मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहाँ से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एक आध सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह,
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो धास हुए। चल जाए तो सुपरहिट, कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैया? तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या? अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले ही लिखवा लो।
1: देखो भैया दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी 6ठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्राण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: ओफो, अब क्या करूं, सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओफो, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो? सुनना जरा। देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर।
0: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुनो, लुढ़का कर देखते हैं, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभल के
0: अब जलाओ।
3: चल गया, जल जल चल गया। ये देखो, ये देखो लौ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान, भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
0: अरे क्या पागल हो यो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली बात है।
3: चुप रहो जी, कहीं माता रानी नाराज हो गई ना तो थान तो क्या, दुकान ही हार जाओगे तुम। एक एक सिलेंडर को तरसोगे, साल भर गाय की तरह कच्चा सानी खाते रहना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे।
2: लड़ाई के मैदान में जिस तरह कोई बहादुर सैनिक मरते मरते भी दो चार दुश्मनों को लुड़का देता है, वैसे ही दम तोड़ते सिलेंडर ने भी रात का खाना पका दिया है। पर सुबह क्या होगा, यह चिंता पति पत्नी को इस खाने का आनंद नहीं लेने दे रही। हर कौर के साथ चिंता की दो फांके निगल रहे थे वे दोनों। सुबह चाय कैसे बनेगी, दूध कैसे गर्म होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, अनगिनत सवाल पति पत्नी के बीच राहु की तरह पंख फड़फड़ा रहे थे।
0: ये क्या कर रही हो रचना, आज रद्दी वाले को बुलाया क्या तुमने?
3: रद्दी वाले को नहीं बुलाया है, ये तो चाय बनाने का इंतजाम चल रहा है पति देव जी।
0: ओ, यानी अब रद्दी के कागजों से रसोई पकेगी?
3: नहीं, ये केवल सुबह का इंतजाम है।
0: तो
3: इसके बाद अगर कोई रसोई जलानी है तो जाकर कबाड़ी के यहाँ से एक आध क्विंटल रद्दी कागज खरीद कर ले आओ।
0: एक क्विंटल रद्दी कागज?
3: हाँ,
0: यानी 1000 रुपए का बिल। लग रहा है गैस खत्म नहीं हुई है रचना, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। इतने में तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही आ जाएगा।
3: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
0: क्या?
3: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए। तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
0: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई? किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए। भाई खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते उसे। पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है।
3: चिंता न करिए पति देव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
0: कैसे बैलेंस करना है?
3: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का 1 पैकेट कम आएगा घर में
0: जी?
3: साल भर
0: है?
3: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो। पका खाना बोनस होगा।
0: पर काम कैसे चलेगा, 2 पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, 1 पैकेट में क्या होगा?
3: अरे पढ़ने का क्या है, 4 में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कट चाय पी जाएगी
0: जी।
3: गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म।
0: वाह वाह,
3: बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
0: बहुत खूब,
3: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
0: क्या बात है।
2: अब घर में 7वां सिलेंडर आ चुका है। पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए पर रसोई तो गर्म हो गई। कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
3: ये क्या है जी आपके हाथ में?
0: बूझो तो जानू।
3: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है। अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह। भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी।
0: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी। अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
3: तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
0: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है। पुरानी फिएट कार की तरह ये, जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
3: क्या
0: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
3: और इस नए चूल्हे में?
0: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
3: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
0: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
3: अब इसमें इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
0: नहीं आ रहा ना?
3: नहीं
0: आएगा भी नहीं।
3: क्यों?
0: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
3: अरे
0: मुझे भी नहीं मालूम था। वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है, चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
3: यही है ना बुकलेट?
0: यही है। क्या लिखा है बोलो?
3: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
0: हाँ अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो।
3: देखो ना, गैस बचाने के टिप्स
0: जी।
3: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें
0: जी।
3: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी
0: जी।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
0: आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
3: नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं, ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आँच धीमी कर दो।
0: जी जी,
3: सिंपल। ओके एक और है दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखे।
0: मुझे दो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे दो।
3: अच्छा अच्छा, चलो पढ़ो। सिक्स्थ वाला,
0: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
3: अच्छा,
0: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली, नारंगी व एक जैसी ना हो।
3: अच्छा,
0: समझी?
3: हाँ,
0: है?
3: हाँ।
0: अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली, चमकदार व एक जैसी होना चाहिए।
3: अच्छा,
0: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें।
3: हाँ,
0: इससे गैस की बचत होगी। और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा, दीर्घायु।
3: नहीं मजाक नहीं, अरे इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं।
0: हाँ।
3: पर हम इन्हें करते क्यों नहीं हैं?
0: हाँ, लेकिन अब करना है धर्म पत्नी।
3: हाँ, जरूर, जरूर।
0: नहीं तो पता चला अभी दूध आधा हुआ है।
3: हाँ।
0: और चाय आधी हुई है, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए।
3: नहीं नहीं,
0: हाँ, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए।
3: नहीं नहीं,
0: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े, संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे। पहले वीजा लें, फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की
3: इजाजत नहीं मिलेगी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदानी और अंकित सक्सेना का। परिकल्पना और सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्स पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं कबीर गायन, जिसमें दो अलग अलग प्रस्तुतियां होंगी। पहली प्रस्तुति होगी श्रुति विश्वनाथ की आवाज में। तबले पर हैं श्रुति नंद्र कटागड़े और सारंगी पर हैं यूजी नकागवा। और उसके बाद प्रस्तुति होगी मंजिल मिस्टिक्स की। तो आइए सबसे पहले सुनवा रहे हैं ये गायन श्रुति विश्वनाथ की आवाज में।

0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना मंजिल मिस्टिक्स की प्रस्तुति को। तो श्रोताओं, आज आपने आनंद लिया भारत भारती कार्यक्रम में कबीर गायन का। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत अपने दोस्त दानिश को। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, हमने तो अभी तक यही सुना था कि जोड़िया ऊपर वाला बनाता है, धरती पर तो केवल उनका मिलन होता है। लेकिन कभी आपने सोचा भी ना होगा कि बेटी का रिश्ता पक्का करते समय कैसी कैसी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, और परेशानी भी ऐसी जो आपकी कल्पना से भी परे हो। तो आइए सुनते हैं हास्य नाटिका बेटी का रिश्ता।
2: अजी सुनते हो? लड़की कब की सयानी हो चुकी है, तुम्हें कुछ दिखाई देता भी है कि नहीं?
3: क्यों, क्या मैं घर में आंखें बंद करके घूमता हूँ?
2: यही तो समस्या है तुम्हारी। अरे आंखें खुली रहती हैं पर दिखाई कुछ नहीं देता। तुम्हारे सामने से बिल्ली दूध चट कर जाएगी और तुम बैठे अखबार ही पढ़ते रहोगे।
3: देखो मेरे अखबार को किस्मत कहना, तुम्हें पता भी है अखबार आज के जमाने में कितनी अहमियत रखता है, पर तुम क्या जानो। अच्छा जरा बताना तो के हिलेरी क्लिंटन कौन है?
2: अरे ये क्लिंटन मिल्टन को मारो गोली।
3: क्या
2: अपनी कंचन को देखो ना, जो पूरन मास के चांद की तरह फुल साइज हो चुकी है। अरे इसकी शादी वादी करनी है कि नहीं?
3: तो तुम क्या सोचती हो, अकेले तुम्हें ही उसकी चिंता है? मैं तो जैसे उसको कुछ लगता ही नहीं हूँ। अरे आदमी और औरत में यही अंतर होता है। औरतें बक बक करके अपनी भड़ास निकालती हैं और आदमी चुपचाप काम करते रहते हैं।
2: अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं कि मौन व्रत रखकर आपने कौन सी तपस्या की है भला? अरे किस महादेव को प्रसन्न किया है?
3: हाँ ये हुई ना मुद्दे की बात। अरे मगर जरा ढंग से तो पूछो। खैर छोड़ो, मैंने शास्त्री जी से बात चलाई है। एक लड़का है उनकी नजर में, अच्छा खाता पीता का रहे।
2: अच्छा?
3: लड़का भी ढंग का है, एक दो दिन में ही उन लोगों से बात करके बताएंगे वो हमें।
2: अच्छा अच्छा। अरे ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है।

0: हेलो, अरे पंडित जी प्रणाम, जी अच्छा बात हो गई आपकी। फिर क्या, आज ही आ रहे हैं वो लोग? अरे वाह, लड़के के माँ बाप? बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद। जी ठीक है सुनो
1: जी।
0: पंडित जी ने सब बात जमा दी है?
1: हाँ।
0: आज ही दोपहर लड़के के माँ बाप अपनी कंचन को देखने आ रहे हैं।
1: अरे हाय हाय, बस किसी तरह बात बन जाए, भगवान को मैं 125 का प्रसाद चढ़ाऊंगी
2: बस।
1: अरे चिंता के मारे मुझे नींद नहीं आती।
0: अरे चिंता छोड़ो, भगवान ने चाहा तो ये रिश्ता तय ही हो जाएगा।
1: हाँ,
0: फिर सोना कुंभकर्ण की तरह पूरे 6 महीने लगातार।
1: मेरा मजाक मत उड़ाओ जी। हाँ, कराटे तुम भरते हो, ऐसा लगता है कि फटी बांसुरी बज रही है, और कुंभकर्ण मुझे कहते हो।
0: फिर शुरू हो गई तुम, ये सब बाद में कर लेना, पहले चलकर तैयारी करो, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए उन लोगों को।
1: अच्छा।

0: जी, लगता है वो आ गए हैं। तुम दरवाजा खोलो ना। हाँ, हाँ, मैं है ना भीतर जाकर कंचन को देखती हूँ।
1: हाँ,
0: बड़ी लापरवाह लड़की है ना।
1: बिल्कुल।
2: मैंने कहा राधे श्याम जी है क्या घर में?
1: अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं। पाए लागो पंडित जी।
3: अरे खुश रहो, खुश रहो यजमान, सब कुशल मंगल से तो है ना।
1: आपकी कृपा है पंडित जी।
3: अच्छा तो मैं परिचय करवाता हूँ।
1: जी जी जी, जी, जी, जी।
3: ये हैं श्रीमान विद्यापति।
4: नमस्कार।
3: और ये हैं उनकी धर्म पत्नी।
1: जी जी जी,
0: नमस्ते।
3: और ये हैं इनके दोनों के सुपुत्र श्री पुष्पेंद्र जी। किराने की दुकान।
1: अच्छा, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी जो आप हमारे यहाँ पधारने का कष्ट किया आपने।
4: अरे अरे कष्ट का है का, अब हमारे पंडित जी का आदेश हुआ और हम हाजिर हो गए।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते।
1: ये है हमारी धर्म पत्नी सावित्री देवी।
4: नमस्ते बहन जी।
1: वो कंचन को बुलाओ जरा अंदर से।
0: अभी बुलाती हूँ। कंचन बेटिया, नाश्ता चाय लेके आ जाओ बेटा।
3: वो देखो आ गई। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। वो देखिए कन्या चली आए रही है, आए रही है। अत्यंत सुशील और गुणवंती कन्या है हमारी। और एक बात बताऊं, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है।
4: शास्त्री जी, वो तो देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल माँ पर गई है।
5: जी नमस्ते।
4: नमस्ते बेटा।
3: कितनी सुशील संस्कारी लड़की है, देखा बिटिया खड़ी क्या हो। अरे मेहमानों को नाश्ता परोसो भैया।
5: जी पंडित जी, जी ये समोसे खाइए।
3: बिटिया ने ही बनाए हैं।
4: अच्छा।
3: अरे बेटा ये मिठाई भी तो दो, इतना कुछ तुमने बनाया है, दो लीजिए। अरे यजमान आप भी लीजिए।
4: शास्त्री जी एक बात पूछें, कन्या क्या समोसा और मिठाई खाती है?
3: तो विद्यापति जी,
4: जी
3: कैसी लगी हमारी कन्या आप लोगों को?
4: पंडित जी जरा हम चर्चा करके बताते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपको एक दिन का रिश्ता तो है नहीं भाई, पूरी जिंदगी का सवाल है भाई। पहले हमारे जमाने में तो ना ही जाता था भाई, रिश्ता तय कर आ जाता था और विवाह हो जाता था। लेकिन आजकल वो क्या कहते हैं, हाँ कंप्यूटर का जमाना है ना। कहने का मतलब ये कि अगर लड़का और लड़की यानी कि कन्या और आपका बिटुआ आपस में बातचीत करना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
4: नहीं नहीं नहीं पंडित जी, लेकिन हमें आपत्ति है। अकेले अकेले में बात करने का संस्कार हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है पंडित जी। हमारा बेटा तो बिल्कुल शरण कुमार है, शरण कुमार। जो माँ बाप कहेंगे वही करेगा। बस जरा हम पप्पू की माँ से बात कर लें।
3: अब आपस में आप लोग राय सुमारी कर लीजिए भाई, तब तक हम लोग बगल के कमरे में बैठकर थोड़ी गप शप कर लेते हैं।
4: जी जी, हाँ, जी, जी।
3: आइए जिजमान, आइए। हम आ जाएं?
4: अवश्य अवश्य, पधारिए पधारिए।
3: हाँ तो बताइए विद्यापति जी, क्या फैसला है आप जनों का?
4: अब वो हमारी,
6: देखिए पंडित जी, लड़की तो पसंद है हम लोगों को, पर कुछ बातें हैं जो साफ हो जाएं तो अच्छा है।
0: हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल। दान दहेज की बात तो साफ ही होनी चाहिए, अब बात को कुछ ऐसा।
6: अरे नहीं नहीं बहन जी, दान दहेज का तो हमारे यहाँ चलन ही नहीं है। पर
0: देखिए देखिए, सकुचाइए मत, निसंकोच बोलिए जो भी मन में है।
6: अब देखिए तो महंगाई तो आप लोग देख ही रहे हैं, किस कदर सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में
1: बहन
6: तो...
1: जी बहन जी बेफिक्र रहें आप, महंगाई की आंच हम शादी पर नहीं आने देंगे। हाँ, अगर आप लोग बारात वगैरह सादगी के साथ लेकर आना चाहते हैं तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।
4: नहीं नहीं भाई साहब नहीं, बात दरअसल वो नहीं है, बात तो ये है कि...
6: रुकिए आप, रुकिए जरा भाई साहब
1: जी,
6: हम लोगों को लड़की के बारे में एक बात पूछनी है।
0: बहन जी एक क्यों, 100 पूछिए ना।
6: जी वो ये है कि लड़की की खुराक
1: जी?
6: मतलब कि वो लड़की रोटी कितनी खाती है।
4: रोटी रोटी रोटी।
6: अब देखिए भी आप भी, राशन के भाव इतने बढ़ गए हैं तो ये बात तो साफ होनी ही चाहिए ना कि लड़की रोटी कितनी खाती है। आखिर देखिए कोई एक दिन का तो खिलाना नहीं है ना हमें।
4: अरे हाँ बहन जी, आजकल तो देखिए ना, कोई भी चीज घर में लाने से पहले ये पता किया जाता है कि उसकी खुराक कितनी है। आजकल इलेक्ट्रिक के सामान भी स्टार रेटेड खरीदे जाते हैं जिससे कि वो बिजली की कम खपत करे। लोगों ने बल्ब से तौबा कर ली है, बल्ब से तौबा, CFL से नाता जोड़ लिया है। आखिर इसीलिए ना कि बल्बों की खुराक बहुत ज्यादा थी। और तो और अब गाड़ियां भी खरीदने से पहले ये देखा जाता है कि इनका ओवरेज क्या है।
6: एवरेज?
4: अरे श्रीमान ये चीजें तो फिर भी बदली जा सकती है, पर लड़की
1: जी हमने तो कभी अपनी बेटी की रोटी गिनी नहीं। पर अब आप लोग कह रहे हैं तो हम हिसाब लगाकर बताते हैं। 2 मिनट का वक्त देंगे हमें आप?
4: अरे 2 मिनट का नहीं श्रीमान जी, 10 मिनट का समय देंगे, 10 मिनट का। बिल्कुल बिल्कुल, आंकड़ा मिलने में भले ही देर हो जाए पर मिले तो बिल्कुल सही मिले। वो क्या है ना कि अगर आंकड़ा ही गलत हो जाए तो सारा का सारा हिसाब ही गड़बड़ा जाता है। पता चला बजट था 1000 रुपए का और खर्च बैठ गया 2000, तो बाकी चीजें तो गड़बड़ हो जाएंगी ना।
1: आप कहो तो हम अपनी धर्मपत्नी से भीतर जाकर चर्चा कर लें।
4: बिल्कुल श्रीमान, बिल्कुल श्रीमान, अवश्य चर्चा कर लें।
1: चलो आओ। अब क्या बताएं लोगों को, अपनी बेटी की खुराक पूछ रहे हैं। अरे तुमने भी तो लाड़ प्यार में कभी ध्यान नहीं दिया, मनुहार करके खिलाती गई और उसकी खुराक बढ़ती।
0: मुझे क्या मालूम था कि लड़की ब्याहने में ये बताना पड़ेगा कि कितनी रोटी खाती है। खाने का ठिकाना नहीं और चले हैं बहु ब्याहने। अरे मैं तो कहती हूँ कि इस रिश्ते को मना ही कर दो। अरे ये लोग हमारी बेटी को भूखो मार डालेंगे, गिन गिन कर रोटी खिलाएंगे और नाप तोल कर चावल दाल, और ये सब्जी तो सोने की तरह तोले में तोल कर देंगे। समझे?
1: चुप धीरे बोल भाई, कहीं तेरी कटर कटर सुन लिए तो आया रिश्ता हाथ से निकल जाएगा।
0: अरे तो जाने दो ना। हाँ अच्छा ही होगा, हमें मुंह खोल कर नहीं कहना होगा। अरे ऐसी शादी से तो लड़की कुंवारी ही भली, कम से कम अपने घर में भरपेट खाना तो खाएगी बेचारी।
1: तो जैसे इंसान खाने के लिए ही आता है दुनिया में।
0: अरे खाने के लिए तो नहीं आता, मगर बिना खाए रहा भी तो नहीं जा सकता है? साल भर में एक शिवरात्रि का व्रत तो तुम कर नहीं पाते
1: हैं?
0: और लड़की को कहते हो कि सालों साल शिवरात्रि में।
1: अरे पागल है तू?
0: क्यों,
1: एक बार शादी तो हो जाए, फिर तो वही रहेगी घर की मालकिन है? अरे बुढ़िया ही तब इससे मांग के खाएगी। भाई बटर चटर कर रही है ना, फिर अपनी रोटी गिनेगी बुढ़िया।
0: रहने दो, देखा ना कैसी भोंदू औलाद पैदा की है उसने।
1: अरे बड़े बड़े भोंदू भी ना जब एक बार औरत के पल्लू से बन जाते हैं तो समझदार हो जाते हैं, जैसे मैं। हाँ अपना ही मामला देख लो ना तुम। अच्छा छोड़ो ये सब, तुम तो ये बताओ कि खुराक कितनी बतानी है।
0: अरे कितनी क्या बतानी है, जितना खाती है उतना बता दो।
1: अच्छा रिश्ता तोड़वाना है क्या तुझे? अरे पूरे खानदान को सांप सूंघ जाएगा जैसे ही वो सुनेंगे कि 9 रोटी और 1 कटोरा चावल खाती है तेरी लड़की।
0: अरे तो फिर क्या करें?
1: एक काम करते हैं।
0: हाँ।
1: चावल तो पूरा ही उड़ा देते हैं।
0: अरे
1: हाँ, और 1 रोटी भी कम कर देते हैं, इतने पर तो माने जाएंगे वो लोग।
0: ठीक है।
1: हाँ।
0: अब जैसा तुम ठीक समझो वैसा बोल दो।
1: चलो चलो बाहर चलो।
0: चलो।
4: आइए श्रीमान, आइए आइए आइए।
1: भाई साहब वो क्या है ना कि हमारी लड़की एक टाइम में लगभग 8 रोटी खाती है। जी पतली पतली पतली पतली है, मगर अगर चावल साथ में हो तो एक आध रोटी कम भी हो सकती है।
4: चावल भी
0: जी। क्या कह रहे हैं भाई साहब, 8 रोटी
1: जी?
6: अरे भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा है,
1: है?
6: आज के महंगाई के जमाने में 8 रोटी। हाँ अपने मायके में हमने भी खाई है कभी 10-12 रोटियाँ, पर जब से हम ब्याह कर ससुराल आए हैं ना, अब तो आदत सी हो गई है। अरे 2-3 के बाद तो पेट ही हमारा बगावत कर देता है।
1: हाँ ठीक है बहन जी आप, बहुत ठीक। जब घर गृहस्थी का बोझ सर पर पड़ता है तो कहाँ होश रहता है रोटी सोटी का, फिर तो दूसरों को खिलाकर ही पेट भर जाता है। आपकी बहू भी एडजस्ट हो जाएगी धीरे धीरे।
6: नहीं नहीं भाई साहब, बात साफ हो जाए तो अच्छा है, है ना? नहीं तो आप कहेंगे कि भूखे मार डाला हमारी बेटी को। जितना तय हो जाएगा ना उससे पीछे हरगिज नहीं हटेंगे हम लोग, जबान के पक्के हैं। लेकिन
1: क्या क्या कहते हो जी, कुछ गुंजाइश हो तो तुम बता दो, सुन रही हो तुम? आखिर तुम माँ हो, तुमसे ज्यादा कौन समझता है अपनी बेटी को।
0: बहन जी 7 रोटी दे दीजिएगा। हाँ, देखो इससे कम तो नहीं, हाँ, बेचारी भूख ही मर जाएगी ना। हाँ कभी देखो चावल मिल जाए ना तो हाँ, 1 रोटी और कम कर सकती हैं आप। पर अरे नहीं नहीं बहन जी ये तो बहुत ज्यादा है। अब मुझे ही देखिए ना, दुगना वजन है आपकी बेटी से पर खुराक 4 रोटियों में ही सिमट गई है जैसे। अरे पुराना जमाना और था, सस्ताई हुआ करती थी तब। 1 रुपए किलो गेहूं मिलता था और 2 रुपए किलो चावल। मगर आज अरे सुनते हैं आबादी ऐसी ही बढ़ती रही ना तो बस अमीर लोग ही खाएंगे रोटी और चावल, और हम आप जैसे लोगों को गेहूं का भूसा और चावल की भूसी उबाल कर खानी पड़ेगी चटनी के साथ।
5: अच्छा अच्छा बहन जी ऐसा करिए, एक काम करिए, 6 रोटी अब फिक्स कर लेते हैं। देखो है ना, देखो 2 रोटी का डिस्काउंट भी ज्यादा नहीं होता है ना।
1: हाँ बहन जी
5: है ना।
1: हाँ जी हाँ, 8 में 2 का डिस्काउंट मतलब कितना हुआ? 25%।
5: हाँ
1: 25%, इतना तो सेल में भी मिल जाता
5: हाँ,
1: है।
5: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
6: अरे क्या बात करते हैं भाई साहब
1: जी,
6: 50% तक का डिस्काउंट उठाया है हम लोगों ने। अरे बार्गेनिंग करने वाला होना चाहिए, सब होता है।
1: पर बहन जी देखिए, हमने कोई बार्गेनिंग वाला भाव नहीं बताया है आपको, बहुत सोच समझ कर बताया है आपको हमने ये तो। जी हाँ
6: देखिए देखिए भाई साहब, हम तो भाई 3-4 रोटी वाली लड़की ढूंढ रहे हैं।
1: क्या
6: इससे ऊपर की गुंजाइश नहीं है हमारी?
5: अरे
6: हाँ कमाऊ लड़की होती तो और ज्यादा पर भी कंसिडर कर लेते।
7: एडजस्ट कर लेंगे।
4: अबे चुप है।
3: अब देखिए यजमान, मुझे बीच में बोलना ही पड़ेगा। भाई देखिए आप लोग भी ऐसे कसम खाकर नहीं निकलते बेटा ब्याह में। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बीच का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। मतलब ये राधे राधे 4 और 6 के बीच में का, मतलब कि 5 का आंकड़ा फिक्स कर लेते हैं। देखो अब कोई कुछ नहीं, नहीं शांत, मतलब ना आपकी और ना हमारी। क्यों यजमान?
6: अब पंडित जी अब आप इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो मैं 5 रोटी तक आने को तैयार हूँ।
3: जैसे
6: इससे आगे बिल्कुल नहीं, या तो हाँ या फिर ना। और हाँ अगर साथ में चावल भी हुआ तो फिर 1 रोटी कम हो जाएगी थाली में। अब आप सोच समझ के फैसला सुना दीजिए।
1: क्या कहती हो जी, क्या 5 रोटी में लड़की गुजर कर सकेगी? अब बात यस या नो की है, बार्गेनिंग की गुंजाइश अब खत्म।
5: अच्छा जी आप क्या कहते हो?
1: ठीक है।
5: हाँ ना।
1: हाँ
5: तो फिर ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी, 5 रोटी पर रिश्ता पक्का समझो।
8: थैंक यू मम्मी, अब मेरा रिश्ता पक्का हो गया, अब मेरी शादी हो ही जाएगी।

0: रोटी की तय शर्तों के अनुसार बाकायदा एग्रीमेंट तैयार करके दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हो जाते हैं, जिससे बाद में किसी झंझट की गुंजाइश ना रहे। वो कहते हैं ना, ना सौ बका ना एक लिखा। इसलिए लिखा पढ़ी के साथ बात पक्की करना जरूरी समझा गया। यह एग्रीमेंट वर पुष्पेंद्र और कन्या कंचन के बीच हुआ, जिस पर गारंटर के रूप में उनके माता पिता और गवाह के रूप में पंडित जी ने हस्ताक्षर किए। लड़की ब्याह कर ससुराल आ गई। और अब सुनिए आगे की दास्तान।
1: सुनो जी, मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा है। यहाँ पर भूख के मारे दिन भर चक्कर आते रहते हैं। 9-10 रोटी खाती थी मैं अपने मायके में, और यहाँ सिर्फ 5 रोटी, बिल्कुल आधी खुराक मिल रही है मुझे यहाँ पर।
2: मैं सब समझता हूँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मेरे पास ढेरों हिट फॉर्मूले हैं, कल से बिल्कुल फुल डाइट मिलेगी तुझे।
1: जी, वो कैसे?
2: अरे तू आम का पेड़ गिर कर क्या करेगी, अब खुश?
0: पुष्पेंद्र की योजना के अनेक अंग थे। वह दोपहर के टिफिन के लिए 2 रोटी ज्यादा मांगने लगा, और जिसे धीरे से अपनी पत्नी कंचन को सरका देता। दुकान से आता तो जेब में किशमिश और काजू भर के लाता और कंचन की झोली में डाल देता। कभी कभी चोरी से समोसे और कचौड़ियां भी लेकर के आता, मगर बड़ी सावधानी से। पर उसकी माँ की सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज थी। आखिर कब तक बचते वे? एक दिन की बात है।
3: बहू, ये तेरे मुंह में क्या लगा है? ऐसा लग रहा है जैसे
1: कुछ नहीं माँ जी, वो
3: अरे नहीं रे, अभी भी दिख रहा है, लगा है। लाई धरा, मैं साफ किए देती हूँ।
1: नहीं माँ जी, वो देखिए, पूछ लिया मैंने, अब तो नहीं दिख रहा ना।
3: क्या महक रहा है इसमें? कचौरी टाइप की महक आ रही है। सच सच बता बहू, देख देख, एग्रीमेंट साइन किया है तूने?
1: माँ जी कुछ नहीं।
3: हाँ, और तेरे माँ बाप ने गारंटी दी थी इसकी, बात अगर बिगड़ी तो फिर।
1: माँ जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना माँ जी, कि ये अपने लिए कचौरी लाए थे, उसी में से बस थोड़ी सी मुझे चखा दी और बोले, झूठा खाने से ना पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है।
3: बहुत अच्छे, शादी के बाद हमारा सबन कुमार भी अब। सही बात है, बिल्कुल, जवान बीबी के आगे माँ लगती कहाँ है। मगर मैं नहीं छोड़ने वाली, बुलाती हूँ तेरे बाप को अभी।
1: माफ कर दीजिए माँ जी, एक काम करिएगा, शाम को एक रोटी कम दे दीजिएगा ना मुझे, वो एग्रीमेंट वाला ही एवरेज बैठ जाएगा ना फिर।
3: अच्छा, और बदले में तू फिर 2 कचौरियां और नीचे उतार लेगी?
1: नहीं नहीं माँ जी,
3: ये तो वही बात हुई कि रोजा छुड़ाने चले थे, नमाज गले पड़े।
1: माँ जी,
3: है? कहां मैं रोटियों की किफायत किए जा रही हूँ, और कहां ये समोसे और कचौरियां गटकी जा रही हूँ। हे भगवान, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष दूं मैं।
1: माँ जी,
3: अजी सुनते हो?
4: क्या है?
3: इस शादी में बड़ा ही धोखा हुआ है हमारे साथ। मटके जैसा पेट है बहू का। काम निकालने के लिए एग्रीमेंट तो साइन कर लिया उन लोगों ने, मगर अब इसे रद्दी का कागज समझकर उड़ा रहे हैं।
4: तेरा मतलब क्या है, खुलकर कुछ बोल तो सही। अरे रोटियां तो तू ही गिनकर देती है ना उसे, अब मटके जैसा पेट हो या हंडे जैसा, क्या फर्क पड़ता है? माल तो उसमें उतना ही पहुँचता है ना जितना तू डालती है।
3: कान को दाएं से पकड़ो चाहे बाएं से, कान तो पकड़ा रहा है ना, रोटियां ना सही, कचौरियां ही सही। हाँ, आखिर खर्च तो पैसा ही होता है। ये तुम्हारा श्रवण कुमार आजकल छुप छुप कर कचौरियां खिलाता है, समोसे खिलाता है अपनी छम्मक छल्लो को। हाँ, ये तो और ही मजे हो गए, सूखी रोटियां छोड़कर तरमाल गटकी जा रही है। माँ के लिए कभी मूंगफली नहीं लाया पप्पू, और कबीरी के लिए कचौरियाँ समोसे।
4: अरे भगवान, मामला बड़ा गंभीर है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस बनता है इसमें। एक काम करता हूँ, आज ही एक लीगल नोटिस दिए देता हूँ बहू को एंड कॉपी टू हर पेरेंट्स।
3: ये तुम्हारी कानूनी बोली समझ में नहीं आती जी मुझे, मेरी बोली में बताओ कि तुम करोगे क्या।
4: अरे भगवान, केस करूंगा, केस बहू पर और उसके मायके वालों पर, हर जाना वसूलूंगा हर जाना। अरे मजाक थोड़ी है, कागज पर किए गए समझौते से पीछे हटना। अभी फोन करता हूँ वकील साहब को। हाँ। हेलो, वकील साहब कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अरे कुछ नहीं जनाब, वो पुष्पेंद्र की शादी का एग्रीमेंट तो आपको याद है ना? हैं? अरे आप ही ने तो ड्राफ्टिंग की थी उसकी। अरे अब उसका वायलेशन शुरू हो चुका है, वायलेशन। हाँ, बहू रोटियां तो एग्रीमेंट के हिसाब से ही खाती है पर ऊपर से कचौरी डकार लेती है। अब कचौरियां तो एग्रीमेंट में लिखी नहीं है। क्या कहा आपने, कचौरियां मिलती कहां से? अरे अपना वो पप्पू चप्पू चला रहा है। अरे अपनी लालायक औलाद देती उसे लाला कर। क्या कहा आपने, हैं? केस नहीं बनता? अरे वकील साहब मगर क्यों लो।
3: क्या बोल रहे थे वकील साहब?
4: अरे भगवान, कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट की पार्टियां तो हमारे बहु बेटे ही हैं, हम कौन लगते हैं इसमें। अरे जब वे ही मिलकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहें तो गारंटर कुछ नहीं कर सकते। हमारे बेटे की मर्जी के बगैर कचौड़िया बहू खाती तब जाकर कोई केस बनता।
3: मतलब हम यूं ही अपना घर लूटते देखते रहें और कुछ ना बोलो?
4: बिल्कुल कुछ ना बोलो भगवान, कुछ ना बोलो। ऐसा नहीं है, अपने लड़के को तो समझा सकते हैं ना हम, मगर उसके बगैर हम बिल्कुल लाचार हैं, बिल्कुल लाचार।
3: क्यों रे पप्पू, जब कचौरियां ही खिलानी थी चुपके चुपके तो एग्रीमेंट करने का क्या मतलब? अरे उसी वक्त बता दिया होता तो कम से कम इतनी बार्गेनिंग तो ना करनी पड़ती हमें। कह देते भाई ब्लैंक चेक है हमारा, जो चाहे रकम भर लो। मियां बीबी मिट्ठू बन गए और हम हो गए दुश्मन। वारे जमाना, जिसके लिए ये सब कर रहे थे वही जब हमारा नहीं रहा तो
4: देख लो इसे।
2: ऐसा नहीं है माँ, बहू भी तो अपनी ही है ना, भर पेट खाना नहीं दोगी उसे तो बीमार नहीं पड़ जाएगी वो, फिर दवा दारू का खर्चा खाने से कितना ज्यादा पड़ेगा, ये गणित भी तो सोचो माँ। काम छोड़कर बिस्तर पर पड़ जाएगी सो अलग।
4: अरे वाह बेटा वाह, आज जाके समझ में आया कि तू कितना बुद्धिमान है, हिसाब किताब में जीरो।
3: देख ली बाप बेटे की होशियारी, बड़े कानून दा बनते हैं दोनों के दोनों। अरे एग्रीमेंट में कहां लिखा है कि हम दवा दारू भी कराएंगे उसकी और काम छुड़ाकर आराम करवाएंगे उसे?
2: तो यही कहां लिखा है कि उसकी दवा दारू नहीं कराएंगे और काम कराएंगे उससे। कल को वो काम छोड़कर बैठना चाहे तो तुम कुछ नहीं कर सकती, साफ कह देगी वो। रोटियां गिन कर देने की बात हुई है एग्रीमेंट में, पर घर का काम करने की कोई चर्चा नहीं है इसमें। फिर तुम करती रहना सुबह से शाम तक, रसोई चौका झाड़ू बुहारू। काम वाली लगाओगी तो वो भी रोटियां खाएगी और तनख्वाह भी लेगी, समझी? उससे सस्ती तो बहू है जो केवल रोटियों पर 2400 घंटे खटने को तैयार है। बात को समझो मेरी माँ।
4: अबे उल्लू के पट्टे, तू मेरा बेटा है कि अपनी बीवी का वकील है? अरे श्रवण कुमार समझते थे हम तुझे श्रवण कुमार, मगर तू तो शादी होते ही औरंगजेब बन गया।
2: अरे मैं अभी भी हूँ आपका श्रवण कुमार, अब बोल सही रहा हूँ बाबू। अब तुम्हारे पक्ष की बात नहीं है तो तुम्हें गलत लग रही है।
3: सुनो जी सुनो, एक काम कर लो जी, अभी बुलाओ इसकी महरिया को यहाँ, आमने सामने बात हो जाए।
4: बुलाओ बुलाओ।
3: ये छुप छुप कर गले तर करना मुझे नहीं सुहाता बिल्कुल।
2: माँ बुला लो।
5: जी माँ जी, मुझे बुलाया आपने?
3: हाँ बहू, बोल इस मामले में क्या चाहती है तू?
5: किस मामले में?
3: इसी मामले में, साफ बोलना और साफ करना, ये ढका छुपा कुछ नहीं चाहिए इस घर में मुझे। ये नहीं कि बाकी घर वाले सूखी रोटियां खाएं और तू समोसे कचौरियां उतारे।
5: माँ जी मैं क्या बोलूं? मेरे पति ही मेरे सब कुछ है, ये मुझे जैसा रखना चाहेंगे मैं तैयार हूँ।
6: अरे वाह वाह कंचन, वेरी गुड, 50 रोटियां कुर्बान।
3: हाँ, बड़ी होशियार है तू तो, सीधे कमजोर नस पे हाथ रखती है। मालूम ही है ना कि ये जोरू का गुलाम तेरी मुट्ठी में है, तभी तो ये मेरे कब्जे में होता ना तब ऐसे ना बोलती थी।
6: माँ उसे क्यों जली कटी सुना रही हो?
2: अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे को कितनी समर्पित अर्धांगिनी मिली है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो दासी चाहिए ना, और वो भी आधा पेट खाकर बस खटती रहे चूल्हे चौके में लगी रहे।
4: क्या बकता बे?
3: देखो जी, देख लो जिसके मुंह में जबान डालकर बोलना सिखाया हमने, अब वही मुझसे बटर पटर किए जा रहा है। वक्त बदल गया है हमारा, अब तो चिड़िया उड़ना सीख गई, अब नहीं है माँ के परों की जरूरत इसे।
4: ठीक कहती हो भगवान, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीख जाते हैं तो चिड़िया लात मार कर घोंसले से बाहर भी फेंक देती उन्हें, ये नहीं कि।
2: ठीक है बापू, समझ गया मैं, समझ गया तुम्हारा इशारा। संभालो अपना राजपाट, हम अपना घोंसला खुद बना लेंगे, पर उसका साथ नहीं छोड़ेंगे जिसका साथ निभाने के लिए सात वचन दिया है हमने। चलो कंचन
5: जी,
2: अब गैर हुआ ये देश, चलो
3: पप्पू।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम शांति गीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन करा के श्रोताओं को सुधा अनुपम का नमस्कार। छायावादी कवियों में रामधारी सिंह दिनकर सबसे अधिक सशक्त और सबसे अधिक समर्थ मौलिक प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व माने जाते हैं। विपुल काव्य साधना और साहित्यिक गुणों की दृष्टि से उन्हें सदैव सर्वोच्च स्थान प्राप्त रहा है। उनके काव्यात्मक व्यक्तित्व का निर्माण स्वाधीनता संग्राम के द्वंद्व का ही परिणाम था। दिनकर ने जब किशोर अवस्था में प्रवेश किया तो आजादी का आंदोलन शुरू हो चुका था। उन दिनों चल रहे साइमन कमीशन के विरोध में हो रहे प्रदर्शन और रैलियों में उन्होंने भाग लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पुलिस की निर्मम लाठियां खानी पड़ी। उस विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय ने भी भाग लिया था। पुलिस की लाठीचार्ज से उन्हें गंभीर चोट लगी, जिसके कारण वे पहले बेहोश हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से युवक दिनकर का भावुक मन उद्वेलित हो उठा और उनमें कवित्व की ऊर्जा भरने लगी। दिनकर जी कहते थे कि मेरी आज की भावनाओं का मूल्य सन 1921 का असहयोग आंदोलन है। इसके बाद गुजरात के किसानों के सत्याग्रह पर उन्होंने 10 गीत लिखे, जो विजय संदेश नाम से पुस्तक के आकार में छपे थे। इस संग्रह का उल्लेख वारदोली विजय नाम से होता रहा है, क्योंकि स्वयं कविवर दिनकर को इसका सही नाम ध्यान नहीं रहा। दिनकर जी की काव्य यात्रा का प्रारंभ विजय संदेश से माना जाता है। इसके बाद उन्होंने वीरबाला और मेघनाद वधा नामक दो छोटे छोटे काव्य लिखे। ये पुस्तकें बाद में उपलब्ध नहीं हो सकी। सन 1930 में उन्होंने प्रणभंग नामक काव्य लिखा, जिसका उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में किया है। छायावाद की सात्विकता, दार्शनिकता और निराशा से अपने आप को मुक्त कर सामाजिक चेतना को अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया।

उस समय भारतीय राजनीति में साम्यवादियों के प्रवेश से मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन पर आधारित मनुष्य की सामूहिक मुक्ति ने भारत के नवयुवक कवियों को उत्प्रेरित करना प्रारंभ कर दिया। दिनकर जी भी इस ओर झुके, लेकिन दिनकर किसी भी विशेष संकीर्ण सीमाओं में बंध कर नहीं रह सके। उन्होंने सभी ओर से निसंकोच भाव से केवल उन्हीं तत्वों को ग्रहण किया जो मानव हित के लिए उपयोगी थे। दिनकर जी का हृदय क्रांतिकारियों के साथ था। वे अहिंसा को परम धर्म सिद्धांत के स्तर पर ही स्वीकार कर पाए थे। व्यवहार के स्तर पर धर्म के रूप में हिंसा का, सशस्त्र आंदोलन का और युद्ध का भी उन्होंने बार बार जोरदार समर्थन किया और यहीं से उपनिवेशवाद विरोधी वो उग्र राष्ट्रीय काव्यधारा बह चली जिसकी परिणति हुंकार, कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतीक्षा नामक कृतियों में हुई। राष्ट्रवादी कविताओं की परंपरा भारतेंदु युग से चली आ रही थी, फिर भी उग्र रोषपूर्ण गर्जना और पौरुष भरी ललकार का जैसा तेवर दिनकर की कविताओं में देखने को मिलता है वैसा अन्यंत्र दुर्लभ है। दिनकर जी को ख्याति और स्वीकृति इन शौर्यपूर्ण रचनाओं के कारण ही मिली थी जिनमें देशभक्ति का राग कूट कूट कर भरा हुआ था।

दिनकर जी का व्यक्तित्व उनके केंद्रीय प्रतीकों से स्पष्ट होता है। चिंगारी, अंगार, मशाल, आग, अग्नि, अनल, ज्वाला, शिखा, पापक, यज्ञ, ज्योति, किरण, सूर्य और सविता, ये सभी प्रतीक के रूप में बार बार उनकी कविताओं में आते हैं। मात्रागत अंतर इनमें हो सकता है, किंतु अन्याय अत्याचार को छार छार कर संघर्षशील, बलिदान, तेजस्वी और प्रक्षिप्त जीवन की ललक इनमें स्पष्ट मिलती है। इतना ही नहीं, उन्होंने मेषत्व छोड़कर व्याघ्र बनने का आह्वान करते हुए लिखा था कि एक ही पंथ अब भी जग में जीने का, अभ्यास करो छगियो रक्त पीने का। क्रोध का ये अतिरेक कविता है या नहीं, इसकी परवाह दिनकर को नहीं थी। वे तो कविता की गर्दन पर पांव रखकर चिल्लाते चीखते हुए युद्ध के गीत गा रहे थे। शायद कविता से कोई बड़ी चीज दांव पर थी, जिसे बचाने के लिए वे सब कुछ होम कर देने को तैयार थे। चक्रवाल की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि मैं समाज का पुत्र हूँ और मेरा सबसे बड़ा कार्य ये है कि मैं अपने युग के क्रोध, आक्रोश, अधीरता और बेचैनियों को सबलता के साथ छंदों में बांधकर सबके सामने उपस्थित कर दूं। राष्ट्रीय क्रांति दिनकर जी की कविताओं का मुख्य स्वर था और यही वो सबसे बड़ी विशेषता है जिसके कारण वे सच्चे मायने में क्रांति के कवि के रूप में जाने जाते हैं। जय हिंद।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में आगे की कहानी जानेंगे। इतिहास के पन्नों से। इसके पहले के एपिसोड्स में हम आपको बता रहे थे गोंड जनजाति के बारे में, रानी दुर्गावती के बारे में, और हम यहां तक पहुंच चुके थे कि बस युद्ध की तैयारियां हो चुकी थी। युद्ध के मुहाने पर दोनों सेनाएं खड़ी हुई थी, रानी दुर्गावती की और मुगल सेना। इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी में हमने सुना था कि 1564 ईस्वी में गढ़ा की गोंड रानी और दिल्ली के मुगल शासक अकबर के बीच युद्ध पर आ बनी। मुगल सेनापति आसफ खां अकबर की ओर से अपनी विशाल सेना के साथ गढ़ा राज्य की सीमा पर आकर डट गया। इधर जब गोंड रानी दुर्गावती को स्थिति की जानकारी मिली तो उन्होंने भी अपनी सेना को सुगठित किया और युद्ध के लिए नरई की तरफ बढ़ गईं। बीच रास्ते में उन्होंने सेना को फिर से संगठित किया। अनेक लोग उनकी सेना में स्वेच्छा से भर्ती हो गए। रानी की सेना में 2 से 3 हजार सैनिक थे, जबकि मुगल सेना में लगभग 50 हजार सैनिक, हाथी और घोड़े थे। कई इफ्तिखार भी अपनी सेनाओं के साथ मुगल सेना में आकर जुड़ गए थे। इस तरह मुगल सेना जहां एक तरफ बहुत विशाल थी, वहीं रानी की सेना उसकी अपेक्षा में बहुत कम थी। रानी को यह भी सलाह दी गई थी कि वो संधि कर लें और युद्ध से बच जाएं, किंतु रानी दुर्गावती युद्ध से मोड़ लेने जैसा कायराना काम कर ही नहीं सकती थी। उन्होंने युद्ध क्षेत्र को ही चुना। कहते हैं कि रानी ने अपनी सेना को संबोधित किया और उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। यहां करो या मरो की स्थिति थी। रानी के ओजपूर्ण वक्तव्य ने काम किया और उनकी संपूर्ण सेना ने एक मत होकर युद्ध करने की इच्छा जाहिर की और एकजुट होकर स्वीकार किया कि जो भी परिणाम होगा उसके वो सामूहिक रूप से भागीदार होंगे, जिम्मेदार होंगे। हमारी विषय विशेषज्ञ और पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना ने हमें बताया था कि गढ़ा की प्रजा रानी का बहुत अधिक सम्मान करती थी। वो उन्हें माँ दुर्गा के समान मानती थी और इसलिए आज भी जो आख्यान गाए जाते हैं इस क्षेत्र में, उसमें इस नरई के युद्ध की घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। रानी को याद करते हुए आज भी जस गाए जाते हैं, यानी कि यश गीत गाए जाते हैं। ऐसे अनेक जस हैं जिसमें रानी को माँ दुर्गा के समान बताया गया और युद्ध के लिए रानी ने कैसे हुंकार भरी, वो कैसी दिख रही थी, पूजा जी ने बताया था। और एक बार फिर से वो सैला लोकगीत आपको जरा सा, उसकी चार पंक्तियां हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तरी नाना मो नाना रे नाना, तरी नाना मो नाना रे नाना, रानी महारानी ओ आए, माता दुर्गा जो आए, रणमा जूझे तलवारी, रानी दुर्गा का है। पूजा जी, फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए। फिर से पहले से ही अग्रिम धन्यवाद।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पूजा जी, अब आंखों देखा हाल आपसे सुनना चाहेंगे युद्ध का।
2: जैसा आपने कहा कि गढ़ा की सेना और आसफ खां की सेना दोनों लगभग सामने आमने ही थी
1: जी।
2: युद्ध होने को ही था। हालांकि इतिहास में हमने बहुत से युद्ध देखे हैं
1: जी।
2: युद्ध तो किसी के लिए भी ठीक तो नहीं होता
1: जी।
2: दोनों ओर के लोग मारे जाते हैं युद्ध में
1: जी।
2: किसी के कम मरते हैं, किसी के ज्यादा
1: जी।
2: लेकिन हानि तो होती है। फिर भी सदियों से इंसान दूसरे की भूमि हड़पने के लिए लड़ता आया है। भारतीय परंपरा में आक्रमण करके भूमि जीतने वाला राजा महान नहीं माना जाता, बल्कि प्रेम से, त्याग से, दान से, निर्माण से और सबसे अधिक बलिदान से हृदय जीतने वाला राजा महान होता है
1: जी।
2: इसलिए ये अवधारणा का अंतर हमें भारतीय परंपरा में, भारतीय युद्धों में देखने को मिलता है
1: जी।
2: यहाँ वह राजा महान होता है जो प्रजापालक हो, लोकहित में कार्य करता हो, राज्य की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे। ऐसा राजा, ऐसी रानी हमें प्रिय होती है।
1: बिल्कुल।
2: महानता इसमें नहीं है कि आप कितने साधन संपन्न थे
1: जी, हाँ।
2: आपके पास कितनी विशाल सेना थी या आप कितने बड़े राज्य के मालिक थे।
1: बिल्कुल।
2: महानता इसमें होती है कि जिस परिस्थिति में आप थे उसमें आपने क्या पराक्रम दिखाया
1: जी।
2: आप परिस्थिति का सामना करने की बजाय भाग खड़े हुए या अपनी प्रजा के सम्मान के लिए, राज्य की रक्षा के लिए आप प्राणों की आहुति देने में भी पीछे नहीं हटे
1: जी।
2: इन सभी प्रतिमानों पर हमारी लोकप्रिय गोंड रानी दुर्गावती खरी उतरती है।
1: बिल्कुल, पूरी तरह जी।
2: उनके पास जो भी साधन थे, संसाधन थे, उसके साथ ही वह विशाल मुगल सेना के आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार हो गईं। गढ़ा की सेना को सुगठित किया अपने वक्तव्य से सैनिकों को प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में गड़ा की सेना पूरे पराक्रम से इस युद्ध को लड़ी। गड़ा राज्य की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती और उनकी प्रजा सर्वस्व बलिदान करने के लिए सहर्ष तैयार थी।
1: पूजा जी, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि रानी दुर्गावती बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ी सी कुछ कूटनीति का इस्तेमाल किया और उन्होंने जो आगे बढ़ने की दिशा थी वो अपनी बदल दी थी, और उससे क्या आसफ खां की सेना चौंकी? आसफ खां चौंका या नहीं, क्या हुआ?
2: जैसा कि हम जानते हैं कि जब रानी की सेना अचानक जंगलों की ओर मुड़ गई
1: जी
2: नरई आते आते, तो आसफ खां को समझ नहीं आया कि सेना गई कहां।
1: जी
2: कुछ समय बाद जब उनको यह सूचना मिली कि रानी की सेना नरई की ओर बढ़ रही है, तब उसने जल्दी से अपने दो सेनापतियों नाजिर मोहम्मद और आक मोहम्मद को सेना का एक बड़ा भाग देकर आगे आगे जाने को कहा।
1: जी हाँ।
2: वे दोनों मुगल सेना को लेकर नरई की ओर आगे बढ़ने लगे। वहीं सेनापति आसफ खां और अधिक सूचनाएं जुटाता रहा और पीछे बची हुई जितनी सेना थी उसको साथ लेकर नरई की ओर रवाना हो गया।
1: जी।
2: रानी तक भी यह समाचार पहुंचा कि मुगल सेनापति आसफ खां की ओर से नाजिर मोहम्मद और आक मोहम्मद के नेतृत्व में मुगल सेना की टुकड़ियां घाटी में प्रवेश कर रही हैं।
1: जी।
2: अब जैसी की योजना थी, रानी दुर्गावती ने यह निश्चय किया कि जब मुगल सेना नरई घाटी में प्रवेश कर जाएगी
1: जी।
2: तब उसका सामना किया जाएगा, क्योंकि चारों ओर से यह घाटी पहाड़ों से
1: घिरी हुई थी और इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से गोंड सेना जानती
2: भी थी। एक और नर्मदा नदी थी, दूसरी तरफ गौर नदी
1: जी।
2: तो इस क्षेत्र की अच्छी जानकार थी गोंड सेना। तो ये निश्चित हो गया कि जब नरई की घाटी में सेना प्रवेश कर जाएगी आसफ खां की, उसके बाद ही कोई हमला किया जाएगा
1: जी।
2: तो गोंड सेना भी अपने शस्त्रों और अस्त्रों के साथ सुसज्जित थी
1: जी।
2: गोंड सेना में हाथी थे, घोड़े थे और पैदल सैनिक भी थे
1: जी।
2: ये सभी धनुषवाण, ढाल, तलवार, कृपाण, कटार, बर्छी, भाला, ये सब लेकर एकदम तैयार खड़े थे।
1: पूजा जी, युद्ध बिल्कुल लड़ा कब गया, क्या कोई तारीख नजर आती है?
2: बिल्कुल स्पष्ट आईने अकबरी में मेंशन है कि यह युद्ध 1564 ईस्वी में लड़ा गया और तारीख थी 23 जून और 24 जून।
1: अच्छा, यानी ये दो दिन की ये लड़ाई थी
2: ये लड़ाई थी। और आज से अगर हम इसको देखें तो 459 वर्ष इसको हो चुके हैं इस युद्ध को, फिर भी यह युद्ध हमारी यादों में आज भी है,
1: आज भी हमारी स्मृतियों में है और आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। रानी दुर्गावती के शौर्य की हम गाथा की बात कर रहे हैं। तो पूजा जी, हमारे श्रोता भी बहुत बेकरार हैं, बहुत उत्सुक हैं कि आगे युद्ध में क्या हुआ, बताइए।
2: जब रानी को यह पता चला कि आसफ खां की सेना की जो अग्रिम टुकड़ियां हैं वो नरई में प्रवेश करने ही वाली हैं, तो रानी दुर्गावती ने अपनी सेना घाटी के चारों ओर ऊंचे स्थान पर इस प्रकार खड़ी की कि शत्रु सेना के आते ही उस पर धावा बोला जा सके। जैसे ही मुगल सेना ने नरई घाटी में प्रवेश किया, रानी दुर्गावती के आदेश से गड़ा की सेना ने चारों ओर से उस पर हमला बोल दिया
1: जी।
2: दोनों ही सेना के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो गया। हाथी, घोड़े पर सवार दोनों ही सेनाओं के सैनिक युद्ध कर रहे थे। धनुष, बाण, तीर, तलवार और भालों की खनखनाहट से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा था।
1: अच्छा मैम, रानी दुर्गावती तो नेतृत्व कर ही रही थी सेना का, लेकिन जैसे कि होता है कि पैदल सेना, जैसे अश्व सेना, हाथी सेना, तो ये जो अलग अलग सेनाएं थी, ये जो अलग अलग युद्ध कौशल थे, तो और कौन कौन नेतृत्व करता थे रानी दुर्गावती की सेना में, उनके अगर यदि आप कुछ नाम हमें बता पाएं।
2: हमने जैसा कि पहले बात की थी एक बार कि जब रायसेन पर आक्रमण हुआ था उस समय रानी दुर्गावती जब विजय हुई थी
1: जी।
2: तो उनकी सेना में कुछ मियाना अफगानी जो थे वो भी शामिल हो गए थे
1: जी, जी।
2: और वो ऊंचे पदों तक भी पहुंचे, उनकी सेना में वो सेनापति भी बने
1: जी।
2: तो आपको कुछ नाम याद होंगे जैसे कि शम्स खां मियाना
1: जी, जी।
2: मुबारक बिलूच
1: जी।
2: तो ये जो थे ये अब भी इस नरई की युद्ध में भी शामिल थे
1: जी।
2: और सेनापति के तौर पर शामिल थे और इन्होंने भी बड़ी वीरता पूर्वक इस युद्ध में लड़ा। इसी तरह जैसा कि हमने पिछले अंकों में बात की थी कि जो गढ़ा के राजा थे दलपत शाह
1: जी,
2: जब उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई तो उनका जो पुत्र था वीर नारायण
1: जी,
2: वो बहुत छोटा था, 3-4 वर्ष का रहा होगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: अगला राजा जो घोषित किया गया था वो वीर नारायण को घोषित किया गया था और रानी ने उनकी संरक्षिका बनकर राजकाज संभाला था
1: जी। हाँ।
2: तो अब इस समय तक आते आते यानी कि 1564 ईस्वी तक आते आते वीर नारायण लगभग 17-18 वर्ष के रहे होंगे। रानी को शासन करते हुए 14 वर्ष हो चुके थे। तो वीर नारायण 17-18 वर्ष के नौजवान थे
1: जी।
2: बहुत अनुभवी तो नहीं रहे होंगे लेकिन हाँ साहसी थे। इस युद्ध में उनका भी वर्णन आता है, वो भी सेना का नेतृत्व कर रहे थे
1: जी।
2: तो ऐसे कुछ नाम हमको गढ़ा राज्य की सेना में मिलते हैं।
1: और पूजा जी, क्या रानी दुर्गावती की सेना में एक फौजदार थे जिनका जिक्र इतिहास में आता है, अर्जुन सिंह, उनकी क्या भूमिका थी इस युद्ध में? क्योंकि ये युद्ध उनके लिए भी काफी याद किया जाता है।
2: इस युद्ध का जो सबसे प्रमुख बलिदान सर्वप्रथम दिया वो थे अर्जुन सिंह बखीला। उनको अर्जुन सिंह बैस के नाम से भी जाना जाता है और अर्जुन सिंह बघेल के नाम से भी जाना जाता है।
1: अच्छा।
2: तो ये जो अर्जुन सिंह बखीला थे ये रानी की जो हाथी सेना थी उसका संचालन किया करते थे
1: जी।
2: फौजदार थे सेना में
1: जी।
2: और जब युद्ध चल रहा था तो उस समय इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब आसफ खां की सेना नरई में प्रवेश कर रही थी उसी समय अर्जुन सिंह बघेला ने पूरा नेतृत्व संभाल लिया और हाथी की सेना के द्वारा उन्होंने खूब अच्छा संचालन किया
1: जी।
2: आप जानते ही हैं कि मध्य युग में हाथियों का सेना में बहुत अधिक महत्व था। हाथी की जो ऊंचाई होती है काफी ज्यादा होती है और ये काफी बलशाली पशु भी है
1: जी।
2: और अपने जो प्रशिक्षक होता है उसकी बात भी बहुत अच्छे से मानता है, इसलिए सेना में हाथियों का खूब उपयोग होता था। और हाथी की सेना का जो संचालन करता था उसका भी बहुत ही महत्व था। तो इस पूरे युद्ध में अर्जुन सिंह बघेला का संचालन बहुत महत्व रखता था
1: जी।
2: तो जब आसफ खां की सेना नरई में प्रवेश कर गई तो सबसे पहला सामना अर्जुन सिंह बघेला ने ही किया और उन्होंने काफी वीरतापूर्वक युद्ध किया
1: जी।
2: लेकिन शाम होते होते अर्जुन सिंह बघेला वीरगति को प्राप्त हो गए और ये गढ़ा राज्य के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति थी।
1: निश्चित रूप से कि जिस सेना में हाथी सेना का बहुत, जिस युद्ध में बहुत ज़्यादा महत्व हो, उसके जो फौजदार हैं जो हाथी सेना का संचालन ही कर रहे थे वो बहादुरी से लड़े और वो वीरगति को प्राप्त हुए, तो ये एक बड़ा सेटबैक था, ये अपूर्णीय क्षति थी गोंड सेना के लिए। वाकई श्रोताओं, पूजा जी ने हमें एक बहुत अहम जानकारी ये भी अपने पिछले अंकों में दी है कि एक बहुत बड़ा कारण हाथी भी थे गोंड राज्य पर कब्जा करने के लिए, जो अन्य शासक थे वो क्यों ललायत रहते थे। कहते हैं कि उस समय उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हाथी पाए जाते थे। तो ये एक बहुत अच्छी और नई जानकारी निकल करके आई है, क्योंकि हम आज के मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ बहुत सारे हाथी आज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उस समय वो वन क्षेत्र कितना सघन रहा होगा और कितनी उपजाऊ वो भूमि रही होगी कि वहाँ पर हाथी जैसे बड़े शाकाहारी जीव के लिए परिस्थितियाँ कितनी अनुकूल रही होंगी। तो पूजा जी, जब अर्जुन सिंह बैस वीरगति को प्राप्त हुए तो युद्ध उसके बाद भी जारी रहा, क्या इस पूरी बात से गढ़ा सेना का जोश कुछ कम हुआ?
2: युद्ध अपने चरम पर था
1: जी।
2: दोनों ओर की सेनाएं जोर शोर से लड़ रही थीं। खूब तीर तलवार ढाले बर्छे सब चल रहे थे
1: जी।
2: कोई कमी नहीं थी। एक योद्धा के जाने से सेना रुक नहीं जाती,
1: बिल्कुल।
2: वो तो अपने बराबर जिस उद्देश्य को लेकर चली है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करती है
1: जी।
2: तो गढ़ा की सेना भी अपना पूरा दल बल के साथ में लगी हुई थी
1: जी।
2: युद्ध जारी था। अब धीरे धीरे दिन ढलने लगा
1: जी।
2: सूरज की रोशनी भी अब मध्यम हो चली थी
1: जी।
2: पर गढ़ा की सेना का जोश कम नहीं हुआ था
1: जी।
2: लगातार तीर भाले तलवार की आवाजें गूंज रही थी। दोनों ओर से कई सौ सैनिक मारे जा चुके थे
1: जी।
2: फिर भी युद्ध तो अपनी गति पर था
1: जी। तो क्या जब शाम हो चुकी थी तो शाम के बाद भी, सूरज ढलने के बाद भी तब युद्ध होता था?
2: नहीं, जैसा कि पुराने युद्धों में नियम है
1: जी
2: कि शाम ढलने के बाद युद्ध नहीं होगा
1: जी।
2: आपने कभी ध्यान दिया हो तो भारतीय परंपरा में युद्ध जैसा कोई शब्द ही नहीं है।
1: अच्छा।
2: वास्तव में युद्ध एक अधूरा शब्द है, पूरा शब्द है युद्ध कला।
1: अच्छा।
2: युद्ध को भी एक कला के तौर पर देखा जाता है और कला में हमेशा नियम होते हैं।
1: नियम होते हैं
2: और सभी को उसका पालन करना होता है।
1: क्या बात है।
2: इसलिए युद्ध में जो नियम रख दिए जाते हैं कि जैसे कि शाम को नहीं युद्ध लड़ना है, सूरज ढलने के बाद युद्ध नहीं होगा
1: जी।
2: सूरज ढलने के बाद आपस में कोई एक दूसरे को नहीं मारेगा, या युद्ध के समय किस किस प्रकार के नियमों का पालन करना होगा ये सब सुनिश्चित होता है। इसीलिए हम बहुत सारे युद्धों में ऐसा देखते हैं कि जब भारतीय युद्ध लड़ते थे तो वो नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे
1: जी।
2: और उसके कारण कई बार हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी पराजय भी हमको झेलनी पड़ी
1: जी।
2: लेकिन नियमों पर अडिग रहे और कभी भी उन्होंने नियमों को नहीं तोड़ा
1: जी।
2: तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जब शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा, तो अब युद्ध इस दिन का यानी 23 जून का
1: जी।
2: अब समाप्ति की ओर था
1: जी।
2: पर युद्ध बराबर तेजी से लड़ रहे थे, हालांकि काफी सारे सैनिक मारे जा चुके थे
1: जी।
2: गौंड सेनापति भी पूरी बहादुरी से अभी तक लड़ रहे थे
1: जी।
2: आखिर सूरज ढलने लगा और पहले गढ़ा की सेना ने मुगल सेना को पीछे की ओर धकेल दिया।
1: वाकई श्रोताओं, कितनी अद्भुत जानकारी है ये कि ये तो हमें पहली बार पता चला कि युद्ध कोई शब्द हमारे इतिहास में होता ही नहीं था। पूरा जो शब्द है वो है युद्ध कला। युद्ध को हम सब भारतीय कला के रूप में देखते थे और पूजा जी ने हमें कितनी अच्छी और वास्तविक जानकारी दी कि कला में हमेशा नियम होते हैं, कला नियमों में बंधी रहती है तभी वो कला कहलाती है। और भारतीयता में ये बात कही गई कि सूरज ढलने के बाद युद्ध कला जारी नहीं रहेगी, हथियार रख दिए जाएंगे और जो लोग थोड़ी देर पहले तक सूरज की किरणों में एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू होते थे वो वहाँ पर अपनी अपनी तलवारें अपने म्यान में डाल दिया करते थे। तो ये कितनी वाकई अद्भुत बात है युद्ध कला की।
2: तो इस दिन का युद्ध समाप्त होने को था, दोनों सेनाएं खूब जोर शोर से लड़ रही थी लेकिन इस तरफ देख रहे थे कि सूरज ढलने को था
1: जी।
2: और बस गढ़ा की सेना ने कमाल दिखा दिया, मुगल सेना को पीछे धकेल ही दिया।
1: वाह,
2: नरे की घाटी से आसफ खां की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया और इस तरह आक मोहम्मद और नाजिर मोहम्मद बची खुची सेना लेकर घाटी से वापस भाग गए और रानी दुर्गावती की विजय हुई।
1: तो पूजा जी, क्या जो विजय थी, जो 23 जून को जो विजय हुई, ये इसके पीछे रानी की कूटनीति का ही कमाल था, क्योंकि पहले तो दूसरी तरफ से आने वाली थी, फिर रास्ता बदला और उस तरफ से आई जहाँ के उस पूरे इलाके का उनको ज्ञान था। और जो ऊंची ऊंची जगहों पर आपने कहा कि हाथी जैसे जीव के ऊपर जब बैठ करके ऊपर से वार किया जाता है तो वो विरोधी के लिए मुश्किल होता है, तो फिर तो हाथी इनके पास भी थे। लेकिन रानी ने दक्षता विशेषज्ञता ये दिखाई कि वो घाटी में बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पर उन्होंने अपने सैनिकों को और शूरवीरों को भेजा, तो क्या इस कूटनीति से उनको लाभ मिला?
2: प्रकृति की जानकारी होना गोंड जनजाति की विशेषता है
1: जी।
2: और यही विशेषता इस पल पर उनके काम आई, जब उनके पास एक बहुत छोटी सेना थी, आकस्मिक आक्रमण हुआ था, तो ये सब जानकारियां उनके लिए तो जैसे सकारात्मक ही थी
1: जी।
2: और रानी ने अपने पराक्रम से, अपने संकल्प से ये कर दिखाया कि इतनी छोटी सेना होते हुए भी उन्होंने एक विशाल सेना के ऊपर विजय प्राप्त कर ली।
1: वाकई ये कमाल की बात है। और देखिए श्रोताओं, कितनी अद्भुत ये बात है कि यदि हमें अपने इलाकों के बारे में बहुत अच्छे से पता हो, ख़ास तौर से जब हम उस दौर की बात करें, राजाओं की बात करें, तो राजा सिर्फ अपने महल में बैठकर ही राजकाज नहीं किया करते थे, जब तक कि वो रानी दुर्गावती की तरह बाहर नहीं घूमते थे, अपने इलाके में नहीं जाते थे, तब तक उन्हें ये जानकारी हो ही नहीं सकती थी कि किस तरफ नदी है, कहाँ नदी का घाट है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ घाटी है और कहाँ आने जाने का रास्ता है। और यदि ये जानकारी रानी के पास नहीं होती तो निश्चित रूप से इस युद्ध में उनकी हार हो सकती थी, क्योंकि बहुत ही कम सेना थी रानी दुर्गावती के पास। अदम्य साहस और शौर्य तो था ही, लेकिन बहुत सटीक जानकारी थी युद्ध कौशल होने के साथ साथ। फिर वहां उन्होंने कूटनीति का भी प्रयोग किया, एक ओर मां नर्मदा का उन्हें आशीर्वाद मिला, दूसरी ओर घाटी थी, और फिर बाकी काम उन सभी लोगों की वीरता ने कर दिखाया। तो मैम, जैसे कि आपने ये कहा, आईना अकबरी में भी 23 जून और 24 जून की इस लड़ाई का उल्लेख मिलता है। 23 जून को तो विजय हो ही गई थी और क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है तो 24 जून की बात तो हम अपने अगले अंक में करेंगे, लेकिन क्या कोई और भी हमें साक्ष्य मिलता है जो इस युद्ध का उल्लेख करता हो?
2: जी हाँ, गढ़ा के गोंड राज्य के बारे में जानने के लिए एक बहुत प्रमाणिक स्रोत है, रामनगर मंडला में एक शिलालेख लगा है जिसमें गढ़ा के गोंड राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। इसी शिलालेख में रानी की विजय के बारे में भी एक श्लोक है।
1: वाह,
2: ये श्लोक संस्कृत में है और श्लोक इस प्रकार है कि अक्षय हीणनीय अमृत भूत लेन यातम रणे तेन महाभटेन बल विजित्या अपि समस्तम अस्य दुर्गावती भीम पराक्रमेण, यानी कि जिस महाभट्ट ने युद्ध में अक्षिणी सेना को अमृत की तरह भूमि पर प्रवाहित कर दिया और बल को जीतने के बाद भी उसकी दुर्गावती भीम पराक्रम से संपूर्ण शक्ति को नष्ट कर दिया, ऐसी दुर्गावती को प्रणाम।
1: वाह, तो मतलब और भी साक्ष्य मिलते हैं आईना एकबरी के अलावा भी। मध्य प्रदेश में ही मंडला में साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं, जाकर देख सकते हैं कि उस लड़ाई के बारे में ये स्पष्ट वहाँ पर अभिलेखित है, वहाँ पर उल्लेखित है कि रानी दुर्गावती ने मुगल सेना को पराजित किया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, डॉक्टर पूजा सक्सेना पुरातत्वविद हमारे साथ लगातार पिछले कुछ एपिसोड से बनी हुई हैं हमारे कार्यक्रम में और हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं गोंड राजवंश के बारे में, रानी दुर्गावती के बारे में। आगे भी ये कहानी जारी रहेगी, आगे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कुल इस युद्ध का 2 दिन का उल्लेख मिलता है। यदि तारीख की बात करें तो आज से 459 साल पहले की बात थी, 23 और 24 जून 1564 को ये युद्ध लड़ा गया। जैसे कि डॉक्टर सक्सेना ने हमें बताया कि पहले ही दिन रानी दुर्गावती ने मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और मुगल सेना वहां से भागने को मजबूर हो गई। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, ये पूजा जी से जानेंगे हम अपने अगले अंक में। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए देश के चैनल देश के लिए, रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर। इतिहास के पन्नों से

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: लीजिए सुनिए अगला देशभक्ति गीत, गीतकार सेहनलाल द्विवेदी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज फिर एक बार हाजिर हुए हम आपके बीच हमारा कार्यक्रम टेक गुरु लेकर, और टेक गुरु में आज बात करेंगे AI पर। हमेशा की तरह हम कोई ना कोई नया सब्जेक्ट, नया विषय आपके बीच में लेकर आते हैं, और आज हमारा प्रयास है आप तक ये पहुंचाने का कि AI क्या है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये है क्या, किसके लिए फ़ायदेमंद है, क्या नुकसान है, सुन तो सबने रख रखा है। अब इतना वृहद विषय है ये, इस पर प्रयास करेंगे कितना हम आप तक पहुंचा पाएं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर अनुग्रह नगाइच। आप मैनिट यानी MANIT मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अनुग्रह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे स्टूडियो में आके आपके साथ इस विषय पे अपने विचार प्रकट करने देने का मौका देने के लिए।
1: अनुग्रह जी, AI एक ऐसा विषय है जिस पर हम आपसे चाहेंगे रोशनी डालें, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कुछ आपके बारे में।
2: जैसे आज से लगभग 20-30 साल पहले कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी अपने देश में, आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुणगान गा रही है। मेरे ख्याल से कोई भी एक ऐसा क्षेत्र या विषय अछूता नहीं है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावों की चर्चा ना हो रही हो। साथ ही साथ वृहद स्तर पर राष्ट्रों के बीच, देशों के बीच भी AI वॉर ऐसी संबंधी चर्चा आ रही है। तो AI के बारे में मेरा जो रुझान था, मैं मूल रूप से वास्तुकला एवं नगर नियोजन, ये मेरा ग्रेजुएशन का विषय रहा है, और मैंने 9 से 13 के बीच जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में प्रथम दृष्टया मेरे को पता चला अपने संस्थान के कंप्यूटर साइंस के लोगों के द्वारा। तो उस समय मेरा परसेप्शन ये बना कि मशीनों के शायद संवाद, जो ऑटोनोमस मशीन्स बनाते हैं, रोबोट बनाते हैं जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है हॉलीवुड की, कि मशीनों के बीच के संवाद को शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बोलते होंगे, इससे हमारा कोई उत्ता सरोकार नहीं रहने वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के उन्हीं का विषय होगा। लेकिन धीरे धीरे इसकी पड़ताल करने पे मुझे जानकारी हुई कि ये एक ऐसा विषय है जिसकी उपयोगिता मेरे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में भी है
1: जी।
2: तब मैंने धीरे धीरे इस पर शोध करना चालू किया। तो मैंने जैसे बताया ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर अर्बन प्लानिंग से करके मैं IIT बॉम्बे गया, वहाँ पे मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, भू संचार प्रौद्योगिकी, इस पे अपना परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहाँ पे मेरा जो काम था वो यही था कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका मशीन लर्निंग नाम का एक सब डोमेन है, उसकी मदद से हम लोग जो अपने सेटेलाइट इमेजरी रहती है उसकी विवेचना करने का, उसके विश्लेषण करने में योगदान ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो यही वो समय था जब मैंने अपनी आंखों से AI का अपने विषय में इस्तेमाल देखा, और उस इस्तेमाल को, चूंकि मैं बाहरी था, कंप्यूटर साइंस से बाहर से आ रहा था, और मैंने देखा कि जब मेरे विषय में AI इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे जब मैं यहाँ मैनिट में पढ़ता था तो किसी शहर की शहरी विकास योजना बनती है, शहर का एक नक्शा बनता है, तो 5-6 लोग 2-3 दिन बैठ के एक एक बिल्डिंग को फुटप्रिंट बनाते जाते हैं। मतलब शहर की सेटेलाइट इमेजरी इसरो से आएगी, एक एक सड़क को डिजिटाइज करेंगे, एक एक बिल्डिंग फुटप्रिंट को डिजिटाइज करेंगे, एक एक फीचर, नदी, नाले, पेड़, 5-6 लोगों की टीम 1-2 दिन लेती थी किसी भी बड़े शहर के लिए। AI की मदद से ये जो मैनुअल काम था डिजिटाइजेशन का, वो इसरो स्वयं ही करके दे देता था। मतलब वो अपने आप इमेज में, इसको कंप्यूटर विजन तकनीक बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अंदर, अपने आप ही फीचर डेलिनेट हो गया। आप सोचिए 4-5 लोगों के 2-3 दिन की मेहनत एक क्षण में सॉल्व हो गई। उसके बाद से मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि भाई इस तरीके से ये सिर्फ 2 मशीनों के बीच में संवाद का जरिया नहीं है, ये हम लोग जो कंप्यूटिंग डिवाइस को जैसा प्रयोग में लेते आए हैं आज तक, उसको पूरी तरह से बदलने वाला है। और फिर मेरे को समझ में आया कि ये मेरे विषय में नहीं, लगभग हर विषय में जितने भी मैनुअल काम है उन सबको हटा के एक नए तरीके से काम करने की दृष्टि देगा। तो मेरे बैकग्राउंड से मैंने AI के साथ सामंजस्य बनाते हुए फिर इसी विषय को आगे ले जाने का सोचा, और फिर मेरी PhD जो संपन्न हुई वो पूरा मशीन लर्निंग बेस्ड वेटलैंड मॉनिटरिंग पे थी। और अभी मैं इसी विषय के बारे में और कैसे अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है उस पे भी लोगों में जागरूकता फैलाने का या उनको इसके प्रति सेंसिटाइज करने का प्रयास करता हूँ।
1: तो AI क्या कोई सॉफ्टवेयर है जो लोग इसका इस्तेमाल कर लें और फिर अपने काम में ले लें?
2: सर, ये आपका बिल्कुल बहुत सही पकड़ा है आपने। कंप्यूटर रेवोल्यूशन में हम लोग के सामने, नज़रों के सामने एक कंप्यूटिंग डिवाइस था, डेस्कटॉप कंप्यूटर था। आप देखे होंगे जब आप छोटे थे तो कंप्यूटर्स का जो यूज़ था वो बहुत लिमिटेड था, ऑफिसों में, पावर प्लांट्स में रहता था। आज इस स्टूडियो से लेके रेलवे स्टेशन के काउंटर तक, या अस्पताल के फ्रंट डेस्क तक, या किसी होटल के रिसेप्शन में लॉबी तक आप कंप्यूटर को हर जगह पाएंगे। कंप्यूटर एक प्रोडक्ट के कारण होने के कारण हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ कंप्यूटर के कितने उपयोग हो सकते हैं। एआई वस्तुतः सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर कहने का तात्पर्य यह है कि वो टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कंप्यूटर था, जैसे टीवी था, वो एक प्रोडक्ट था। लेकिन जैसे इंटरनेट है, दो कंप्यूटर्स के बीच में, चलिए इंटरनेट में मैं कहता हूं कि कुछ हार्डवेयर रहता है, वायर्स या वायरलेस, लेकिन एआई जो रहेगा वो कंप्यूटर के बैक एंड पे कंप्यूटर के प्रयोग को 10 गुना या 100 गुना या 1000 गुना और प्रभावी बनाएगा। उदाहरण मैंने आपको बताया कि 4-5 लोग जो मिलके एक शहर के खांचे को डिजिटाइज करते थे, वो एआई कुछ क्षणों में, कुछ सेकंडों में कर लेता है। या आपके पास मान लीजिए सेंसस डेटा है एक शहर का, लगभग 20 लाख लोगों के अलग अलग उनके सोशो इकोनॉमिक सर्वे किया, उसकी आप जानकारी है, उससे अगर आपको एनालाइज करना है किसी विशेष पहलू पे, तो आपको पहले उसमें कुछ प्रक्रियाएं लगती थी, कुछ समय लगता था, कुछ ऊर्जा लगती थी, अब वो आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो मूल रूप से ये बैकएंड में काम करने वाला एक टेंजिबल माध्यम मीडियम फॉर्म में ना होने के कारण इसको सॉफ्टवेयर तो सही नहीं होगा, लेकिन एक नॉन टेंजिबल रेवोल्यूशन है जो कंप्यूटर्स के बैकएंड पे हो रहा है, जो हमारे कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। चैट जीपीटी आपने बोला, अब चैट जीपीटी आने से पहले लेखकों के, कॉपी राइटर्स की बहुत अच्छी दुकान चलती थी, लेकिन एक ऐसा एप्लीकेशन जो हर मोबाइल में जाके आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट दे दे, आपको कॉपी राइट दे दे, तो ये बैकएंड में ही संचालित हो रहा है, वही एआई है।
1: एक बात जो अभी भी आपने कही कि 5 या 6 लोगों का फुटप्रिंट लगता था, 5-6 लोग उस पर 2-3 दिन 6 दिन काम करते थे, तो अब वो 5-6 लोग नहीं लग रहे, एक हाँ। बात दूसरी चीज उतना समय भी नहीं लग रहा,
2: बिल्कुल।
1: तो क्या माने एआई आने से लोगों के काम छिन गए?
2: देखिए कोई भी नई तकनीक जब आती है तो अपने साथ कुछ तो कार्य क्षेत्र में चेंज लाती है। कंप्यूटर्स के आने के पहले मुझे याद है जब मैं छोटा था तो टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट रहते थे, शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती थी, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग के कोर्सेज होते थे और इसमें कई लोग जाते थे। कंप्यूटर्स आने के बाद और कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन के बाद, जब कंप्यूटर्स का फॉर्म फैक्टर, जब स्मार्टफोन आ गए या अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते गए, इंटरनेट पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती गई, तो अब ये टाइपराइटर भी ऑब्सोलीट हो गया। DTP का जो एक व्यवसाय चलता था अपने भोपाल के जवाहर चौक में, आपको याद होगा कितने सारे DTP की जगह थी, या साइबर कैफे चलते थे। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपने साथ डिसरप्शन लाती है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सच है कि जो मैनुअल रिपीटेटिव काम है, जैसे नक्शे में फीचर्स को आइडेंटिफाई करना या रिसर्च करना, लाइब्रेरी में जाके अपने काम की चीज ढूंढ के लाना, तो जो मैनुअल रिपीटेटिव टास्क है वो काफी हद तक ऑटोमेट होने से मैन पावर काफी फ्री हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इसका एक पहलू को देख के ये बोलना कि इतने सारे लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो वो करेंगे क्या, ये थोड़ा बेमानी होगा। क्योंकि एक तरफ तो लोग फ्री हो रहे हैं रिपीटेटिव टास्क के, तो चैट जीपीटी उनको ये सुविधा भी देता है कि वो चाहे तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनने में सबसे बड़ी बाधा आती है टेक्नोलॉजी के, कैमरे की, आज सबके पास स्मार्टफोन है, विषय की और विषय के प्रस्तुतिकरण की। आज चैट जीपीटी में आप अपने एक स्क्रिप्ट डालिए या उससे बोल दीजिए कि भाई इस विषय के बारे में कोई जानकारी दे। हाँ, ये जरूर है कि वो जानकारी सही है कि नहीं है वो हमको देखना है, लेकिन अगर जानकारी आ गई तो उसे किस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म वीडियो में 30 सेकंड 60 सेकंड में क्लब डाउन करना, ये हर कोई कर सकता है अपने मोबाइल से। तो लोगों के पास जीविकोपार्जन के, स्किल डेवलपमेंट के नए आयाम भी खुलेंगे। तो स्किल रिफॉर्म करना, स्किल डेवलपमेंट करने की तो आवश्यकता रहेगी, लेकिन इस विषय में बहुत ज्यादा सोचना कि बेरोजगारी बढ़ाएगा, मेरे ख्याल से जॉब का नेचर बदल जाएगा और बदलते समय में लोगों को भी उस स्किल को रीडेवलप करना पड़ेगा, ये एआई एक आयाम लाने वाला है। मैं यहाँ पे जो प्रशासनिक अकेडमी है वहाँ पे भी इसी विषय पे ट्रेनिंग लेने जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि बदले समय में एआई के युग में सफलता पाने के लिए, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, प्रोफेशनल में हो, सबसे जरूरी रहेगा 3 चीज़ों करना, लर्न, अनलर्न और रीलर्न, यानी सीखना, फिर उसे भुलाना और पुनः सीखना। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से परिवर्तन लाएगी उसमें मुझे भी एज अ शिक्षक, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक डिटेल उदाहरण दूंगा IIT और के मेरे कुछ साथी शिक्षक हैं और हम लोग किस विषय में विवेचना करते हैं कि AI हमको रिप्लेस ना कर दे, हमें भी अपने फील्ड में रिलेवेंट बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा और रीलर्न करना पड़ेगा।
1: मैन पावर की भी आपने बात कही थी, तो इसे मैन पावर फ्री करना बेरोजगारी ही बढ़ाना तो है या नहीं?
2: देखिए, जो 5 दिन हम लोग नक्शा बनाने में लगाते थे, वो 5 दिन बचा के हम उसको नक्शों की अच्छे से विवेचना करने में लगा सकते हैं, एडवांस स्टडी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी शहर के सड़कों को डिजिटाइज करने में 2 दिन लगाता था, अब मेरे को सड़कें बन रही हैं। और इनफैक्ट मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला था अमृत के मास्टर प्लान प्रोजेक्ट में, मणिपुर के इम्फाल शहर के मास्टर प्लान प्रिपरेशन में, वहाँ पे हमें जो इसरो से शीट्स आई, सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजी, वो ऑलरेडी डिजिटाइज थी। हमको वो नक्शा ले जाके ग्राउंड ट्रूथिंग करनी थी, मतलब वो नक्शे ले जाके साइट में चेक करना था कि कौन से फीचर सही है कौन से गलत है। तो जो प्रक्रिया 6 महीने लेती थी वो अब मेरे ख्याल से 25 या 30 दिन में पूरी हो गई। हम लोग नक्शे लेके जाते थे, पेंसिल से मार्क करते थे और वही भेज के इसरो में अपडेट कर लेते थे। इस बचे हुए समय को हमने उस नगर का, इम्फाल की अच्छे नगरीय नियोजन, शहरी नियोजन कैसे किया जाए, कैसे हरियाली के बारे में क्वांटिफाइड स्टडी की जाए, उसमें लगाया। तो जहां समय बचता है वहां पे उसे दूसरे तरीके से उपयोग करने की सुविधा बढ़ जाती है। कई लोग जो AI विषय विशेषज्ञ है वो कहते हैं कि वर्क डेज लिमिटेड हो जाएंगे, मतलब जो 6 दिन या 7 दिन या 5 दिन काम होता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ये वर्क आवर्स कम हो जाएंगे, तो इस चीज को हम चैनलाइज कर सकते हैं दूसरे उसमें। हाँ, ऐसे लोग जो मैं कह सकता हूँ शैक्षणिक स्तर पे नीचे है, जो इतने स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए भी चीजों या तकनीक के प्रति उनकी पहुंच जो है वो और सुविधा युक्त हो जाएगी, तो अगर वो चाहे तो इसकी मदद से नए स्किल्स को सीख के अपने आप को मार्केट रिलेवेंट बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हर युग में हुआ है। ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन चूंकि AI इतनी तेजी से चेंज हो रही है तो बहुत आसानी से लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ देखा जाए तो लोगों के पास ये संभावना रहेगी कि अपनी स्किल को अनलर्न करके कैसे वो रीलर्न करके मार्केट रिलेवेंट बन सकते हैं।
1: अनुग्रह जी, एक बात और कि अभी AI को आए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं अगर माने, तो अभी सबसे ज्यादा उपयोग इसका कहाँ हो रहा है?
2: देखिए, मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोध विषय है ये 1960 से चल रहा था। 2-4 साल पहले इसलिए हुआ है क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई थी कि हम AI के एडवांटेजेस को रियल लाइफ में देख पाए। जैसे मैंने बताया कि मैं 2014 से 16 के बीच में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने AI के कुछ परिणाम देखे थे। 2022 के एंड में जब ChatGPT लॉन्च हुआ, वो पहला ऐसा स्टेज था कि एक सामान्य आदमी भी एक तरह से यूज कर सकता था AI को अपने दैनिक डेली डे टू डे टास्क के लिए। तो आज की डेट में मेरे ख्याल से पिछले 2-2.5 साल में ChatGPT हो गया है, Gemini हो गया है, Airtel के यूजर है तो Perplexity मिल जाता है फ्री में, इतने ज्यादा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल्स हैं, तो ऑलमोस्ट हर विषय में ही इनकी उपयोगिता हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रहा है। इसकी बजाय अगर प्रश्न ये हो कि कहाँ यूज नहीं हो रहा है, वो है जैसे मैं अपने IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस के बहुत वरिष्ठ सीनियर प्रोफेसर है उनके साथ बैठा था, IIT हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर के साथ बैठा था, और रुड़की के प्रोफेसर के साथ बैठा था, और भी मेरे साथी लोग थे। हम लोग एक वर्कशॉप में गए थे, वहां पे चर्चा हो रही थी, तो वहां पे कंप्यूटर साइंस कानपुर वाले कंप्यूटर साइंस के सीनियर प्रोफेसर ने बोला कि भाई ये AI हम लोग को भी रिप्लेस कर देगा। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने बोला यार IIT के कंप्यूटर साइंस के ही जिन्होंने मशीन लर्निंग पे पिछले 20-30 सालों से शोध किया हो, वो प्रोफेसर ऐसा बोला। मैंने पूछा प्रकाश जाली, तो बोला कि IIT में उनका एक स्टूडेंट है उनके विषय का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया करता है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाता है, मतलब ही इज वेरी शार्प, लेकिन वो क्लास अटेंड नहीं करता
1: जी।
2: तो जब उनसे पूछा गया, चूंकि उसमें मेंटरशिप होता है IIT में, डिप्रेशन में नहीं चले जाए, सुसाइड नहीं हो, तो संवाद अच्छा रहता है टीचर और स्टूडेंट का, तो उसको बुला के पूछा भाई आप पढ़ाई में अच्छे हो लेकिन क्लास नहीं आ रहे हो, कुछ सब कुछ कुशल मंगल है, क्या समस्या है? तो बच्चे ने बोला सर जो मैं कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो मैं AI की मदद से इंटरैक्टिव तरीके से, 1 घंटे का मान लीजिए क्लास है तो 15 मिनट में वो टॉपिक समझ जाता हूँ। और ऐसे टूल्स हैं, मैं भी अपने टीचिंग पेडागोजी में पढ़ाने के लिए कई ऐसे टूल्स यूज करता हूँ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, कैसे इसको सरल भाषा में समझाया जा सके। तो बोले सर 1 घंटे की क्लास का मटेरियल मैं 15 मिनट में कंज्यूम कर लेता हूँ और वो मेरे रिजल्ट में प्रोजेक्ट में दिख रहा है, बचे हुए 45 मिनट में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या ऐसा कोई नया स्किल सीखता हूँ जो मेरे जीविकोपार्जन में या प्लेसमेंट में मेरे काम आए, तो मेरे लिए क्लास आने का इंसेंटिव क्या है? अब ये प्रश्न देखिए, कॉलेज IITs में अगर एक उद्देश्य देखा जाए तो ठीक है, आप लोगों को पैकेज अच्छा मिले, इंस्टीट्यूट्स शुड गिव गुड प्लेसमेंट टू द स्टूडेंट्स, तो बच्चा कमाने लायक स्किल सीख रहा है, और जो कॉन्सेप्ट उसको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा, वो बोल रहा है कि वो 15 मिनट में सीख रहा है। तो प्रोफेसर ने यही कहा कि भाई AI तो हमको भी रिप्लेस कर देगा। अब इस बदलते दौर में हम ऐसा क्या करें कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बेहतर बच्चों को एंगेज करके रख पाए, ये चैलेंज है। ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए बताया कि टीचिंग एक ऐसा विषय है जहाँ पे अपन कोशिश करते हैं कि 1-on-1 बात करके बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दिया जाए, वहाँ पे भी AI घुस चुका है। और ये एक फील्ड का है, जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया में आजकल कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर्स की भरमार आ गई है। आपके आजू बाजू कई लोग ऐसे होंगे जो जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि ये लेखनी में उतने उत्कृष्ट हो सकते हैं, वो सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कैमरे में ऑटोमेटेड फिल्टर्स है। आप किसी व्यक्ति को निजी रूप से जानते हैं लेकिन आप उसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा यार इसने प्रोफेशनल फोटोशूट करवाया हो, उसके पास AI इनेबल्ड कैमरा या फिल्टर है। तो प्रश्न अगर ऐसा हो कि कौन से ऐसे विषय हैं जहाँ पे AI पेनिट्रेट नहीं करेगा,
1: वो DP में बड़ा भारी एक परिवर्तन दिख ही रहा है।
2: हाँ,
1: मतलब वो ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अपने बात ही शुरू करी थी विषय भी अपना AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कुल मिला के आर्टिफिशियल उसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है, वास्तविक कितना है ये एक अलग विषय है।
2: हाँ।
1: उस आर्टिफिशियल को कितना आप और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात आपने कही थी अभी 15 मिनट में कोई भी स्टूडेंट है वो अपने विषय को उससे बेहतर समझ लेता है। तो ये अंतर कैसा है, क्या मतलब वाकई जैसे कोई 10वीं का 12वीं का स्टूडेंट या कहीं का पढ़ने वाला इंजीनियरिंग का मेडिकल स्टूडेंट, ऐसा क्या है कि वो उसको उसमें 15 मिनट में उस चीज़ को समझ लेता है बनस्पत टीचर के समझने से?
2: देखिए, आप भी कभी कोशिश करके देखिएगा कोई ऐसा तकनीकी विषय जिसके बारे में आपको जानना है, जैसे AI मान लीजिए, आप ChatGPT खोल के उसमें लिखिएगा इमेजिन यू आर अ टीचर
1: जी,
2: एक्सप्लेन AI टू मी लाइक आई एम अ क्लास 10th स्टूडेंट
1: जी,
2: क्लास 5th स्टूडेंट करके देखिएगा उसका आउटपुट अलग रहेगा। आई एम अ स्टूडेंट परस्यूइंग लेट्स से BA इन पॉलिटिकल साइंस, तो आप पाएंगे कि वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है कोई भी ChatGPT हो या एंथ्रोपिक, वो हर बार आपके उस स्तर के हिसाब से आपको आंसर दे रहा है। इन सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का सर जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो बहुत विशाल है। मतलब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की काम करने की प्रक्रिया ऐसी रहती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड, वो ये नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं। वो ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत बड़े ट्रेनिंग डेटा सेट पर ट्रेन किया गया। इसको मैं अगर एक शब्दों में समझाना चाहूँ तो एक पूरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें होती हैं उन किताबों की 10 गुना किताबों से उनको ट्रेन किया गया। मतलब उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उन सारी किताबों को एक तरह से पढ़ा हुआ है और उस पूरे पढ़े हुए टेक्स्ट की मदद से वो अगला शब्द या अगला सेंटेंस प्रिडिक्ट करते हुए अपनी बात कहता है। तो उसका जो कॉर्पस ऑफ नॉलेज है वो बहुत ज्यादा विशाल है। मैं फिर दोहराऊंगा कि वो समझता नहीं है उन टेक्स्ट, उन लाइनों का, उन शब्दों का अर्थ नहीं समझता, लेकिन उसने चीजों के पैटर्न को समझा है, ग्रामर के पैटर्न को समझा है, सब्जेक्ट के पैटर्न को समझा है और उसी तर्ज पे वो अगले शब्द, अगले वाक्य, अगले पैराग्राफ रिक्रिएट कर रहा है। तो उसका कॉर्पस ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जितनी किताबें नहीं पढ़ पाएगा। आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑलरेडी उससे ज्यादा किताबें पढ़ चुके हैं। तो उस ब्रॉड कॉर्पस ऑफ नॉलेज से वो कैसे कंटेक्चुअलाइज करके अपने सवाल को जवाब दे पा रहा है वो उसे बहुत इफेक्टिव बनाता है टीचिंग के लिए। दूसरा होता है जैसे अपन टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात करते हैं, आमतौर पे देखा जाए तो जितने कम स्टूडेंट होंगे पर टीचर उतना बढ़िया टीचिंग पेडागोजी होगी। अब समस्या यही आती थी कि भाई ऐसा तो कोई परिस्थिति बनती नहीं है कि एक टीचर एक स्टूडेंट के ऊपर हो, एटलीस्ट 10 या 15 का तो बैच हो गई और जितने ज्यादा बच्चे होंगे टीचर के लिए एक बच्चे पे ध्यान देना उतना मुश्किल होगा। यहाँ पे आपके पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो हर बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से, उसके रुचि के विषयों के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से इंडिविजुअली उसको कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है
1: जी।
2: तो ये AI का एडवांटेज है। दैट बीइंग सेड, इतना सब करने के अलावा AI के बहुत भयंकर दुष्परिणाम भी है। यहाँ पे एक दुष्परिणाम जो मैं बताना चाहूंगा ताकि बैलेंस हो जाए कहानी, वो ये है कि चूंकि AI समझता नहीं है शब्दों को, वाक्यों को, वो स्टैटिस्टिकल पैटर्न पे अगला वर्ड, अगला लाइन, अगला पैराग्राफ प्रेडिक्ट कर रहा है, तो AI कई बार हेलुसिनेट भी कर लेता है या गलत जानकारी भी दे सकता है। तो ये चीज भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो AI बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ट्रेनिंग डेटा सेट में जो है वो अगर सही है तो AI सही प्रेडिक्ट करेगा, अगर उसमें ट्रेनिंग डेटा सेट में बायस है। जैसे आज से 2-3 साल पहले बड़ा अच्छा एक केस हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे बताया कि ChatGPT से अगर आप बोले इमेज जनरेट करने को कि एक व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा है, लेफ्ट हैंड से, तो वो क्रिएट नहीं कर सकता। लोगों ने बड़ा इसको हल्के पे लिया कि यार बताइए प्रधानमंत्री जी कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो सही था, ChatGPT से अगर आप प्रॉम्प्ट में लिखेंगे कि भैया एक ऐसे फोटो जनरेट करो जिसमें व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा, वो लेफ्ट हैंड से लिखने वाले व्यक्ति की फोटो बना ही नहीं सकता था। ये मैंने क्लास में बच्चों को करके दिखाया था, शायद अब वो बता सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जिन इमेजेस पे वो ट्रेन हुआ होगा या जिन कॉन्टेक्स्ट में वो ट्रेन हुआ होगा उसमें उसके पास कोई लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करते हुए व्यक्ति की इमेज उसने देखी या समझी नहीं होगी। तो उसके ट्रेनिंग डेटा सेट में चूंकि सब राइट हैंड से लिख रहे थे इसलिए वो भी राइट हैंड से क्रिएट कर रहा था। तो एक तो ट्रेनिंग डेटा सेट की उपलब्धता, उसके बायसनेस, और दूसरा वो जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो सही है कि नहीं, ये देखना आवश्यक है। अन्यथा जो एडवांटेज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी तरह उल्टा जा सकते हैं।
1: डॉक्टर अनुग्रह नगाइच हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में, उन्होंने इतना तफसील से इस विषय को बताया हमें। कार्यक्रम टेक गुरु में आज AI पर जो हमने बातचीत की उसमें इस भाग में हमने जाना कि आखिर AI है क्या, AI कहां कहां अपना असर डालने वाला है, और ऐसे कई सारे प्रश्न। डॉक्टर अनुग्रह नगाइच का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: ये चर्चा जारी रहेगी आगे भी। तो ये था कार्यक्रम टेक गुरु जिसमें आज हमने बात की AI पर। ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच में जो पहुंचाया इसके मार्गदर्शक थे संतोष कुमार वर्मा जी, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा हमारे साथ सतीश पाथम का, और मैं हूं आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आपका अपना 90.8 MHz रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह।
2: मैं हूं आपका दोस्त दीपक नेमा।
1: श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वाधीनता संग्राम सेनानी, समाज सेवी और गांधीवादी विचारक लोकनायक ओमियो कुमार दास की। श्रोताओं, आज हम उस महान आत्मा को जानने समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। आज हम स्मरण कर रहे हैं लोकनायक ओमियो कुमार दास जी का, एक ऐसे महापुरुष जो केवल असम के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के गौरव हैं।
2: लोकनायक ओमियो कुमार दास जी का जीवन साधारण नहीं बल्कि असाधारण त्याग, तपस्या और समर्पण की एक अद्भुत गाथा है। वे एक ऐसे युग के साक्षी और निर्माता थे जब भारत की आजादी के लिए हर घर से दीप जल रहे थे, हर सीने में देशभक्ति की ज्वाला धधक रही थी। उस महान स्वतंत्रता संग्राम में ओमियो कुमार दास जी ने अग्रणी भूमिका निभाई। आज के इस कार्यक्रम में हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे, उनके योगदान को समझेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
1: श्रोताओं, ओमियो कुमार दास, जिन्हें लोकनायक की उपाधि से विभूषित किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी, समाज सेवी, गांधीवादी विचारक, शिक्षाविद और असम के प्रमुख राजनेता थे। उनका जीवन त्याग, समर्पण और राष्ट्र सेवा का एक अनुपम उदाहरण है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया।
2: ओमियो कुमार दास का जन्म 21 मई 1895 को असम के नागांव जिले में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कारों से युक्त किया। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना और समाज सेवा की प्रवृत्ति विद्यमान थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तेजपुर हाई स्कूल में हुई। तेजपुर, जो असम का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है, वहां की शैक्षणिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूल के दिनों से ही वे मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते थे।
1: प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद ओमियो कुमार दास ने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में दाखिला लिया। कॉटन कॉलेज असम का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान था, जहां उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त हुई। यहां उनका संपर्क विभिन्न राष्ट्रवादी विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से हुआ। बाद में उन्होंने कलकत्ता के सिटी कॉलेज में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखी। कलकत्ता उस समय भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। यहां उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों को करीब से देखने का अवसर मिला। इन महान नेताओं के विचारों और कार्यों ने युवा ओमियो कुमार दास को गहराई से प्रभावित किया।
2: कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। वे छात्र संगठनों से जुड़े और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने लगे। ये उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। जब 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब ओमियो कुमार दास ने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वे गांधी जी के आदर्शों, सत्य, अहिंसा और स्वराज से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने असम में असहयोग आंदोलन को संगठित करने में अग्रणी भूमिका निभाई।
1: युवा ओमियो कुमार दास ने असम के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर छात्रों और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। उनके प्रभावशाली भाषणों और निष्ठा ने कई युवाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ओमियो कुमार दास इसके असम में प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन किया और नमक कानून तोड़ने के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की।
2: इस आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल की यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन जेल की कठोर परिस्थितियां भी उनके संकल्प को नहीं तोड़ सकी। जेल में रहते हुए भी वे अन्य कैदियों को प्रेरित करते रहे और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनकी निष्ठा बनाए रखते रहे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा निर्णायक मोड़ था। ओमियो कुमार दास ने असम में इस आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तो ओमियो कुमार दास ने इसे पूरी तरह से अपना लिया।
1: इस आंदोलन के दौरान गोपीनाथ बारडोली और सिद्धिनाथ शर्मा जैसे नेताओं के साथ ओमियो कुमार दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें असम के विभिन्न जेलों में कैद किया गया। उनकी गिरफ्तारी ने आंदोलन को और अधिक तीव्र कर दिया। पूरे असम में लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ओमियो कुमार दास को अनेक बार कारावास में डाला गया। उन्होंने कुल मिलाकर कई वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। उनकी अटूट देशभक्ति और निरंतर संघर्ष ने उन्हें असम के सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बना दिया।
2: ओमियो कुमार दास की योग्यता और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 1937 में असम विधानसभा के लिए चुना गया। ये उनके राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। 1945 में उन्हें भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी चुना गया, जहां उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में योगदान दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद ओमियो कुमार दास ने अपने राजनीतिक कार्य को जारी रखा। उन्होंने ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार 1951, 1957 और 1962 में चुनाव जीता। इन वर्षों के दौरान उन्होंने असम सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर कार्य किया।
1: जब ओमियो कुमार दास असम के श्रम मंत्री थे, तब उन्होंने चाय बागान मजदूरों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। असम में चाय उद्योग एक प्रमुख आर्थिक स्तंभ था, लेकिन चाय बागान के मजदूर अत्यंत शोषणकारी परिस्थितियों में काम करते थे। ओमियो कुमार दास ने चाय बागान मजदूरों के लिए भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड की स्थापना की। ये पहल एशिया में अपनी तरह की पहली योजनाओं में से एक थी। इस योजना ने हजारों मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की और उनके जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: उन्होंने मजदूर वर्ग को संगठित करने और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में भाग लिया, जहां उन्होंने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की वकालत की। शिक्षा मंत्री के रूप में ओमियो कुमार दास ने असम में बुनियादी शिक्षा योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये योजना महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा को व्यवहारिक और उपयोगी बनाना था।
1: उन्होंने असम में शिक्षा के प्रसार के लिए कई स्कूल और शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी साधन है। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया। ओमियो कुमार दास ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इस दौरान उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि असम के सभी क्षेत्रों में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उचित आपूर्ति हो। उन्होंने विशेष रूप से गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
2: ओमियो कुमार दास केवल एक राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उन्होंने असमिया भाषा में कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। ओमियो कुमार दास की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उसका असमिया भाषा में अनुवाद था। उन्होंने इसे मोर सत्य अनेश्वर काहिनी शीर्षक से अनुवादित किया।
1: ये अनुवाद असम के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। क्योंकि इसने उन्हें गांधी जी के जीवन और विचारों को उनकी अपनी भाषा में समझने का अवसर दिया। इस अनुवाद ने असम में गांधीवादी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओमियो कुमार दास ने महात्मा गांधी पर कई अन्य पुस्तकें भी लिखीं। गांधी जीर जीवनी अर्थात गांधी जी की जीवनी, ये पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। महात्मा गांधी आमी किदोर बुजिलू अर्थात महात्मा गांधी को मैंने कैसे समझा, इस पुस्तक में उन्होंने गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों की अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है।
2: असुमोत महात्मा, असम में महात्मा, ये पुस्तक महात्मा गांधी की असम यात्रा और असम में उनके प्रभाव पर केंद्रित है। इन पुस्तकों ने असम के लोगों को गांधीवादी विचारधारा से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओमियो कुमार दास की लेखनी सरल और प्रभावी थी, जो आम लोगों तक आसानी से पहुंच सकती थी। ओमियो कुमार दास का जीवन केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, वे एक समर्पित समाज सेवी थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में लगा दिया।
1: ओमियो कुमार दास कई गांधीवादी और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे। ओमियो कुमार दास ने इस संगठन के माध्यम से असम में अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष किया। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ से भी वो जुड़े थे। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए कार्य किया। इसके साथ ही भारत सेवक समाज से भी उनका संबंध था। ये संगठन समाज सेवा के लिए समर्पित था और ओमियो कुमार दास इसके सक्रिय सदस्य थे।
2: गांधी स्मारक निधि, ये संगठन महात्मा गांधी की स्मृति में स्थापित किया गया था। ओमियो कुमार दास इससे सक्रिय रूप से जुड़े थे। कस्तूरबा स्मारक निधि, ये संगठन महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करता था। असम सेवा समिति, ये असम का एक प्रमुख समाज सेवी संगठन था जिसके संस्थापकों में ओमियो कुमार दास भी थे। ओमियो कुमार दास ने असम में नशा विरोधी अभियान चलाया। उस समय असम में विशेष रूप से चाय बागानों में शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन एक बड़ी समस्या था। उन्होंने लोगों को नशे की बुराइयों के बारे में जागरूक किया और नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम चलाए।
1: ओमियो कुमार दास ने कुष्ठ रोग और तपेदिक से पीड़ित रोगियों के पुनर्वास के लिए भी कार्य। उस समय ये रोग एक बड़ी सामाजिक समस्या थे और इन रोगों से पीड़ित लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ओमियो कुमार दास ने इन रोगियों के लिए उपचार और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया। ओमियो कुमार दास एक सरल और विनम्र व्यक्ति थे। उनका जीवन गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित था। वे सत्य और अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें लोक नायक कहकर पुकारा करते थे।
2: उनमें अद्भुत संगठन क्षमता थी। वे विभिन्न वर्गों के लोगों को एक साथ लाने और उन्हें एक साझा उद्देश्य के लिए संगठित करने में सक्षम थे। उनकी वाणी में जादू था। जब वे सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते थे। ओमियो कुमार दास एक निडर व्यक्ति थे। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने कई बार जेल की यातनाएं सही, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका नेवर से डाई, कभी हार ना मानने वाला दृष्टिकोण उनके चरित्र का एक प्रमुख पहलू था।
1: श्रोताओं, वो एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति भी थे। उनकी पत्नी पुष्पलता दास भी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका थी। दोनों ने मिलकर समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के कार्य किए। उनकी बेटी ने भी पिता के आदर्शों का अनुसरण किया। ओमियो कुमार दास के समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के महान योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1963 में पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया था। ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान उन्हें उनके जीवन भर के समर्पित कार्य के लिए दिया गया था।
2: भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ने 15 मई 1998 को ओमियो कुमार दास के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ये सम्मान उनके महान योगदान की स्वीकृति थी। 1995 में ओमियो कुमार दास की जन्म शताब्दी के अवसर पर गुवाहाटी में ओमियो कुमार दास सामाजिक परिवर्तन और विकास संस्थान की स्थापना की गई। ये संस्थान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है। ये संस्थान सामाजिक शोध और विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। ढेकियाजुली में एक कॉलेज को लोकनायक ओमियो कुमार दास कॉलेज के नाम से नामित किया गया है। ये कॉलेज उनकी स्मृति में स्थापित किया गया है और असम में युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करता है।
1: ओमियो कुमार दास का निधन 23 जनवरी सन 1975 को हुआ। उस समय उनकी आयु लगभग 79-80 वर्ष थी। उनके निधन से असम और पूरे भारत ने एक महान नेता और समाज सेवी को खो दिया। उनकी मृत्यु पर असम में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन के समय उनकी पत्नी पुष्पलता दास और उनकी बेटी जीवित थीं। पुष्पलता दास स्वयं एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और संसद सदस्य थीं। उनका निधन सन 2003 में हुआ।
2: ओमियो कुमार दास की विरासत आज भी असम में जीवित है। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। चाय बागान मजदूरों के लिए उनके द्वारा स्थापित भविष्य निधि योजना आज भी लाखों मजदूरों को लाभान्वित कर रही है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा किया गया गांधी की आत्मकथा का अनुवाद आज भी असम में व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। ये पुस्तकें नई पीढ़ियों को गांधी जी के विचारों और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से परिचित कराती हैं।
1: ओमियो कुमार दास ने असम के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने असम में शिक्षा के प्रसार के लिए कई संस्थान स्थापित किए और ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक जागरूकता फैलाने का कार्य किया। असम की अर्थव्यवस्था में चाय उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उन्होंने चाय बागान मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अथक प्रयास किए। उनकी पहल से चाय बागान मजदूरों को न केवल बेहतर वेतन मिला बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त हुई।
2: उन्होंने असम की बहु सांस्कृतिक और बहुभाषी विरासत को समझा और सभी समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने चाय बागान मजदूरों और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए। ओमियो कुमार दास ने असम के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए नीतियां बनाई। उन्होंने कृषि सहकारी समितियों की स्थापना में सहायता की जिससे किसानों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि स्वस्थ समाज ही विकसित समाज हो सकता है।
1: ओमियो कुमार दास के जीवन का केंद्र गांधीवादी विचारधारा थी। उन्होंने महात्मा गांधी के 3 प्रमुख सिद्धांतों सत्य, अहिंसा और सर्वोदय को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया। सत्य उनके जीवन का आधार था। वे हमेशा सत्य बोलते थे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों। उन्होंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा उनके चरित्र की पहचान थी।
2: ओमियो कुमार दास अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी उन्होंने हमेशा अहिंसक तरीकों को अपनाया। वे मानते थे कि हिंसा से कभी भी स्थायी समाधान नहीं मिल सकता। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि अहिंसा के माध्यम से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोदय यानी सभी का उत्थान उनके जीवन का मूल मंत्र था। वे किसी एक वर्ग या समुदाय के विकास में विश्वास नहीं करते थे। उनका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर सबसे पिछड़े और वंचित वर्गों का उत्थान करना था। उन्होंने अपने जीवन में इस आदर्श को साकार करने का प्रयास किया।
1: गांधी जी की तरह ओमियो कुमार दास भी खादी और स्वदेशी वस्तुओं के प्रबल समर्थक थे। वे हमेशा खादी के वस्त्र पहनते थे और लोगों को भी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने असम में खादी उद्योग के विकास के लिए भी प्रयास किया। ओमियो कुमार दास महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे। उनकी पत्नी पुष्पलता दास स्वयं एक सशक्त महिला थीं, जो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। ओमियो कुमार दास ने महिलाओं को शिक्षा और समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
2: उन्होंने कस्तूरबा स्मारक निधि के माध्यम से महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी और लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित करने में सहायता की। ओमियो कुमार दास का मानना था कि समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। उन्होंने अपने जीवन में इस विचार को व्यवहारिक रूप दिया।
1: ओमियो कुमार दास युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। ओमियो कुमार दास ने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचा। उनका जीवन निस्वार्थ सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
2: ओमियो कुमार दास अपने सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहे, चाहे जेल की यातनाएं सहनी पड़ी या अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ओमियो कुमार दास शिक्षा को समाज के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के प्रसार के अथक प्रयास किए। युवाओं को उनसे ये शिक्षा मिलती है कि शिक्षा ही जीवन में सफलता की कुंजी है।
1: ओमियो कुमार दास ने सभी वर्गों और समुदायों के बीच समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। युवाओं को उनसे सामाजिक सद्भाव और एकता का पाठ मिलता है। ओमियो कुमार दास के जीवन में अनेक संघर्ष और चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें ब्रिटिश सरकार के कठोर दमन का सामना करना पड़ा। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल में कठोर यातनाएं भी दी गईं। लेकिन इन यातनाओं ने उनके संकल्प को और अधिक मजबूत किया।
2: स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के कारण ओमियो कुमार दास को आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी आर्थिक लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ओमियो कुमार दास ने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। उस समय समाज में ये प्रथाएं गहराई से जड़े जमाई हुई थीं। उन्हें इन रूढ़ियों को तोड़ने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने प्रयासों में सफल रहे।
1: ओमियो कुमार दास के समकालीन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई महान नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध थे। महात्मा गांधी उनके आदर्श और प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से भी भेंट की और उनके मार्गदर्शन में काम किया। गांधी जी भी ओमियो कुमार दास के समर्पण और कार्य से प्रभावित थे। स्वतंत्र भारत में ओमियो कुमार दास का संबंध कई अन्य राष्ट्रीय नेताओं से भी था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन नेताओं के साथ काम किया।
2: असम के अन्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों जैसे गोपीनाथ बारडोली, तरुण राम फूकन और अन्य के साथ भी उनके घनिष्ठ संबंध थे। इन सभी नेताओं ने मिलकर असम में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाया। लोकनायक ओमियो कुमार दास का जीवन त्याग, तपस्या और समर्पण की अद्भुत गाथा है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता, कुशल प्रशासक, प्रभावी लेखक और समर्पित समाज सेवी भी थे।
1: उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों को केवल सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि व्यवहार में अपनाया और इस प्रकार एक आदर्श जीवन जिया। आज भी असम और पूरे भारत में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। वे सच्चे अर्थों में लोकनायक थे। लोकनायक अर्थात जनता के नायक, जिन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा में समर्पित कर दिया।
2: ओमियो कुमार दास की जीवनी युवा पीढ़ी के लिए एक महान प्रेरणा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही जीवन को सार्थक बनाता है। उनकी स्मृति हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती रहेगी। लोकनायक ओमियो कुमार दास जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता त्याग में है, सेवा में है, निस्वार्थ भाव में है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से पूरे समाज को बदल सकता है। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय के मार्ग पर चलकर ही मानवता का वास्तविक विकास संभव है। दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम भारत विभूति में हमने ढेर सारी बातें की लोक नायक ओमियो कुमार दास जी के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा, और मैं था आपका दोस्त दीपक निमा,
1: और मैं थी आपके साथ सुनीता सिंह।
2: तो दोस्तों, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन के अंतरंग सभागार में, जहां बाबा कारंत स्मृति समारोह प्रणति का समापन हुआ 21 सितंबर को।

19 से 21 सितंबर तक आयोजित इस समारोह में व्याख्यान, रंग संगीत और नाट्य प्रस्तुतियां हुईं। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए भारत भवन के अंतरंग सभागार में। यह नाटक मारे गए गुलफाम के संपादित अंश। इस प्रस्तुति की परिकल्पना और निर्देशन किया संजय गर्ग ने।

0: पिछले 30 साल से बैलगाड़ी हाँक रहे हैं।
1: फारबिसगंज का हर व्यापारी हमें पक्का गाड़ी मान मानता है। चाहे कोई हमें 100 रुपया भी देना तो अपनी गाड़ी में बांस की लगती ना करे।

0: तो गांव में उस दिन महतो की भौजी क्या कह रही थी? रात के वक्त सुनसान रास्ते पर कल महक खुशबू आए तो समझो वहां भूत चुड़ैल का प्रकोप होता है। हीरा सूरत तो देखी नहीं, बस बिठा ली सवारी। अरे कहीं हमने डाकी पिसाची तो नहीं बिठा ली अपनी गाड़ी आगे? तो कोसपुर तक बस मैदान ही मैदान, बस्ती नहीं। हे बजरंगबली महाराज रक्षा करो, सवारों भैया का प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान सही सलामत मेला पहुंच जाए। कहीं डाकी पिसाची हमारे कानून उसका ना करते।
1: हीरा है।
0: अच्छा।
1: हाँ। अरे जब गांव में भौजी कुआं से हमें पुकारती है ना, तो ये हीरा जला आता है।
0: कुआं से ये पानी निकाल कर देगा। मैं बिट्टी कहीं का और एक नाम है हमारा,
1: एक और ना?
0: हाँ, हीरा मोती का नौकर।
1: हीरा मोती का नौकर?
0: हाँ, सुबह से शाम तक इनकी सेवा करो तब जाके साहब लोग गाड़ी खींचते हैं। प्यार किया तो गाड़ी वाली धरी की धरी रह जाएगी और हीरा मन सब कुछ छोड़ सकता है पर गाड़ी वाली नहीं। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है?

गैरों को हांकने के लिए कुछ तकदीर तो चाहिए। पुकारा करते करते चीत मठर हो गई है। कभी कभी महाराज के दोहों को और कभी विदेशी अनाज के गीतों को अपनी चाल

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए एक ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं, तप की शांति से दमकती हैं। यहां केवल कविताएं सुनाई नहीं जाती, वे समय के बंद कपाट खोलकर मनुष्य को उसके भीतर छिपे सत्य से मिला देती हैं। श्रोताओं, काव्य गुंजन की इस यात्रा में आपका फिर स्वागत है। महाकाव्य केवल घटनाओं का संग्रह नहीं होते, वे मनुष्य के भीतर छिपे संघर्षों का दर्पण होते हैं। पिछले भाग में हमने सुना उस क्षण को जहां वर्षों से मौन एक मां का हृदय बोल उठा और एक पुत्र ने अपने जीवन की सबसे कठिन पुकार के सामने भी अपने सिद्धांतों का हाथ नहीं छोड़ा। कर्ण और कुंती का यह मिलन मानो समय के पन्नों पर लिखा वो अध्याय है जिसमें आंसुओं की स्याही से कर्तव्य और करुणा की कहानी लिखी गई है। रश्मि रथी के पंचम सर्ग के अंतिम भाग में दिनकर जी ने कविता को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है वो पूरे महाकाव्य का सबसे भावुक और दार्शनिक बिंदु है।
2: भाग 5 और 6 में कर्ण थोड़ा भावुक होता है। अपनी माँ के सामने अपने दुख और समाज के तानों को लेकर परेशान और क्रोधित है, किंतु भाग 7 में आते आते उसकी भावुकता एक वज्र जैसी दृढ़ता में बदल जाती है। वह कुंती से कहता है कि अब देर हो चुकी है, भाग्य का पहिया घूम चुका है। यहाँ कर्ण ये जानते हुए भी कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण हैं और उसकी हार निश्चित है, अपने विनाश को गले लगाने के लिए तैयार हो जाता है। ये व्यवहार कर्ण को एक साधारण व्यक्ति से उठाकर महामानव बना देता है, जो जीत के लिए नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों के लिए मरता है। इस भाग की सबसे खास बात वह अद्भुत गणित है जो कर्ण कुंती के सामने रखता है। जब कुंती रोने लगती है तो कर्ण उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहता है कि युद्ध का परिणाम चाहे जो हो, कुंती का आंचल कभी खाली नहीं होगा। वह अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को अभयदान देगा। वह कहता है या तो अर्जुन मरेगा या मैं, दोनों ही हाल में तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अगर अर्जुन मरा तो मैं तुम्हारा पुत्र बनकर पांडवों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। एक माँ को सांत्वना देने का इससे भव्य, वीरोचित और मार्मिक तरीका पूरी दुनिया के साहित्य में कहीं नहीं मिलता। यहाँ कर्ण अपनी मौत का सौदा इतनी सहजता से करता है जैसे कोई खिलौना दे रहा हो। श्रोताओं, पंचम सर्ग के अंतिम भाग 7 के काव्य पाठ के साथ हम चर्चा भी जरूर करेंगे, किंतु रश्मि रथी के पंचम सर्ग के अंतिम भाव सागर में डूबने से पहले आइए कुछ क्षण उस महाकाव्य के जनक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को भी स्मरण कर ले। किसी भी महान कृति को समझने के लिए उसके रचनाकार के व्यक्तित्व को जानना उतना ही आवश्यक होता है जितना किसी विशाल वृक्ष को समझने के लिए उसकी जड़ों को पहचानना।
1: हिंदी साहित्य में दिनकर जी का स्थान कितना ऊंचा है, इसका अनुमान उनकी अमर कृतियों, संस्कृति के 4 अध्याय और परशुराम की प्रतीक्षा का अध्ययन मात्र कर लेने से ही लगाया जा सकता है। वे केवल ओज के कवि नहीं थे बल्कि राष्ट्र की आत्मा, भारतीय संस्कृति के प्रहरी और आधुनिक युग के सांस्कृतिक जागरण के महाकवि थे। कल्पना कीजिए, गंगा की शांत धारा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव सिमरिया, जहां भोर की पहली किरण के साथ मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, खेतों पर ओस की बूंदें मोतियों सी चमक उठती हैं, आम की अमराइयों से कोयल की मधुर कूक सुनाई देती है और लोक गीतों की स्वर लहरियां गांव की गलियों में जीवन का संगीत भर देती हैं। मिट्टी की सौंधी खुशबू, किसानों का श्रम और भारतीय संस्कृति की सहज आत्मा, यही उस गांव की पहचान थी। इसी पावन धरती पर सन 1908 में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसकी लेखनी आगे चलकर पूरे राष्ट्र की आवाज बन गई। वही बालक थे रामधारी सिंह दिनकर। जीवन ने उन्हें वैभव नहीं संघर्ष दिया, सुविधाएं नहीं चुनौतियां दी, लेकिन इन्हीं संघर्षों की भट्टी में तपकर उनका व्यक्तित्व कुंदन बना। कई कई मील पैदल चलकर शिक्षा प्राप्त करना, अभावों के बीच भी ज्ञान की लौ जलाए रखना और अपने अथक परिश्रम से शिखर तक पहुंचना, यही उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनी।
2: अपनी विलक्षण प्रतिभा, अथक परिश्रम और अद्भुत साहित्य साधना के बल पर दिनकर जी निरंतर नई नई ऊंचाइयां छूते गए। वे बिहार प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 13वें अधिवेशन के कवि सम्मेलन के सभापति भी बने और आगे चलकर पूरे देश ने उन्हें प्रेम और सम्मान के साथ राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया। निश्चय ही दिनकर जी का जीवन अपने आप में एक प्रेरक गाथा है, परंतु आज हमारा उद्देश्य उनके संपूर्ण जीवन का वर्णन करना नहीं बल्कि उस महाकवि को नमन करना है जिसकी लेखनी ने रश्मिरथी जैसा कालजयी महाकाव्य रचकर कर्ण के व्यक्तित्व को अमर कर दिया।
1: दोस्तों, मुझे रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी कविता सबसे प्रिय लगती है और मुझे समर शेष भी काफी पसंद है। दरअसल जैसा उनका व्यक्तित्व रहा, उनकी कविताएं भी वैसी ही वीर रस से ओतप्रोत हैं जो खून में उबाल ले आती हैं। इसलिए वे युवाओं के लिए हमेशा ही प्रासंगिक कवि रहे हैं। आगे हम उन पर बीच बीच में उनके साहित्यिक अवदान पर कभी लेखनी पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अभी आपको सुनाते हैं दिनकर जी द्वारा रचित मेरी पसंदीदा कविता समर शेष है की कुछ पंक्तियां। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकश का कष्ट खोलो, किसने कहा युद्ध की बेला चली गई, शांति से बोलो। किसने कहा और मतभेद हो हृदय वही के सर से, भरो भवन का अंग कुमकुम से, कुसुम से, केसर से। कुमकुम लिपूं किसको, सुनाऊं किसको कोमल गान, तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। दोस्तों, जिसने शब्दों को केवल कविता नहीं बल्कि धधकते हुए अंगारे बना दिया, दिनकर जी ने जब रश्मिरथी की रचना की तो उन्होंने केवल महाभारत की कथा को नए पन्नों पर नहीं उतारा बल्कि इतिहास के हाशिए पर धकेल दिए गए एक चरित्र को उठाकर उसे आत्मगौरव, समता और संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। इस महाकाव्य की बुनावट में जहां एक ओर वीर रस का प्रचंड नाद है, वहीं दूसरी ओर वात्सल्य, करुणा और दर्शन की एक अंतःसलिला नदी भी बहती है। ये काव्य चीख चीख कर स्थापित व्यवस्थाओं से सवाल करता है कि कुल, जाति और वंश के संकीर्ण पैमानों से किसी मनुष्य की योग्यता को कैसे आंका जा सकता है। दिनकर जी का दर्शन बड़ा स्पष्ट था। वे भाग्य के भरोसे बैठने वाले कवि नहीं थे, वे पुरुषार्थ, कर्म और मनुष्य के आंतरिक तेज के उद्घोषक थे। जो कहते हैं कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के।
2: आज हम जिस 21वीं सदी के चक्रव्यूह में जी रहे हैं ना, जहां भौतिकता की अंधी दौड़ है, जहां मानवीय संवेदनाएं धीरे धीरे मशीनी हो रही हैं, वहां रश्मिरथी हमारे लिए एक नैतिक आईना बन जाती है। हम आज की सदी में क्या भूल रहे हैं? हम भूल रहे हैं कर्ण जैसा निश्चल त्याग, हम भूल रहे हैं दुर्योधन के अवगुणों के बीच भी उसकी उस गहरी मित्रता का मान जो मृत्यु के मुहाने पर भी अडिग रही, हम भूल रहे हैं कि हर संकट के समय समाज को श्री कृष्ण जैसे शांति दूत की आवश्यकता होती है। रश्मिरथी हमें सिखाती है कि जब जीवन में विपत्तियां आए, जब नियति हमें चारों ओर से घेर ले, तब भीतर के मनुष्य को टूटने नहीं देना है बल्कि विघ्नों को गले लगाना है और कांटों में राह बनाना है। आइए आज की इस आधुनिक आपाधापी के बीच दिनकर जी के इन शाश्वत विचारों को अपने भीतर उतारें और रश्मिरथी के इस अंतिम पड़ाव की ओर एक नई चेतना के साथ कदम बढ़ाएं। आइए श्रोताओं, मन को शांत और हृदय को संवेदनाओं से भरकर प्रवेश करते हैं रश्मिरथी के पंचम सर्ग के अंतिम सोपान में। तो लीजिए प्रस्तुत है पंचम सर्ग के भाग 7 का काव्य पाठ। कुंती के ये कहने पर पाकर ना एक को और एक को खोकर, मैं चली चार पुत्रों की माता होकर, तो फिर कर्ण भी कह उठता है,
3: छह और चार को भूलो माता, ये निश्चय मान मोद में भूलो। जीते जी भी ये समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी माँ अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कट मरकर जो भी हानि सहेंगे, पांच के पांच ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति ना जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से, तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रणी पांच पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वो मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है, निंदित है, निर्धन है, ये कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। सच है कि पांडवों को ना राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हाँ, अगर पांडवों की ना चली इस रण में, वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में। राधे ना कुरुपति का सहजेता होगा, वो पुनः निस्व दलितों का नेता होगा, वो पुनः निस्व दलितों का नेता होगा।
1: दोस्तों, कर्ण के शब्दों में आज एक योद्धा की गर्जना नहीं, बल्कि कैसे पुत्र की पीड़ा सुनाई देती है, जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। कुंती के सामने खड़ा कर्ण जानता है कि रक्त का संबंध उसे पांडवों से जोड़ता है, पर जीवन का संबंध उसे उन संघर्षों से जोड़ता है जिन्हें उसने अकेले सहा है। कर्ण के भीतर कोई द्वेष नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, केवल एक शांत पीड़ा है जो कहती है कि मेरा जन्म चाहे जहां से हुआ हो, मेरी पहचान मेरे कर्मों से बनी है। और यही कर्ण की महानता का शिखर है, वो शिखर जहां मनुष्य अपने निजी दुख से ऊपर उठ जाता है। वो जानता है कि युद्ध आने वाला है, विनाश सामने खड़ा है, फिर भी उसके हृदय में उन लोगों के लिए करुणा है जो समाज की उपेक्षा में जी रहे हैं। दिनकर जी ने कर्ण के माध्यम से यह प्रश्न उठाया है कि महान कौन है, वो जो केवल विजय प्राप्त करे, या वो जो टूट कर भी दूसरों के लिए आशा बन जाए। कर्ण का मन इस समय दो दिशाओं में बंटा हुआ है, एक ओर मां की पुकार है, दूसरी ओर मित्रता और वचन का ऋण। लेकिन इन दोनों के बीच भी वो अपने भीतर के सूर्य को बुझने नहीं देता। यही वो क्षण है जहां कर्ण केवल महाभारत का पात्र नहीं रहता, बल्कि संघर्ष करते हर उस मनुष्य की आवाज बन जाता है जो परिस्थितियों से लड़कर भी मानवता को थामे रखता है। आइए सुनते हैं इसी भाव समंदर में डूबे कर्ण आगे और क्या कह रहे हैं।
3: है अभी उदय का लग्न, दृश्य सुंदर है, सब और पांडु पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योति की घड़ी ना मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यश मान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को। परिभव प्रदाह भ्रम भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों को भुज भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपनाकर, बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर। तम में नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं, कृष्ण के कर की छाह जहां है, रक्षिका स्वयं अच्युत की बाह जहां है, उस भाग्यवान का भाग्य क्षार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को। शोणित से सारी मही किलिन्न लथपथ है, जा रहा किंतु निर्बाध पार्थ का रथ है। काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा, शतपाश व्यर्थ रिपु का दल फैलाता है, वो जाल तोड़कर हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूं जननी कि कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा, लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगना बढ़ता जाता है। बज चुका काल का पटह, भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उलझी लटें खींच खेलेंगे, कुछ भी ना बचेगा शेष अंत में जाकर, विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर, कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न रह पाएंगे। है एक पंथ कोई जीत या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे, एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निस्सार्थ द्रोह की क्रिया व्यर्थ ये रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है, फिर भी जाने किस लिए ना हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर को झुकते हैं। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है, बहती प्रचंडता से सबको अपना कर, सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर। फिर लहर धार बुदबुद की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी, सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से लहरे हों एकाकार, मिलेंगी जल से मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारल्य बीच फिर गलकर खो जाएंगी। आपस में हो हम खरे या कि हों खोटे, पर काल बली के लिए सभी हैं छोटे, छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता ना जाने कहां समेट धरेंगे। लेकिन चिंता ये वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल, कल का प्रभाव आने दो, दिखती किसी भी तरफ ना उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूम केतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है।
1: हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिर दृगों से चूकर, बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से।
2: पंचम सर्ग का ये समापन मानो एक गहरी सांझ की तरह है, जहां शब्द धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और केवल भावों की प्रतिध्वनि रह जाती है। इस अंतिम क्षण में संवाद धीरे धीरे मौन में बदल जाता है। कर्ण और कुंती दोनों जानते हैं कि अब उनके मार्ग अलग अलग हैं, फिर भी उस सत्य को स्वीकार करना कितना कठिन है। कुंती की आंखों में पश्चाताप की नमी है और कर्ण के शब्दों में एक अद्भुत धैर्य। वह माँ को आश्वासन देता है कि चाहे युद्ध की धारा किधर भी बहे, उसके पुत्रों की संख्या 5 ही रहेगी। ये वचन किसी योद्धा का नहीं बल्कि उस उदार हृदय का है जिसने जीवन भर अपने दुखों को पीकर भी दूसरों के लिए करुणा संजोए रखी।
1: जब विदा का क्षण आता है तो शब्द पीछे छूट जाते हैं और केवल भाव शेष रह जाते हैं। दो बूंद आंसू कर्ण के चरणों पर गिरते हैं और कुंती बिना कुछ कहे लौट पड़ती है, मानो भाग्य ने उनके हृदयों के बीच एक अदृश्य दूरी खींच दी हो। उस सांझ में दृश्य हमें ये सत्य याद दिलाता है कि मनुष्य कई बार प्रेम से बंधा होता है, पर चलना उसे नियति की ही दिशा में पड़ता है। यही इस प्रसंग की करुण गरिमा है, जहां त्याग प्रेम और नियति तीनों एक साथ अपनी छाया छोड़ जाते हैं।
2: आने वाला कुरुक्षेत्र मानो दूर क्षितिज पर गरजते बादलों की तरह दिखाई देता है। युद्ध की आहट, वीरों का संकल्प और काल का निमंत्रण, सब कुछ धीरे धीरे निकट आ रहा है। फिर भी इस करुण मिलन की स्मृति उस भीषण युद्ध के बीच भी एक दीपक की तरह जलती रहेगी, क्योंकि यहाँ केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि त्याग, मर्यादा और मौन प्रेम की वह झिलमिलाहट है जो कर्ण और कुंती की कहानी को अमर बना देती है। श्रोताओं, हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि इतिहास के खंडहर हमें वर्तमान की पीड़ा के प्रति सजग बनाते हैं और यही चेतना किसी साहित्य को अमर करती है। हिंदी की राष्ट्रीय कविता की विकास यात्रा में दिनकर जी का स्थान भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त के साथ शीर्ष पर है। जहां भारतेंदु जी ने कविता को ब्रज की गलियों से निकालकर देश की दुर्दशा की ओर मोड़ा और गुप्त जी ने अतीत के गौरव से वर्तमान को सुधारने की प्रेरणा दी, वहीं तीसरे पायदान पर आसीन दिनकर जी ने पराधीनता, सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण के खिलाफ वह प्रचंड शंखनाद किया कि उनका नाम ही युग धर्म की हुंकार बन गया। उनका व्यवहारिक जीवन हमेशा समाज के शोषित, दीन दुखी और उपेक्षित वर्ग के प्रति समर्पित रहा।
1: दोस्तों, दिनकर जी वीर रस के साथ साथ रौद्र, करुण और शांत रसों के भी सिद्ध हस्त कवि हैं, जिसका प्रमाण उर्वशी में श्रृंगार रस के परिपक्व रूप में मिलता है। उनकी राष्ट्रीयता और दर्शन पर एक तरफ भारतीय गौरवमयी परंपरा का प्रभाव है तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा का। सन 1946 में प्रकाशित कुरुक्षेत्र में उन्होंने भीष्म और युधिष्ठिर के संवादों के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बीच युद्ध और शांति के अत्यंत जटिल प्रश्न को उठाया है। वे गांधी जी के विचारों से गहरे प्रभावित तो थे, लेकिन संकट के समय कायरतापूर्ण आत्मसमर्पण के विरोधी थे। उनका स्पष्ट मानना था कि शांति की स्थापना के लिए कभी कभी अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाना भी परम धर्म बन जाता है।
2: लेकिन दिनकर जी केवल कल्पना के लोक में खोए रहने वाले रचनाकार नहीं थे। जैसे जैसे वे देश की पराधीनता, भुखमरी और गरीबी के कड़वे यथार्थ से रूबरू हुए, वैसे वैसे उनका बौद्धिक और यथार्थवादी स्वर मुखर होता गया, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उनकी कविताएं छायावाद के उस काल्पनिक कुहासे से मुक्त होकर सीधे धरातल के सच से जुड़ती चली गईं। उन्होंने कोमल कांत पदावली को छोड़कर गर्जना सीखी, बादलों से बरसते पानी की जगह अंगारे बरसाना सीखा। परिणाम ये हुआ कि हिंदी साहित्य को एक नई, ओजस्वी और क्रांतिकारी दिशा मिली, जिसने महलों के सिंहासन खाली करने की मुनादी कर दी।
1: दोस्तों, जब कर्ण अपनी शर्तों पर अडिग रहता है तो कुंती का हृदय हाहाकार कर उठता है। वे कहती हैं कि हे हठी, तूने खुद को देकर भी मुझे खाली ही छोड़ दिया। मैं 6 पुत्रों की मां बनने की आस लेकर आई थी, लेकिन विधाता की क्रूरता देखो कि उसने मुझे आज भी 5 पुत्रों पर ही ला खड़ा किया। विधाता का न्याय कितना वाम है, यानी टेढ़ा है, कि मां अपने ही 2 बेटों को आपस में मरते देखने के लिए अभिशप्त है। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि कुछ गलतियां समय के किसी भी मरहम से नहीं भरी जा सकती। कुंती की ममता सच्ची है और कर्ण का कर्तव्य अटल है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, फिर भी दोनों के हिस्से में केवल पीड़ा है। दिनकर जी ने इस संवाद के माध्यम से ये दिखा दिया कि मनुष्य का गौरव केवल जीत में नहीं बल्कि अपने धर्म और वचन के लिए हंसते हंसते सर्वस्व न्योछावर कर देने में है। तो श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का। यह था पंचम सर्ग का अंतिम काव्यांश। लगता है दिनकर जी ने आत्मा की सारी परतें खोल दी। इतना भावुक काव्यांश मां और पुत्र का, इतना भाव प्रवण संवाद, हृदय जैसे बहुत देर तक इसी भाव में कहीं ठहर सा गया है। तो हम यहीं रुकते हैं, रश्मि रथी के इस रथ को यहीं विराम देते हैं। तब तक हमें अनुमति दीजिए, जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना आदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति लेखन दीपक नेमा, और इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा ने।
4: मैंने यानी आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा
2: और मैं भगवती सक्सेना।
1: तो इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं विराम लेती है। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद। मैं हूँ आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा।
2: और मैं हूँ वर्षा सिंह।
1: और आज हम अपने कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक में बात करेंगे प्रोफेसर सतीश धवन की, जो कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के महानायक रहे हैं। कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे उस यात्रा पर जहां विज्ञान साधना बन जाता है और विनम्रता नेतृत्व की पहचान। आज हम बात करेंगे भारत के अंतरिक्ष स्वप्न को दिशा देने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन की। श्रोताओं, जब भारत पहले रॉकेट के सपने देख रहा था, तब डॉक्टर सतीश धवन ने सिर्फ तकनीक ही नहीं दी, उन्होंने दिया विश्वास, अनुशासन और टीम को आगे रखने का संस्कार।
2: ये कार्यक्रम है एक ऐसे वैज्ञानिक को समझने का प्रयास, जिन्होंने सफलता का श्रेय खुद लिया और सफलता का सम्मान अपनी टीम को दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले क्षणों में हम जानेंगे डॉक्टर सतीश धवन का जीवन, उनके विचार और वो दर्शन जिसने भारत को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रोफेसर सतीश धवन का नाम भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वे न केवल एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता, प्रेरणादायक शिक्षक और विनम्र मानवतावादी।

0: तत्व के गुण स्पष्ट दिखाई देते थे और वो अपने साथियों के बीच लोकप्रिय थे।
1: स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सतीश धवन ने इंजीनियरिंग की ओर रुख किया। ये निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने 1942 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ये वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और विमानन तकनीक में तेजी से प्रगति हो रही थी। धवन को यांत्रिकी, द्रव गतिकी और विमानन विज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने महसूस किया कि भविष्य विमानन और अंतरिक्ष विज्ञान का है और इसी क्षेत्र में वे अपना योगदान देना चाहते थे। उनके प्राध्यापकों ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की सलाह दी
0: और 1945 में जब सतीश धवन 25 वर्ष के थे, उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने का साहसिक निर्णय लिया। उस समय विदेश जाने एक बड़ी चुनौती थी, खासकर भारत जैसे विकासशील देश से। लेकिन धवन अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने सबसे पहले मिनेसोटा विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की। 1947 में उन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री उत्कृष्ट अंकों के साथ प्राप्त की। मिनेसोटा में उन्होंने द्रव गतिकी और सीमा परत सिद्धांत पर गहन अध्ययन किया।
1: 1947 में धवन ने विश्व के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक कैलटेक में पीएचडी के लिए दाखिला लिया। कैलटेक उस समय एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संस्थान था। यहाँ उन्हें विश्वविख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर हंस लिपमैन के मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिला। धवन का शोध कार्य टर्बुलेंट शेयर फ्लो यानी कि अशांत अपरूपण प्रवाह पर केंद्रित था, जो उच्च गति वाले वायुयानों और रॉकेट के डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनका शोध इतना उत्कृष्ट था कि इसे द्रव गति के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना गया।
0: और 1949 में उन्होंने अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और वो भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने कैलटेक से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। कैलटेक में उनके सहयोगियों और शिक्षकों ने उनकी प्रतिभा को सराहा। प्रोफेसर लिपमैन ने कहा था, सतीश धवन उन दुर्लभ वैज्ञानिकों में से हैं जो न केवल सिद्धांत को समझते हैं बल्कि उसे व्यावहारिक अनुप्रयोगों में बदलने की क्षमता भी रखते हैं।
1: 1951 में जब अमेरिका में उन्हें बेहतर अवसर और सुविधाएं मिल सकती थीं, सतीश धवन ने भारत लौटने का निर्णय लिया। ये निर्णय उनकी देशभक्ति और भारतीय विज्ञान को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता था। वे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए। उस समय IISc में एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का एक नया विभाग था और संसाधनों की कमी थी, लेकिन धवन ने अपनी दृढ़ता और कड़ी मेहनत से इस विभाग को उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचाया। उन्होंने अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की और अनुसंधान को बढ़ावा दिया।
0: श्रोताओं, प्रोफेसर धवन एक असाधारण शिक्षक थे। उनकी कक्षाएं हमेशा छात्रों से भरी रहती थीं और वे जटिल विषयों को सरल तरीके से समझाने में माहिर थे। उनके छात्रों में से कई बाद में प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इंजीनियर बने। डॉक्टर रोदाम नरसिम्हा, जो स्वयं एक प्रसिद्ध एरोस्पेस वैज्ञानिक बने, धवन के छात्र थे। उन्होंने कहा, प्रोफेसर धवन केवल विषय नहीं पढ़ाते थे बल्कि वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान की पद्धति सिखाते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे प्रश्न पूछें और समाधान खोजें।
1: 1962 में सतीश धवन को भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। वे मात्र 42 वर्ष की आयु में इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन हुए। ये उनकी योग्यता और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण था। निदेशक के रूप में उन्होंने IISc को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध संस्थान में बदलने का सपना देखा। उन्होंने नए विभाग खोले, शोध सुविधाओं का विस्तार किया और विदेश से प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। उनके नेतृत्व में IISc ने कई महत्वपूर्ण शोध परियोजनाएं शुरू की।
0: धवन का मानना था कि शिक्षा और अनुसंधान एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने PhD कार्यक्रमों को मजबूत किया और युवा शोधार्थियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने IISc में एक ऐसा वातावरण बनाया जहां विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान होता था और रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता था। 1981 तक यानी लगभग 19 वर्षों तक वे IISc के निदेशक रहे। इस अवधि में उन्होंने संस्थान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
1: 1972 में जब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई का असामयिक निधन हो गया, तब पूरे देश को एक दूरदर्शी नेता की तलाश थी जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सकें। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अंतरिक्ष आयोग ने सर्वसम्मति से प्रोफेसर सतीश धवन को इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया। ये एक चुनौतीपूर्ण समय था। इसरो अभी शैशवावस्था में था और कई परियोजनाएं अधूरी थीं। लेकिन धवन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अगले 12 वर्षों तक इसरो का नेतृत्व किया। इस अवधि को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का स्वर्णिम युग माना जाता है।
0: प्रोफेसर धवन के नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण परियोजना थी SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, जो भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान था। इस परियोजना के निदेशक थे एक युवा वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 10 अगस्त 1979 को SLV-3 का पहला प्रायोगिक प्रक्षेपण किया गया, लेकिन ये असफल रहा। रॉकेट अपने प्रक्षेपण के कुछ क्षणों बाद ही बंगाल की खाड़ी में गिर गया। पूरी टीम निराश थी, खासकर डॉक्टर कलाम जो इस परियोजना के निदेशक थे।
1: लेकिन प्रोफेसर धवन ने जो किया वो नेतृत्व का एक अद्भुत उदाहरण था। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए असफलता की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। उन्होंने कहा, मैं इसरो का अध्यक्ष हूँ और इस असफलता का पूरा दायित्व मेरा है। उन्होंने अपनी टीम को प्रोत्साहित किया और कहा कि असफलता सफलता की सीढ़ी है।
0: और फिर इसके बाद 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का दूसरा प्रक्षेपण किया गया। इस बार रॉकेट ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो अपने उपग्रहों को अपने ही रॉकेट से अंतरिक्ष में भेज सकते थे। इस बार भी प्रोफेसर धवन ने एक अद्भुत कदम उठाया। उन्होंने डॉक्टर कलाम को मीडिया के सामने भेजा और कहा, यह सफलता उनकी और उनकी पूरी टीम की है। उन्होंने स्वयं पीछे रहकर अपनी टीम को सारा श्रेय दिया।
1: डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बाद में अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा, धवन ने असफलता के समय टीम का बचाव किया और सफलता के समय टीम को सम्मान दिया। ये बात कलाम ने अपनी किताब में वर्णित की। धवन ने SLV-3 की सफलता के बाद अधिक शक्तिशाली ASLV की नींव रखी। ये रॉकेट बड़े उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था।
0: उन्होंने भविष्य को देखते हुए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV की योजनाओं को प्रारंभिक आकार दिया। आज ये रॉकेट भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की रीढ़ है। धवन ने भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह यानी इनसेट कार्यक्रम को बढ़ावा दिया, जो दूर संचार, मौसम पूर्वानुमान और प्रसारण के लिए महत्वपूर्ण था। IRS यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। उन्होंने सुदूर संवेदन उपग्रहों के विकास पर भी जोर दिया, जो कृषि, वन, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन में सहायक थे।
1: प्रोफेसर धवन का मूल मंत्र था आत्मनिर्भरता। वे चाहते थे भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किसी अन्य देश पर निर्भर ना रहे। उन्होंने स्वदेशी तकनीक के विकास पर जोर दिया और भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमताओं पर विश्वास किया। उन्होंने कहा था, हमें अपनी तकनीक विकसित करनी होगी, भले ही इसमें समय लगे। केवल तभी हम वास्तव में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
0: श्रोताओं, सतीश धवन का विवाह नलिनी धवन से हुआ था। नलिनी जी एक शिक्षित और समझदार महिला थीं। उन्होंने अपने पति के करियर में पूर्ण सहयोग किया। जब धवन विदेश में पढ़ाई कर रहे थे या बाद में अपने व्यस्त वैज्ञानिक जीवन में, नलिनी जी ने हमेशा घर को संभाला और उन्हें भावनात्मक समर्थन दिया। धवन परिवार में प्यार, सम्मान और संस्कृति का वातावरण था। प्रोफेसर धवन अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते थे, भले ही उनका कार्यक्रम कितना भी व्यस्त क्यों ना हो।
1: प्रोफेसर धवन केवल विज्ञान के व्यक्ति नहीं थे, उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे शास्त्रीय संगीत के गहरे पारखी थे। उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुनना बेहद पसंद था। वे अक्सर कहते थे कि संगीत उन्हें मानसिक शांति देता है और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। धवन को साहित्य पढ़ने का शौक था। वे अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी साहित्य के अच्छे जानकार थे। उन्हें कविता विशेष रूप से प्रिय थी। वे दार्शनिक विषयों में गहरी रुचि रखते थे और अक्सर जीवन के गहरे प्रश्नों पर चिंतन करते थे।
0: और वो बेंगलोर के हरे भरे वातावरण में प्रकृति के साथ समय बिताना पसंद करते थे। वो अक्सर पैदल चलते थे और प्रकृति का अवलोकन करते थे। श्रोताओं, प्रोफेसर धवन अपनी विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थे। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद वे बेहद सरल और सुलभ थे। वे किसी भी वैज्ञानिक या छात्र से आसानी से मिल लेते थे। उनके कार्यालय का दरवाजा सभी के लिए खुला रहता था।
1: उनके सहयोगी डॉक्टर यू आर राव, जो बाद में इसरो के अध्यक्ष बने, उन्होंने कहा था, प्रोफेसर धवन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं था। वे हमेशा दूसरों की बात ध्यान से सुनते थे और सभी के विचारों का सम्मान करते थे। धवन का नेतृत्व सहभागी और प्रेरक था। वे मानते थे कि सफलता सामूहिक प्रयास का परिणाम होती है। वे अपनी टीम के सदस्यों को निर्णय लेने में शामिल करते थे और उनके योगदान को मान्यता देते थे।
0: श्रोताओं, डॉक्टर कलाम के अलावा कई अन्य युवा वैज्ञानिकों ने धवन के मार्गदर्शन में अपना करियर शुरू किया। उनमें से कई बाद में इसरो और भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे। डॉक्टर कलाम और प्रोफेसर धवन का रिश्ता केवल गुरु शिष्य का नहीं था, बल्कि गहरी मित्रता और आपसी सम्मान का भी था। डॉक्टर कलाम ने कई बार कहा, प्रोफेसर धवन ने उन्हें न केवल वैज्ञानिक बल्कि एक नेता के रूप में गढ़ा। डॉक्टर कलाम ने एक साक्षात्कार में कहा, प्रोफेसर धवन ने मुझे सिखाया कि असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि नई शुरुआत का अवसर है। जब SLV-3 असफल हुआ तो पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली, लेकिन जब हम सफल हुए तो उन्होंने मुझे आगे खड़ा किया। ये सबक मैं जीवन भर नहीं भूल सकता।
1: डॉक्टर रोदाम नरसिम्हा, जो भारतीय विज्ञान संस्थान में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर बने, धवन के प्रिय छात्रों में से एक थे। उन्होंने कहा, प्रोफेसर धवन हमें केवल फॉर्मूले और सिद्धांत नहीं पढ़ाते थे, वे हमें सोचना सिखाते थे। वे कहते थे कि एक अच्छा वैज्ञानिक वो नहीं होता जो उत्तर जानता है, बल्कि वो होता है जो सही प्रश्न पूछ सकता है। नरसिम्हा ने एक घटना याद करते हुए बताया, एक बार मैंने शोध पत्र प्रस्तुत किया जो काफी जटिल था। प्रोफेसर धवन ने मुझसे कहा, यदि तुम इसे सामान्य व्यक्ति को नहीं समझा सकते तो शायद तुम स्वयं इसे अच्छी तरह से नहीं समझते। ये सबक मेरे जीवन भर काम आया।
0: डॉक्टर उडुपी रामचंद्र राव, जो 1984 से 1994 तक इसरो के अध्यक्ष रहे, धवन के करीबी सहयोगी थे। उन्होंने कहा, प्रोफेसर धवन एक दूरदर्शी थे। जब 1970 के दशक में हम उपग्रह बना रहे थे तो उन्होंने हमें 1990 के दशक के लिए योजना बनाने को कहा। उनकी सोच हमेशा दशकों आगे की रहती थी। राव ने यह भी बताया कि कैसे धवन हमेशा युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते थे। वो कहते थे, युवा दिमाग में क्रांतिकारी विचार होते हैं, हमें उन्हें प्रयोग करने का मौका देना चाहिए, भले ही वे कभी कभी असफल हों।
1: प्रोफेसर हंस लिपमैन, जो कैलटेक में धवन के मार्गदर्शक थे, उन्होंने कहा, सतीश धवन उन विरले वैज्ञानिकों में से थे जो सिद्धांत और व्यवहारिक अनुप्रयोग दोनों में समान रूप से निपुण थे। उनका शोध कार्य आज भी प्रासंगिक है। नासा के कई वैज्ञानिकों ने भी धवन के साथ काम किया और उनकी प्रशंसा की। एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा, प्रोफेसर धवन ने सीमित सिद्धांतों के साथ जो हासिल किया वो अद्भुत है। उन्होंने साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प और सही नेतृत्व से कुछ भी संभव है।
0: श्रोता, 1970 के दशक में भारत एक विकासशील देश था और आर्थिक संसाधन सीमित थे। इसरो को अपनी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन नहीं मिलता था। प्रोफेसर धवन को लगातार सरकार से धन की मांग करनी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हमें जो मिला है उसी में काम करना है, हमें अधिक कुशल बनना होगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना होगा। उनकी सोच ने इसरो को फ्रूगल इनोवेशन यानी किफायती नवाचार में विश्व में अग्रणी बना दिया।
1: रॉकेट विज्ञान अत्यंत जटिल है और असफलता की संभावना बहुत अधिक होती है। SLV-3 की पहली असफलता के बाद टीम का मनोबल गिर गया था। कई लोगों ने परियोजना को बंद करने की बात की, लेकिन प्रोफेसर धवन ने अपनी टीम का साथ दिया। उन्होंने कहा, असफलता हमें सिखाती है, हमने जो गलतियां की उनसे सीखेंगे और फिर से प्रयास करेंगे। उनके इस दृष्टिकोण ने पूरी टीम को नया उत्साह दिया।
0: कुछ लोग मानते थे कि एक गरीब देश को अंतरिक्ष कार्यक्रम में इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर धवन को इन आलोचनाओं का जवाब देना पड़ता था। उन्होंने हमेशा तर्कसंगत उत्तर दिए। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष तकनीक केवल शोध के लिए नहीं है, ये दूर संचार, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, शिक्षा और आपदा प्रबंधन में मदद करती है। ये गरीबी से लड़ने का एक उपकरण है।
1: प्रोफेसर धवन ने तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC की स्थापना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये केंद्र आज भारत के रॉकेट विकास का मुख्य केंद्र है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के विकास की योजना बनाई। यहाँ से आज भारत के सभी प्रमुख उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं।
0: धवन ने इसरो में युवा इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने IIT और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रतिभाशाली छात्रों को इसरो में आने के लिए प्रेरित किया। प्रोफेसर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने NASA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और सोवियत संघ के साथ सहयोग स्थापित किए, लेकिन उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि भारत की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बनी रहे।
1: भारत सरकार ने उन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। SLV-3 की सफलता के बाद उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
0: इसके साथ ही उन्हें रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी लंदन, इस प्रतिष्ठित सोसाइटी का फेलो चुना गया। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स, इस संगठन ने उन्हें मानद सदस्यता प्रदान की। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने भी उन्हें मानद उपाधियां दी। भारत और विदेश के कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया।
1: उनके सम्मान में श्रीहरिकोटा के प्रक्षेपण केंद्र का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। ये भारत का प्रमुख अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, जहाँ से सभी महत्वपूर्ण मिशन शुरू किए जाते हैं।
0: 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मंगलयान की सफलता का श्रेय भी प्रोफेसर धवन को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इन मिशनों की तकनीकी नींव रखी थी। आज इसरो विश्व के विभिन्न देशों के उपग्रहों को प्रक्षेपित करके व्यावसायिक आय अर्जित करता है। ये विचार प्रोफेसर धवन का ही था।
1: IISc में उनके नेतृत्व ने हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को तैयार किया। आज पूरी दुनिया में उनके छात्र महत्वपूर्ण पदों पर है। प्रोफेसर धवन की नेतृत्व शैली आज भी प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाई जाती है। उनका असफलता में जिम्मेदारी लेना और सफलता में टीम को श्रेय देने का सिद्धांत नेतृत्व का एक आदर्श उदाहरण है।
0: श्रोता, 1984 में इसरो के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी प्रोफेसर धवन सक्रिय रहे। वे विभिन्न वैज्ञानिक समितियों में सदस्य थे और युवा वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन देते रहे। वे IISc के निदेशक पद से 1981 में सेवानिवृत्त हुए, लेकिन संस्थान के साथ उनका जुड़ाव जीवन भर रहा। वे अक्सर संस्थान जाते और शोधार्थियों के साथ विचार विमर्श करते।
1: अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बीमारी को अपने काम में बाधा नहीं बनने दिया। वे जीवन के अंत तक पढ़ते रहे और लिखते रहे। 3 जनवरी 2002 को बेंगलोर में प्रोफेसर सतीश धवन का निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु से भारतीय विज्ञान जगत में शोक की लहर दौड़ गई।
0: तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, प्रोफेसर धवन ने भारत को अंतरिक्ष शक्ति बनाने में अमूल्य योगदान दिया। उनकी मृत्यु से देश ने एक महान वैज्ञानिक और दूरदर्शी मार्गदर्शक खो दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो समय भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा, प्रोफेसर धवन मेरे गुरु, मित्र और प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने मुझे और अन्य हजारों वैज्ञानिकों को सपने देखने और उन्हें साकार करने का साहस दिया।
1: उनके अंतिम संस्कार में देश भर से वैज्ञानिक, राजनेता, छात्र और आम नागरिक शामिल हुए। इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने प्रिय नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा ये भारत का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। इसके साथ ही सतीश धवन छात्रवृत्ति विभिन्न संस्थानों ने उनके नाम पर छात्रवृत्तियां स्थापित की हैं। सतीश धवन स्मारक व्याख्यान IISc और इसरो में हर वर्ष उनकी स्मृति में विशेष व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं।
0: श्रोताओं, भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। उनके जीवन पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं और डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई गई हैं। प्रोफेसर धवन का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो कहते थे, कड़ी मेहनत और समर्पण यानी सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता में भी विनम्र रहना महत्वपूर्ण है। टीम भावना यानी अकेले कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। असफलता से सीखना यानी असफलता जीवन का अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है, और देश सेवा यानी व्यक्तिगत सफलता से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र की सेवा है।
1: उन्होंने हमेशा कहा, अनुसंधान में जोखिम उठाना जरूरी है, आत्मनिर्भरता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। विज्ञान समाज की सेवा के लिए है, न कि केवल ज्ञान के लिए। प्रोफेसर सतीश धवन का जीवन एक असाधारण यात्रा थी। श्रीनगर में जन्मे एक बालक से लेकर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के महानायक तक, उन्होंने न केवल भारत को अंतरिक्ष शक्ति बनाया बल्कि हजारों युवाओं को प्रेरित किया।
0: उनकी विरासत आज भी जीवित है। हर बार जब इसरो कोई उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करता है, हर बार जब भारतीय वैज्ञानिक कोई नई उपलब्धि हासिल करते हैं, प्रोफेसर धवन की आत्मा मुस्कुराती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सीमित संसाधनों के साथ भी दृढ़ संकल्प, समर्पण और सही नेतृत्व से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।
1: प्रोफेसर सतीश धवन का नाम भारतीय विज्ञान के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। वे न केवल एक महान वैज्ञानिक थे बल्कि एक महान इंसान भी थे, और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सफलता का श्रेय टीम को, असफलता की जिम्मेदारी नेता को, यही था सतीश धवन का मंत्र और यही है उनकी अमर विरासत।
0: तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक, जिसमें आज हमने बात की महान वैज्ञानिक सतीश धवन जी की। तो फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा, और सतीश जी की जिंदगी की कहानी हमने आपको सुनाई, यानी संदीप शर्मा
1: और मैं वर्षा सिंह।
0: तो बस आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विवेकानंद ने रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की और समाज सेवा में जुट गए। इसी बीच स्वास्थ्य ठीक न होने पर थोड़े दिनों के लिए दार्जिलिंग के पहाड़ों पर भी हो आए, पर उनका मन खिन्न था क्योंकि
1: स्वदेश लौटे स्वामी जी का सर्वत्र बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत तो हो रहा था और वे नवीन कर्मधारा प्रारंभ करने की तैयारी में लगे थे, पर उनकी सफलता पूर्णतः निर्विवाद या निर्विरोध नहीं थी। इस विरोध का किंचित आभास हमें पहले भी मिल चुका है।
0: श्रीलंका के अनुराधापुरम में लोगों ने उनकी सभा में विघ्न डाला। मद्रास के पंडित उन्हें तर्क में हराने आए थे। फिर किसी ने प्रश्न उठाया था कि उन्हें गैरिक वस्त्र धारण करने का क्या अधिकार है। बंगाल में भी उनके विरुद्ध चार करने वालों की कमी न थी, पर इससे स्वामी जी के कार्य में कोई रुकावट नहीं आई। इस कड़ी में हम लोग इन्हीं विरुद्ध चारों के बारे में जानेंगे।
1: पुरानी बात है, स्वामी जी जब अमेरिका में शत्रुओं के आक्रमणकारी व्यवहारों से परेशान थे और स्वदेश से समर्थन पाने की आशा में जब उन्होंने कलकत्ते में एक सभा आयोजन करने की सलाह दी थी, तब भी कलकत्ते के रूढ़ीवादी समाज में स्वामी जी के जाति के विषय में प्रतिक्रिया दिखाई पड़ी थी।
0: उस सभा के सभापति बनाने के लिए कलकत्ते के कई गणमान्य व्यक्ति जैसे श्री मनमोहन मित्र, नगेंद्र नाथ मित्र, भूपेंद्र कुमार बसु, चारू चंद्र बसु तथा कुछ अन्य लोग माननीय गुरुदास बंदोपाध्याय के पास गए थे। जब उनसे उक्त सभा में अध्यक्षता करने की बात कही गई, तो वे निरुत्साह दिखाई दिए और कहा,
2: किसी विशिष्ट महामहोपाध्याय पंडित ने बताया है कि स्वामी विवेकानंद का नाम गुरु प्रदत्त नहीं है। उनके द्वारा संन्यास ग्रहण शास्त्र सम्मत है या नहीं, इस विषय में काफी मतभेद है और सन्यासी होकर दूसरे देश में जाना भी अत्यंत अनुचित है। देखिए, मैंने निश्चित किया है कि इस वृद्धावस्था में मैं किसी धर्म सभा से विशेष रूप से नहीं जुड़ूंगा और ना सभापतित्व करूंगा। विशेषकर जिन कार्यों में सामाजिक तथा धार्मिक मतभेद है, उनमें अब मैं फंसना नहीं चाहता।
0: गुरुदास बाबू एक विदेश गमनकारी सन्यासी को हिंदू समाज का समर्थन देने के लिए सहमत नहीं हुए। गुरुदास बाबू के अस्वीकार कर देने पर उत्तरपाड़ा के जमींदार राजा प्यारी मोहन मुखोपाध्याय से इसके लिए अनुरोध किया गया। वे स्वामी जी के बारे में सब सुनकर सहमत हुए, परंतु सभा में व्याख्यान देते समय राजा प्यारी मोहन मुखोपाध्याय महाशय ने स्वामी विवेकानंद नाम पर आपत्ति दिखाते हुए ब्रदर विवेकानंद कहकर उन्हें संबोधित किया, क्योंकि इस विषय में तब भी उन्हें संदेह था कि कायस्थ सन्यासी हो सकता है या नहीं।
1: 5 सितंबर 1894 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित जिस सभा में स्वामी जी को धन्यवाद दिया गया, उसका विवरण देते हुए अनुसंधान पत्रिका ने जो विवरण दिया है वो विचारणीय है। पत्रिका ने लिखा,
2: पिछले 5 सितंबर बुधवार को टाउन हॉल में हिंदुओं की एक सभा हुई। इस सभा का उद्देश्य था शिकागो की धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के जो श्रेष्ठता प्रमाणित की थी, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना और अमेरिका वासियों ने स्वामी जी को जो विशेष प्रीति एवं सम्मान दिया है, इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। इस सभा में 4000 से अधिक लोग एकत्र हुए थे। और हाँ, इस सभा के बारे में एक बड़ी मजेदार बात है। हिंदू पैट्रियट का कहना है कि यह हिंदुओं की सभा थी, परंतु हमारे ब्रह्म सहयोगी समाजी पत्रिका संजीवनी ने लिखा है कि विवेकानंद कभी उनके साधारण ब्रह्म समाज में गायक थे, इसलिए उस दिन की सभा में अनेक ब्रह्म बंधुगण उपस्थित थे। अतएव इसको हिंदू सभा ना कहकर ब्रह्म सभा कहना ही उचित है। इधर हमारे सहयोगी एक बंगाली सज्जन अमेरिका प्रवासी को हिंदू मानने के लिए तैयारी नहीं है, अतएव टाउन हॉल की सभा में बंगवासी द्वारा स्वीकृत हिंदू राजा प्यारी मोहन के सभापति होने के बावजूद उनके मतानुसार वो हिंदू सभा नहीं थी। अब कहिए, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए?
0: यहां स्मरण रखना होगा कि बंगवासी के संस्थापक कायस्थ कुल के ही योगेंद्रनाथ वसु थे, तदापि इन दिनों वे ब्राह्मणों द्वारा परिचालित रूढ़िवाद के कार्य में कमर कसे हुए थे और अब्राह्मण विवेकानंद के संन्यास ग्रहण आदि विषयों में विशेष रूप से चिंतित तथा क्रोध से विचलित थे।
1: स्वामी जी की समुद्र यात्रा को लेकर समस्या उत्पन्न हुई उनके स्वदेश लौटने के बाद। घटना स्थल मुख्यतः दक्षिणेश्वर का काली मंदिर था। हम पहले ही बता चुके हैं कि मार्च 1897 मास के प्रारंभ में जब दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव हुआ तब वे विदेश लौटे। स्वामी विवेकानंद काली मंदिर में जगदम्बा को और राधाकांत मंदिर में राधा कृष्ण को साष्टांग प्रणाम कराए थे। उस दिन दो अंग्रेज महिलाओं ने भी स्वामी जी के साथ मंदिर के उद्यान में भ्रमण किया था। इन रूढ़ीवादी लोगों के मन में व्यग्रता उत्पन्न हुई। इसके बाद दार्जिलिंग से लौटकर 21 मार्च को स्वामी जी जब खेतरी राजा के साथ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में दर्शन कराए तो इसी घटना को लेकर एक विरोध का सूत्रपात हुआ और रूढ़ीवादी दल ने पत्र पत्रिकाओं की सहायता से इसका प्रतिरोध लिया। इस मामले में बंगवासी पत्र ने ही सर्वाधिक उत्साह प्रकट किया था। बंगवासी का मूल वक्तव्य ये था कि मंदिर के प्रबंधकों ने स्वामी जी को अपमान पूर्वक वहां से निकाल दिया। इस विवाद का असली रूप इस प्रकार है।
0: 28 मार्च के इंडियन मिरर में सिंहलवासी यूरोपीय बौद्ध टीजे हैरिसन ने एक पत्र के द्वारा सूचित किया,
2: यद्यपि 27 मार्च के भंगवासी में खेतड़ी नरेश के साथ स्वामी जी के दक्षिणेश्वर मंदिर में जाने की बात का उल्लेख करते हुए लिखा गया है, मालिकों की ओर से उनके प्रति सद्व्यवहार नहीं किया गया, परंतु यह सत्य नहीं है। मैं भी उसी दल के साथ था और प्रत्यक्ष दर्शी के रूप में मैं उस वक्त बात को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी उपस्थिति के दौरान किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया या कहा जिससे कि उपरोक्त विवरण को सत्य रूप में ग्रहण किया जा सके। मंदिर के मालिकों ने बल्कि यथेष्ट सौजन्यता दिखाई थी और दर्शन योग्य सब कुछ दिखाने ले गए, तो भी भंगवासी द्वारा उस प्रकार का विवरण प्रकाशित करने का कारण ये भी हो सकता है कि लेखक ने मंदिर के मालिकों के ऊपर कोई पुरानी नाराजगी निकालना चाहा है। अब तक स्वामी जी के समर्थकों की धारणा थी कि मंदिर के मालिक उनके विरोधी नहीं है।
0: 30 मार्च को उसी सुर में श्री महेंद्रनाथ गुप्त ने इंडियन मिरर में एक पत्र प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा,
3: देखिए बंगवासी में जो कुछ प्रकाशित हुआ है उस संदर्भ में घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में मैं सूचित करता हूँ। लिखित बातें बिल्कुल ही मिथ्या हैं। कई साधु के साथ हैरिसन साहब जान बाजार में त्रिलोक के नाथ विश्वास को स्वामी जी और खेतड़ी नरेश के मंदिर दर्शन के बारे में कहने गए थे। त्रिलोक के बाबू ने अस्वस्थता के कारण उनसे भेंट नहीं की और कहला भेजा कि संध्या को 5 बजे वे दक्षिणेश्वर में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। अतिथियों के मंदिर में पहुंचने पर खजांची भोलेनाथ बाबू, अन्य कर्मचारियों तथा त्रिलोक के बाबू के पुत्रों ने अति सज्जनता के साथ स्वामी विवेकानंद के साथ अतिथियों को भी काली मूर्ति दर्शन करने का अनुरोध किया था। उस समय लगभग 6 बज रहे थे। यहाँ तक कि खजांची ने मंदिर का पश्चिम दरवाजा तक खोल दिया ताकि और अधिक रोशनी आकर देवी की प्रतिमा पर पड़े।
0: त्रिलोक के बाबू ने और भी लिखा कि उन्हें समाचार मिला था जयपुर के महाराज मंदिर दर्शन करने जाएंगे। इस विषय में त्रिलोक के बाबू को संदेह हुआ, तथापि उनके पुत्र के मन में जयपुर के महाराजा को देखने की उत्सुकता होने के कारण वे उन लोगों के साथ दक्षिणेश्वर गए। स्वामी विवेकानंद और उनके संगी परोक्ष रूप से मंदिर से निकाल दिए गए थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, जैसा कि बाबू भोलानाथ मुखोपाध्याय ने बताया है। स्वामी जी तथा राजा का स्वागत करने के लिए मैंने किसी को नहीं कहा और स्वयं भी मैंने उनका स्वागत नहीं किया। जो व्यक्ति विदेश जाने के बाद भी अपने को हिंदू कह सकता है, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ मैं थोड़ा सा भी संपर्क रखना उचित नहीं समझता। प्रतिमा के पुनः अभिषेक का जो समाचार आपने प्रकाशित किया है वो पूर्णतया सत्य है। मंदिर में स्वामी जी के प्रवेश के फलस्वरूप देवी के पुनराभिषेक की आवश्यकता हुई थी। यहां पर मजे की बात यह है कि श्री रामकृष्ण देव के जन्मदिन के दिन भी स्वामी जी ने मंदिर के भीतर जाकर प्रतिमा दर्शन किया था, परंतु तब पुनराभिषेक की आवश्यकता नहीं हुई थी। इस बार बंगवासी की कलम के भय से मंदिर के मालिकों को वो भी करना पड़ा। इन पत्रों से यह प्रमाणित होता है कि स्वामी विवेकानंद का प्रत्यक्ष असम्मान करना संभव नहीं हो सकता था, बल्कि प्रत्यक्षतः उनका स्वागत ही हुआ था। यहाँ भी पुनः विवेकानंद की महिमा ही प्रमाणित होती है। उनके उपस्थित रहते किसी की मजाल नहीं थी कि उन्हें अस्वीकार करता।
1: परोक्ष अपमान यही था कि त्रैलोक के बाबू ने स्वयं स्वामी जी के साथ भेंट नहीं की, यद्यपि उस समय वे मंदिर के उद्यान में ही उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त त्रैलोक के बाबू के मतानुसार उन्होंने किसी को भी स्वामी जी का स्वागत करने का निर्देश नहीं दिया। हाँ, स्वामी जी को अवश्य बता दिया था कि अस्वस्थता के कारण वे मिलने नहीं आ सके।
0: इस पत्र के उत्तर में महेंद्रनाथ गुप्त ने एक पत्र लिखकर त्रैलोक के बाबू की बातों और आचरण में उपयुक्त फर्क दिखा दिया और साथ ही ये भी बताया कि हिंदू धर्म के जीवंत विग्रह श्री रामकृष्ण विलायत से लौटकर केशव के घर जाते थे, वहां पूरी मिष्ठान भी खाते। इस कारण त्रैलोक के नाथ ने उन्हें भी मंदिर में प्रवेश से रोकने की बात सोची थी, यद्यपि वो कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाया। एक अन्य समय कप्तान विश्वनाथ उपाध्याय के इस विषय में आपत्ति प्रकट करने पर श्री रामकृष्ण ने कहा था कि इस प्रकार का विद्वेष युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि वेदांत के मतानुसार सब कुछ ब्रह्म है और कप्तान स्वयं इतने कट्टर होकर भी साहबों के साथ हाथ मिलाते हैं।
1: वैसे श्री रामकृष्ण के मामले में म्लेच्छों के साथ सहज भाव से आदान प्रदान की व्यवस्था सामाजिक आधार पर न होकर धार्मिक नींव पर आधारित थी। स्वामी विवेकानंद ने भी उस पद का अनुसरण किया था। वे कट्टरपंथियों द्वारा स्वीकृत कूपमंडुकता के विरोधी थे और फिर सुधारवादी प्रगतिशीलों द्वारा अनुमोदित आत्म अवमानना के भी विपक्ष में खड़े थे। उनके विदेश गमन अथवा म्लेच्छों के साथ अबाध आदान प्रदान के पीछे स्वार्थ या हठवादिता का लेश मात्र भी नहीं था। इसका कारण उनके आचरण रूढ़िवादियों और प्रगतिवादियों दोनों की नाराजगी के कारण होकर भी हिंदू जनसाधारण की दृष्टि में वे निंदनीय नहीं थे एवं क्रमशः आदर के साथ उन्हें ग्रहण भी कर लिया।
0: वैसे आर्थिक तथा ऐतिहासिक परिवर्तनों के फलस्वरूप समुद्र यात्रा आदि आगे चलकर अवश्य स्वीकृत होती, परंतु उक्त समस्या के समाधान के रूप में स्वामी जी ने जो नैतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण व्यक्त किया था, उससे हिंदू समाज के लिए वो सहजी मान्य हो गया था। इस क्षेत्र में स्वामी जी के इस अवदान को स्वीकार करना अपरिहार्य है।
1: जिस समय देशी समाचार पत्रों में इस प्रकार का वाद विवाद चल रहा था, उस समय स्वामी जी दार्जिलिंग में थे और उन्हें ये मालूम तक न था कि वे मंदिर के मालिकों द्वारा अपमानित हो चुके हैं। वस्तुतः इस काल्पनिक घटना के साथ उनका बिल्कुल भी संबंध न था। परंतु इससे क्या होता है, भला शत्रुगण ऐसा मौका हाथ से कैसे निकल जाने देते। अतः मिशनरियों के माध्यम से इस समाचार को खूब बढ़ा चढ़ाकर अमेरिका में पहुंचा दिया गया और इस निंदा प्रचार के एक प्रधान प्रवक्ता हुए डॉक्टर बैरोज। बैरोज की शत्रुता का एक प्रमुख कारण तो ये था कि वे सोचते थे कि स्वामी जी की अमेरिका में सफलता के पीछे उनका काफी हाथ था, क्योंकि शिकागो धर्म महासभा में संचालक के रूप में उन्होंने ही स्वामी जी के लिए काफी सुविधा कर दी थी। इस उपकार के बदले में स्वामी जी को चाहिए था कि बैरोज के ईसाई धर्म प्रचारार्थ भारत आने पर वे इस विषय में उनकी हर प्रकार से सहायता करते।
0: परंतु बैराज ने देखा कि उनके मद्रास आने पर स्वामी जी ने न तो उनके प्रचार के बारे में कुछ किया और उनसे मिले बिना ही मद्रास से चले गए। अतः इस प्रकार अपनों को अपमानित मानकर बैराज बदला लेने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने प्रचार किया, स्वामी जी को जातिच्युत कहना तो गलत होगा, क्योंकि खोने के उपयुक्त उनकी जाति ही कहां है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अमेरिका के नारी समाज की निंदा की थी। 10 मई 1897 को भारत से लौटकर कैलिफोर्निया पहुंचते ही उसी संध्या को बैराज ने क्रॉनिकल पत्र के संवाददाता के साथ एक साक्षात्कार के माध्यम से अमेरिका वासियों को सूचित किया।
4: स्वामी विवेकानंद मेरे आगमन के एक सप्ताह पूर्व मद्रास पहुंचे थे, तथापि हमारे बीच पूर्व परिचय को घनिष्ठतर करने के लिए उन्होंने मेरे साथ मुलाकात नहीं की, बल्कि जिस दिन मैं पहुंचा उसके अगले दिन ही वो शीघ्रता पूर्वक मद्रास से चले गए। क्रॉनिकल में अमेरिकी नारियों के संबंध में उनका जो मत छपा हुआ था वास्तव में वो पूरा उन्हीं का है। और हाँ, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये उन्हें पता था इसलिए वो मुझे टाल गए। परंतु एक विषय में मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। विवेकानंद अपने आचरण से जाति च्युत हुए हो ऐसी बात नहीं। उन्होंने अमेरिका के नारियों तथा अमेरिका की संस्थाओं के विषय में जो बातें कही हैं उससे मेरे परिचित अनेक हिंदू नाराज हुए हैं। उन लोगों ने मेरे पास आकर स्पष्ट रूप से कहा कि वो उनके धर्म प्रवक्ता नहीं है। उनमें ऐसे अनेक गुण हैं जो अद्भुत तथा आनंददायी हैं, परंतु लगता है कि उनके मस्तिष्क का संतुलन खो गया है। मुझे लगता था कि वो एक दूसरे हिंदू मार्क ट्वेन है, वो प्रतिभावान है और उन्हें कुछ अनुयायी भी मिले हैं। वैसे ये लोग चिरकाल उनके साथ नहीं रहेंगे।
1: इस प्रकार मिशनरियों और बैरोज द्वारा प्रदर्शित उनके दोष हैं। स्वामी जी अकृतज्ञ हैं। वे भारत और विदेशों में जितनी लोकप्रियता का दावा करते हैं वो उतनी नहीं और स्थायी भी नहीं है। वे जाति च्युत हैं और उन्होंने अमेरिकी महिलाओं की अनुचित निंदा की है। स्वामी जी ने इसके पूर्व समाचार पत्रों आदि के माध्यम से प्रकट रूप में कभी इस प्रकार के दोषारोपण का प्रतिवाद नहीं किया था, इस बार भी नहीं किया। फिर भी इस प्रचार के पहले, इसके दौरान और बाद में उन्होंने विभिन्न लोगों को जो व्यक्तिगत पत्र लिखे उनमें इसका समुचित उत्तर मिल जाता है।
0: पहले हम अकृतज्ञता की ही बात को लें। स्वामी जी ने बैरोज की सहायता नहीं की, ये पूर्णतः असत्य है। बैरोज के भारत आने के पूर्व स्वामी जी ने लंदन से 28 अक्टूबर 1896 को जो पत्र इंडियन मिरर में प्रकाशित कराया उसमें ये बातें थीं।
5: शिकागो विश्व मेला के धर्म महासभा की अपनी विराट कल्पना को सफल बनाने के लिए श्री बोनी ने डॉक्टर बैरोज को अपना साथी नियुक्त कर सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति पर ही कार्यभार सौंपा था। डॉक्टर बैरोज के अद्भुत साहस, अथक परिश्रम, अचल धैर्य और स्वाभाविक सज्जनता के फलस्वरूप ही इस महासभा को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। अन्य लोगों की अपेक्षा हम डॉक्टर बैरोज के ही अधिक ऋणी हैं। अब वो हमारे बीच धर्म के पवित्र नाम और मानव जाति के एक महान शिक्षक के नाम पर आ रहे हैं और मेरा विश्वास है कि ईसा मसीह द्वारा प्रचारित ईसाई धर्म की उनकी व्यवस्था अत्यंत उदार होगी एवं हमारे मन को उन्नत करेगी। अतएव अपने देशवासियों से मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि धरती के दूसरे छोर से भारत आने वाले इन विदेशी सज्जन के प्रति आप लोग ऐसा आचरण करें जिससे उन्हें पता चल सके कि इस दुख, निर्धनता एवं अवनति की दशा में भी जब भारतवर्ष आर्य भूमि के रूप में परिचित था और उसके ऐश्वर्य की चर्चा विश्व के सभी राष्ट्रों के मुख पर रहती थी, उस अतीत के समान ही हमारा हृदय आज भी मैत्रीपूर्ण है।
0: मद्रास में बैरोज के लिए प्रतीक्षा न कर कलकत्ता जाने का कारण बताते हुए स्वामी जी ने स्वयं ही लिखा है कि अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य के कारण ही उन्हें ऐसा करना पड़ा था। मिशनरियों तथा बैरोज द्वारा गढ़े गए अन्य दोषारोपों के प्रतिवाद हेतु संवाद पत्रों की सहायता न लेकर अपने मित्रों को व्यक्तिगत पत्र लिखते समय अन्य प्रसंगों के साथ उन्होंने इस विषय पर भी जो दो चार बातें कही है उनमें से हम 30 जनवरी 28 अप्रैल तथा 9 जुलाई 1897 के 3 पत्रों की कुछ बातें यहाँ पर उद्धृत करेंगे। इससे ये विषय काफी स्पष्ट हो जाएगा। ये पत्र मेरी को लिखे गए थे। प्रथम पत्र में है,
5: डॉक्टर बैरोज का सप्रेम स्वागत करने के लिए मैंने लंदन से अपने देशवासियों को पत्र लिखा था। उन लोगों ने उनका बड़े आवभगत के साथ स्वागत किया, परंतु वे यहां की जनता में प्रेरणा का संचार नहीं कर सके। इसमें मेरा क्या दोष? कलकत्ते के लोगों में कोई नया भाव घुसाना बड़ा कठिन है। अब सुन रहा हूं कि डॉक्टर बैरोज के मन में मेरे बारे में तरह तरह की बातें उठ रही हैं। इसी का नाम संसार है।
0: द्वितीय पत्र में उन्होंने लिखा था,
5: मुझे आशा है कि डॉक्टर बैरोज अब तक अमेरिका पहुंच गए होंगे। बेचारे, वो यहां अत्यंत संकीर्ण ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे और जैसा कि आमतौर पर होता है किसी ने उनकी बातें नहीं सुनी। वैसे लोगों ने बड़े प्रेम के साथ उनका स्वागत किया था, और वो भी मैंने पत्र लिखा था इस कारण। परंतु मैं उन्हें बुद्धि तो उधार नहीं दे सकता था। इसके अतिरिक्त वो एक विचित्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। मैंने सुना कि मेरे भारत लौटने पर पूरे देश में जो खुशियां मनाई गईं, इससे वो जलन के मारे पागल हो गए थे। कुछ भी हो, तुम लोगों को थोड़े अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति को भेजना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर बैरोज जो कुछ कह गए हैं उससे हिंदुओं ने महाधर्म सभा को एक तमाशा मात्र समझ लिया है। दार्शनिक विषयों पर पृथ्वी का कोई भी राष्ट्र हिंदुओं का पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता।
0: तृतीय पत्र में उन्होंने मैरी को लिखा था,
5: मुझे विभिन्न अमेरिकी अखबारों की बहुत सारी कतरनें प्राप्त हुई हैं, जिनमें अमेरिका की महिलाओं के बारे में मेरे विचारों की कटु आलोचना की गई है। उनसे मुझे और भी एक नया समाचार मिला कि मैं अपनी जाति से निकाल दिया गया हूं। सन्यासी होकर भी जैसे खोने के लिए मानो मेरी कोई जाति थी। जाति च्युत होना तो दूर रहा, मेरे पाश्चात्य देशों में जाने से यहां समुद्र यात्रा के विरोध में जो भाव थे वो बहुत कुछ दब गए। मुझे यदि बाहर करना हो तो मेरे साथ ही भारत के आधे राजाओं और लगभग पूरे शिक्षित समुदाय को भी जातिच्युत करना पड़ेगा। ऐसा तो हुआ नहीं, उल्टे मेरे पूर्वाश्रम की जाति के एक विशिष्ट राजा ने मेरे सम्मान में एक भोज का आयोजन किया था, जिसमें उस जाति के अधिकांश बड़े बड़े लोग सम्मिलित हुए थे, और देश के एक छोर से दूसरे छोर तक मेरा जैसा सत्कार हुआ है भारत में वैसा किसी और के लिए नहीं हुआ। इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि जब मैं रास्तों से होकर निकलता था तो भीड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती थी। जातिच्युत होना शायद इसे ही कहते होंगे।
1: समाज से बाहर होने का ठीक उत्तर देते हुए यहाँ जो व्यक्तिगत गौरव का वर्णन हुआ है उसे पाठकगण अहंकार का परिचायक न समझें, क्योंकि ये पत्र उनकी अपनी बहन मैरी को व्यक्तिगत तौर पर लिखा गया था और इसके अन्य लोगों के हाथ में पहुंचने की संभावना नहीं थी। जाति च्युत का उत्तर देने के बाद स्वामी जी ने उसी पत्र में अन्य बातों पर भी चर्चा की थी।
5: मेरे ऐसे स्वागत से मिशनरियों के हाथ के तोते उड़ गए हैं, और यहाँ वे हैं भी कौन? कुछ भी नहीं, उनके अस्तित्व के बारे में ही हमें खबर नहीं। बात ऐसी थी कि मैंने अपने एक व्याख्यान में इंग्लिश चर्च के भद्र पादरियों को छोड़कर सामान्य मिशनरियों के दल में आने वाले लोग जिस श्रेणी के होते हैं इस विषय में कुछ कहा था। इस प्रसंग में मुझे अमेरिका की कट्टर चर्च महिलाओं और उनकी मिथ्या बदनामी फैलाने की क्षमता का भी उल्लेख करना पड़ा था। मिशनरी लोग मेरे अमेरिका में किए गए कार्य को बिगाड़ने के लिए इसी को संपूर्ण अमेरिकी नारी जाति पर लांछन कहकर शोरगुल मचा रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यदि केवल उन्हीं के विरुद्ध कुछ कहा जाए तो इससे संयुक्त राज्य के लोगों को आनंद ही होगा। प्रिय मैरी, यदि मान भी लिया जाए कि मैंने अमेरिका के लोगों के विरुद्ध ये भयानक बातें कही हों, तो भी वे हमारी माताओं और बहनों के बारे में जो घृणित बातें कहते हैं, इससे क्या उसके लाखवें भाग की भी पूर्ति होगी?
0: जैसा कि स्वाभाविक था, स्वामी जी के लिए अपने ही अप्रकाशित पत्रों के उद्धरण देखकर अमेरिका के नारी जाति के प्रति उनकी प्रीति एवं श्रद्धा का भाव प्रमाणित करना संभव न था। परंतु हम जानते हैं वो कितना आंतरिक एवं अकृत्रिम था। उनमें से यहां दो चार उक्तियों को ही प्रस्तुत करना यथेष्ट होगा।
5: अमेरिका के पारिवारिक जीवन के संबंध में मैंने अनेक निरर्थक कहानियां सुन रखी थी। वो स्वाधीनता में उन्मत्त होकर अपने पारिवारिक जीवन की सकल सुख शांति को भंग कर देती हैं, और इसी प्रकार की और भी बातें सुनने में आई थी। परंतु पिछले एक वर्ष के दौरान अमेरिकी परिवार और अमेरिकी नारियों के बारे में मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे अब ये स्पष्ट बोध होता है कि उस प्रकार की धारणाएं कितनी भ्रांत एवं निर्मूल हैं। कितनी ही ऐसी माताएं देखी हैं जिनकी मातृत्व और ममता और संतान स्नेह का वर्णन करने को मेरे पास भाषा नहीं। कितनी ही ऐसी बालिकाओं और कुमारियों को देखने का मुझे अवसर मिला है जो डायना देवी के ललाट पर स्थिर तुषार कणिकाओं के समान निर्मल और उसके साथ ही अत्यंत शिक्षित और मानसिक एवं आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से उन्नत हैं। ये रूप में लक्ष्मी और गुणों में सरस्वती हैं, ये साक्षात जगदम्बा हैं। इस तरह की मां जगदम्बा यदि अपने देश में 1000 तैयार करके मर सकूं तो निश्चित होकर मर सकूंगा।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।